ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के कोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिरन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त हुई सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई थी। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। कुणाल नाइक ने प्रधानमंत्री को नदेक के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इन समस्याओं का समाधान तलाशने में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशन अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागोस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कंजर्वेटिव नेता केमी बाधेनोच ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जेगोगस या किलीस पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार क्यों हैं, जबकि वे बरतानी रक्षा बजट के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा। इस पर्यटन नौका एमवी जून से 42 लोगों को बचाया जा सका है। हादसे के वक्त क्रू 10 सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो आज शाम 4 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाई जाने वाली जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज दिन के दौरान रहकर पश्चिमी इलाकों पर बारिश होती रहेगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऊंचाई वाले जगहों और खासकर गाड़ी चलाते हुए क्रॉसविंड्स वाले इलाकों में खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इसलिए खासकर मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों से बचने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:10 पर सूर्योदय, शाम को 6:03 पर सूर्यास्त होगा।

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত। ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो चलिए, गुरुवार का दिन है आज। आज है 10 सितंबर 2026 और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, नया दिन नई शुरुआत एमबीसी रेडियो के साथ। आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और आपके लाए हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की तरफ से। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं आप हैं आचार्य सकलानी जी। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे अच्छे विचारों के साथ।
2: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन में सरलता। श्रोताओं, आज के जगत में ज्यों ज्यों इस जड़ पूजा परायण नवीन सभ्यता का प्रचार बढ़ रहा है, त्यों ही त्यों मनुष्य के जीवन में कपट और दंभ भी बढ़ रहे हैं। ऊपर से सुंदर सुहावने बना रहना और अंदर चाहे जितनी बुराई भरी हो, मन मैला तन उजाला, ये आज की सभ्यता की एक नीति है। सरल मन का सीधा सादा व्यवहार आजकल मूर्खता माना जाता है। इसीलिए आजकल का पढ़ा लिखा नवयुवक अपने सरल हृदय पिता को मूर्ख कह करके उसका अपमान तक कर सकता है। यद्यपि ऐसी घटनाएं श्रोताओं हमारी सभ्यता के प्रभाव से बहुत कम होती हैं, परंतु अब इसका समाज में आरंभ होने लग गया है, ये तो मानना ही पड़ेगा। श्रोताओं, सरलता शुद्ध हृदय का नवीन संकेत है। सरल हृदय ही पवित्र होता है। जो मनुष्य सरल हृदय हैं, वो अपने पाप को प्रकाश करने में नहीं हिचकते हैं। हंसी होने की कल्पना उन्हें और सत्य से बिल्कुल भी डिगा नहीं सकती है। वो अपनी बुराइयों को कपटी की और कपट की चादर के तले छिपाना नहीं जानता। जगत को धोखा दे करके मिथ्या मान अर्जन करने की कला से वो अनभिज्ञ होता है। ऐसे मनुष्य जगत के झूठे मान यश से और पूजा प्रतिष्ठा से भले ही

वंचित रह जाएं, परंतु उनके हृदय में पाप का प्रवेश सहज ही नहीं हो सकता। आजकल के लोग जो सरलता को मूर्खता का पर्याय बतलाते हैं, ये उनकी नासमझी है श्रोताओं। सरलता मूर्खता नहीं, बल्कि वो अंतःकरण की पवित्रता का मूर्त रूप ही है। सरलता के साथ सात्विक बुद्धि का सर्वथा सामंजस्य है। इसीलिए महान दार्शनिक महापुरुषों के जीवन में, जिनके एक एक शब्द को समझने में बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमानों की बुद्धि चक्कर खा जाती है, और जिसे तत्वतः समझने के लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, छोटे बच्चों की सी शुद्ध सरलता देखी जाती है, वे बड़ी से बड़ी विकट शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। श्रोताओं, दर्शनों की विचित्र गुंथियों को सहज ही सुलझा सकते हैं, परंतु छल करके एक बात को दूसरे रूप में कहना नहीं जानते हैं। व्यवहार में कपट करना उन्हें नहीं आता है। ये सरलता पवित्र ऋषित्व का एक प्रधान लक्षण है। सरलता भगवान की प्रीति साधना का एक अमोघ साधन है। श्रोताओं, अंतर्यामी भक्तवत्सल भगवान छिद्र छल छिद्र भरे हृदय वालों के पास भी नहीं फटकते। मोही कपट छल छिद्र न भावा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना। चाहे वे कितनी ही सुंदर शब्द रचना करके उनकी स्तुति करते हों, और कितना ही बहुमूल्य सामग्रियों से उनकी पूजा करना चाहते हों, उन्हें तो सरल हृदय के भक्त जन ही प्यारे हैं। भगवान तो श्रोताओं जो सरल होते हैं, ऐसे सरल भक्त जनों को ही प्रेम करते हैं। सरलता में ही श्रद्धा टिकती है। श्रोताओं, कूटनीति का पोषक सूखा बुद्धिवाद तो श्रद्धा का वास्तव में शत्रु है। जहाँ श्रद्धा नष्ट होती है, वहाँ मनुष्य के सारे कर्म व्यर्थ होने लगते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्रद्धया हुतदत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ नचते नचतात् प्रेत्यनो इह। हे प्यारे अर्जुन, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दान, तप या जो कुछ भी कर्म है, वो असत कहलाता है। वो इस लोक और परलोक में कुछ भी लाभदायक नहीं होता। श्रद्धा से अर्पण किया हुआ थोड़ा सा दान भी महान फल उत्पन्न करता है। श्रोताओं, जहाँ कपटता पूर्ण बुद्धि कौशल सरलता का तिरस्कार करता है, वहाँ श्रद्धा नहीं ठहर सकती। और श्रद्धालु पुरुष सब कुछ करके भी उसके लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। सरल हृदय मनुष्य बुद्धि के अभिमानी पुरुषों की दृष्टि में कभी कभी ठगा जाता हुआ सा प्रतीत होता है, परंतु वो ठगा करके भी वस्तुतः कुछ नहीं ठगता। परम न्यायकारी और जो दयालु परमेश्वर के राज्य में ठगने वाला ही ठगता है। श्रोताओं, ठगाने वाला तो सदा लाभ में रहता है। सर्वशक्तिमान भगवान अपने उस सरल हृदय भक्त के योगक्षेम का बहुत सुंदर रूप से वहन करते हैं। इसीलिए वो सब कुछ खोकर के भी बदले में ऐसी अनुपम वस्तु पाता है, जिसकी तुलना संसार के किसी भी महान से महान पदार्थों में नहीं हो सकती है। भगवान ने भगवत गीता में सरलता को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में

0: मैं सरलता को आर्जव के नाम से दैवी संपदा का एक प्रधान गुण बतलाया है। सरलता तन मन वचन तीनों में होनी चाहिए। शरीर से अकड़ करके न चलें, अकड़ करके चलना, टेढ़ा चलना अभिमान आदि का परिणाम है। मन में कोई कपट और कुटिलता न रखे, वाणी में छल छिपाव न हो, चेहरे पर भी ऐसी मधुर सरलता हो जो सबको और हृदय को हर सके। शिशुओं के सरल मुख और उनकी सरल हंसी को देख करके कितना मन मुग्ध होता है। उसके विपरीत चेष्टा भी है ना, बच्चों की जो विपरीत चेष्टा होती है, वो विपरीत चेष्टा भी सरलता के आधार पर होने के कारण किसी को अप्रीतिकर नहीं लगती है, किसी को खराब नहीं लगती है। इसी प्रकार सरल हृदय, सरल वचन और सरल शरीर वाला पुरुष भी सबको सुखदायी होता है, वो अभिमानी नहीं होता और भगवान को तो बहुत ही प्यारा होता है। श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि सत्य ही और बहुत अद्भुत है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत है वो कभी है ही नहीं, और जो सत है वो हमेशा से है, सदा से है, जो सब समय एक जगह नित्य अखंड अबाधित रूप से स्थित है, जो सदा एक रस और सम है, जिसके प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित और जिसके प्राण से समस्त ब्रह्मांड अनुप्राणित है, और जिसकी सत्ता से सारे चराचर सत्तावान और जिसके प्रमाण से सब प्रमाणित हैं, वही सत्य तत्व है। श्रोताओ, इस सत्य में स्थित पुरुष ही सच्चे और संत हैं, और इस सत्य की प्राप्ति के लिए प्राणापण से प्रयत्न करने वाले पुरुष ही सच्चे साधक हैं, क्योंकि वस्तुतः इस सत्य से अनुस्यूत कर्म ही सत्कर्म है। इस सत्य से पवित्र हुई वाणी ही सत्य शास्त्र है, और इस सत्य से समाहित आचार ही सदाचार है। इस सत्य से समन्वित धर्म ही सद्धर्म है। इस सत्य से विकसित विवेक ही आत्म प्रकाश है, और इस सत्य से पूर्ण जीवन ही दिव्य जीवन है, और इस सत्य से समुदित सुख ही परम सुख है। महाभारत कहता है कि यत सत्यम सधर्मो यो धर्म सप्रकाशो यः प्रकाशस्ततः सुखमिति, यदनृतम सोधर्मो यो धर्मस्तमो यतस्तद दुखमिति। कि जो सत्य है वही धर्म है, और जो धर्म है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही सुख है, जो सत्य है वही जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अंधकार है, तम है, और जो अंधकार है वही दुख है। श्रोताओ, और सत्य को समझने के लिए और साधना की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्य नित्य विभु सनातन और अमृत तत्व है। इन लक्षणों वाला सत्य ही परमात्मा है, और वास्तव में परमात्मा ही तो सत्य है। श्रोताओ, आज समय यहीं पे समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: चलिए श्रोताओं, 6:20 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर, इस पर्व को लेकर आइए एक विशेष कार्यक्रम आपकी सेवा में, और ये कार्यक्रम जो है आप सुन सकेंगे नितिन की प्रस्तुति में। तो श्रोताओं, हम आपको इशारा करें कि इसी प्रोग्राम के साथ ही 6:30 आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन सकेंगे। 7:00 हम मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के अधिकारियों ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त सिफारिशें शामिल हैं। शागोस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशस अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। मॉरिशस में जल्द ही बुजुर्गों के लिए एक ओम्बुड्स पर्सन की नियुक्ति होगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो के अनुसार चयन प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिहान ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय नीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई थी। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। कुणाल नाइक ने प्रधानमंत्री को नादेक के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इन समस्याओं का समाधान तलाशने में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। नादेक के सीईओ को सुनते हैं।
1: C'est un processus qui est inclusif. Nous avons consulté plus de 1800 personnes qui ont contribué dans le rapport à travers le deepening qu'ils ont fait à l'ANADEC, à travers la plateforme online qu'ils ont fait, à travers un focus group qu'ils ont fait avec mes patients, mes immunes qui sont affectés directement, mes parents, et aussi mes consultations nationales qu'ils ont fait. Ce n'est pas un rapport qui est NADEC qui nous fait là, c'est un rapport qui nous fait par mes experts de différents ministères, de différents backgrounds aussi, incluant le Attorney General's Office, tenant le National Human Rights Commission, tenant le FSL, tenant mes experts dans l'addiction, mes experts en médecine, et mes anthropologues. Donc c'est un rapport qui ne fait qui peut vraiment prendre en compte un aspect scientifique de toute sa question qui n'appelle autour du cannabis. Il explique lui qui problématique et non bien sûr, il les a au courant, il explique lui aussi qui mène affaire qui nous peut remettre en place et une cause aussi même petit blocage qui nous peut gagner et qui aligne avec nous, l'India, il peut donner tout le soutien qui nous peut besoin. Donc moi satisfait de ça côté là et que moi remercie lui bien sûr qui se peut quoi dans nous.
0: 20 साल हुए हैं जब से देश में मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया गया था।

0: इस साल 10 जुलाई तक 8,118 लोगों को इस प्रोग्राम से लाभ हुआ है। उन्हें देश भर में कथित 70 डिस्पेंसिंग केंद्रों पर रोज दवा का डोज मिलता है। इस इलाज का औसत सालाना खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 16,356 रुपये पड़ता है। आज ये मॉरिशस ये प्रोग्राम राष्ट्रीय हार्म रिडक्शन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंकड़ों से परे मेथाडोन कई लोगों के लिए अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी स्थिर करने और धीरे धीरे आम जीवन में लौटने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। पेश है विधि मासीपुरन की रिपोर्ट।
1: एक पूर्व नशा करने वाले व्यक्ति को मेथाडोन उपचार लेते हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं। वो बताता है कि उसने 25 साल की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू किया था। आज वो 51 वर्ष के हैं। वो बताता है कि मेथाडोन उन्हें बेहतर महसूस कराने और सक्रिय रहने में मदद करती है, खासकर उनके काम में। लेकिन 36 घंटे तक मेथाडोन न मिलने पर वो जल्दी ही खुद को बेदम या लाचार महसूस करने लगता है। मेथाडोन नुकसान कम करने कार्यक्रमों का हिस्सा है, विशेष रूप से नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेने वाले लोगों में HIV के संक्रमण को कम करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के हार्म रिडक्शन यूनिट के प्रमुख डॉक्टर नीतीश राज सुकुल इस बात पर जोर देते हैं कि संबंधित 92% मरीज नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेते थे। वे बताते हैं कि मेथाडोन का वितरण पेशेवरों की एक टीम की देखरेख में किया जाता है।
2: Il est dispensé par une équipe pluridisciplinaire qui comprend psychiatre, psychologue, médecin qui en a l'expérience dans le domaine, man specialized harm reduction nurses, specialized harm reduction HCAs et aussi avec le concours de ban NGOs qui offert ce service par rapport à la prise en charge sur le plan réhabilitation et éventuellement réinsertion dans la société.
1: इमरान धनु, जो इद्रिस गुमानी सेंटर के अध्यक्ष हैं, के अनुसार मेथाडोन एक अधिक प्रभावी विकल्प उपचार साबित हुआ है। हालांकि उन्होंने उपचार के दौरान उचित मार्गदर्शन और सहायता के महत्व पर जोर दिया है।
3: Définitivement, on n'aime pas Timan Dimon, vu la nature de ce historique de consommation, je trouve bizarre, la prise de méthadone tous les jours, parce qu'il y a une maladie chronique, mais vous pensez, Timan Dimon, tu aurais dû réduire cette dose.
1: आंकड़ों से परे मेथाडोन कई लोगों के लिए उनके दैनिक जीवन को स्थिर करने और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का एक जरिया है।
0: शागस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशन अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। कंजर्वेटिव नेता केमी बादेनोक ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जेगो गौसिया की लीज पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार क्यों हैं, जबकि वे बरतानी रक्षा बजट के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। उनको सुनते हैं।
4: I'll tell you what he is funding though, Mr. Speaker. Keir Starmer's £35 billion surrender of the Chagos Islands and its crucial military base. That is British sovereign territory. This is a weak decision and it is no wonder that Argentina is now threatening the Falklands. We need to project strength. We need to show that British sovereign territory is non-negotiable. So why, just like Keir Starmer, is he planning to surrender the Chagos Islands? We are talking about paying £35 billion to give away British territory. And all of that is happening while his government is cancelling £30 million of vital training for British soldiers. To govern is to choose. So why is he choosing to send £35 billion to Mauritius when they cut the money to train our troops?
0: जबकि जवाब में बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने बल देकर कहा कि यूके जेगो गौसिया में अपना सैन्य अड्डा नहीं छोड़ेगा और इस बारे में अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव नेता को इस मुद्दे के संबंध में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंडी बर्नहम को सुनते हैं।
5: Mr. Speaker, I have to say to the right honourable lady, she does have to do better than that. I mean, the worst kind of points to be scoring when the country is watching. We will not surrender our base at Diego Garcia. We are in discussions with the United States about that. And we will always respect the rights of the Falkland Islanders to choose to be British. That will never change under this government. And we will be relentless in defending that.
0: पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में काफ़ी बारिश पड़ी है, लेकिन पानी के भंडार पर दबाव कम करने के लिए ये अभी भी पर्याप्त नहीं है. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महानिदेशक श्याम तानु के अनुसार महुआ कुआ जलाशय में पानी का स्तर अभी भी लगभग 39% है. उनका अनुमान है कि अगर जल स्तर लगभग 40% हो तो भंडार का संचालन करना आसान होगा, जबकि 20% से नीचे जाने पर स्थिति चिंताजनक हो सकती है. इस कारण से देश में पानी के इस्तेमाल को लेकर पाबंदियां अभी भी बरकरार हैं. CWA ने मौजूदा भंडार को अगले नवंबर या दिसंबर महीने तक बचाकर रखने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही नीतियों में किसी भी संभावित बदलाव पर विचार करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा. विस्तार विधि मासीपुरन के साथ.
6: L'invalia du jour au niveau de réservoir Mahuvacua et Nicolier parfin arrive à un niveau confortable que le cas
1: Mahuvacua aur la Nicolier mein jal star ki sthiti utni achhi nahi hai jahan par hum apne faisle par phir se gaur kar saken. Jaisi sthiti pai ja rahi hai to filhal pani ke vitaran ki samay sarini par badlav nahi kiya ja sakega. Pichli bar humne bataya tha ki Mahuvacua mein jal star 39% tha. Jab wo 20% se kam ka hoga to isme se pani nikalna namumkin hoga. इस स्थिति को नवंबर दिसंबर तक झेलनी पड़ेगी. मौसम विज्ञान हमें जानकारी देता रहेगा जिससे हम अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकें. जो जरूरी है वो ये कि जनता से पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है.
0: पॉब्लेमोसिस की अदालत पिछले 26 अक्टूबर को रिश्तेया के एक हाइपरमार्केट के सर्वेलेंस कैमरे के फुटेज को सबूत के तौर पर स्वीकार करने के बारे में अपना फैसला सुनाएगी. ये तस्वीरें पूर्व मंत्री कल्पना कुंजुशा के मुकदमे के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिन पर चोरी और चोरी का सामान रखने के आरोप लगे हैं. इस मामले में कल 3 गवाहों के बयान लिए गए. हाइपरमार्केट के सिक्योरिटी मैनेजर त्यागूर, CID के एक सर्जेंट और पुलिस IT यूनिट के अधिकारी. उन्होंने अदालत को बताया कि हाइपरमार्केट के कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर से रिकॉर्डिंग निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं. सीनियर काउंसिल आइवान कोलेंदावेलू के नेतृत्व में बचाव पक्ष इस फुटेज और पुलिस IT यूनिट द्वारा तैयार की गई IT रिपोर्ट को पेश किए जाने का विरोध कर रहा है. बचाव पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट वीडियो की असलियत साबित करने में नाकाम रही है. कल्पना कुंजुशा ने खुद को बेगुनाह बताया है. उनका कहना है कि वे कॉस्मेटिक सामानों के पैसे देना भूल गई थी जो उनकी बाकी खरीदारी से अलग रखे गए थे. ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना को कल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उस पर आरोप है कि उसने ज़रूरी फीस दिए बिना कूपन कोड का इस्तेमाल करके एयर फ्रांस की बुकिंग में बदलाव किए. जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर 34 यात्रियों की 28 बुकिंग की गई. इनमें से कुछ बुकिंग उसने अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए की थी. ब्लू कनेक्ट लिमिटेड को हुए आर्थिक नुकसान का अनुमान 70,000 यूरो यानी लगभग 35 लाख रुपए से ज़्यादा हैं. बताया जाता है कि एयर फ्रांस के इंटरनल ऑडिट के दौरान इस धोखाधड़ी का पता चला. FCC ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है. वाकवा के रहने वाले इस व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान एक मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट और एक लैपटॉप जब्त किया गया. FCC की एक और जांच इस बार धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दागुचिया रहने वाले 32 साल के हंसराज कृष्णा को कल गिरफ्तार किया गया. पेशे से चालक. उस पर आरोप है कि उसने खुद को FCC का अधिकारी बताकर गाड़ियों की बिक्री के नाम पर पैसे ऐंठे. पीड़ित ने FCC को इसकी सूचना दी थी. उसके घर की

तलाशी में एक लैपटॉप, एक यूएसबी ड्राइवर और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। एफसीसी को शक है कि और भी लोग इसके शिकार हो सकते हैं और उसने प्रभावित लोगों से कमीशन के संपर्क के साथ संपर्क करने की अपील की है। कल बेल एंड रिमांड कोर्ट में मेडागास्कर के व्यवसायी मामी हवा तुमांगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई

0: और सुजाता ग्रुप जो खेती और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टर में काम करने वाली मेडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है। उसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैद खाने से वीडियो लीक के जरिए गवाही दी जहां उन्हें रखा गया है। मामी वावा तुमांगा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि एफसीसी ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वे एक इन्वेस्टर हैं और अपराधी नहीं। मॉरिशस में जल्द ही बुजुर्गों के लिए एक ऑम्बुड्स पर्सन की नियुक्ति होगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो के अनुसार चयन प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हालांकि इस नए संस्थान की स्थापना बुजुर्गों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए चल रहे लेजिस्लेटिव कार्यों पर निर्भर करती हैं। पिछले मार्च महीने में कैबिनेट ने प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्सन्स एक्ट की धारा 9 लागू करने की मंजूरी दी थी, जिसमें दुर्व्यवहार के मामलों में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का प्रावधान भी किया गया है। मॉरिशस में एजिंग पॉपुलेशन के मुद्दे पर कल हुई सलाहकारी कार्यशाला और अलग अलग पीढ़ियों के बीच सॉलिडारिटी डायलॉग्स की शुरुआत के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। विस्तार शैली नियरबन और विधि मासीपुरन के साथ।
1: L'année dernière, le père avait fait ça, puis pendant un petit peu de temps, parce qu'il ne faisait pas tout le même procédé à l'école. On l'a fait confirmer, même au particulier.
2: पिछले साल से हम इसकी शुरुआत करना चाहते थे। इसमें समय लगता है क्योंकि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। एक मंत्रालय ने अब अपनी राय दी है। ओम्बुड्स पर्सन फॉर वी एल्डरली जरूरी होगा ताकि वृद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। बहुत जल्द नए कानून लाए जाएंगे जहां प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा। ये सब कानूनी कार्रवाई है, कानून को तैयार करना पड़ता है और ये राष्ट्रसभा के कार्यों पर निर्भर है।
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में पता नहीं चल रहा। इस पर्यटन नौका एमवी जून से 42 लोगों को बचाया जा सका है। हादसे के वक्त क्रू सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो आज शाम 4 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज दिन के दौरान पूर्वी पश्चिमी इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होती रहेगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ऊंचाई वाली जगहों पर न जाने और ख़ासकर क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर गाड़ी चलाते हुए खास सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी जिसका असर तटीय इलाकों और लगूनों खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों पर पड़ेगा। इसलिए मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से और आम जनता से इन तटीय इलाकों और लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से कम 2 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21 अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:10 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:03 पर सूर्यास्त होगा।

0: शागस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशन अधिकारियों के बीच बातचीत चलेगी। मॉरिशस में जल्द ही बुजुर्गों के लिए एक ओम्बुड्स पर्सन की नियुक्ति होगी। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबों के अनुसार चयन प्रक्रिया अंतिम चरण पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत। देश विदेश की इन खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के अधिकारियों ने कर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त सिफारिशें शामिल हैं।

शोक समाचार सुनिए। उचाना लेन लेस्काले में, उचाना लेन लेस्काले में 73 साल की 73 इयर्स ओल्ड श्रीमती गीता उचाना, श्रीमती गीता उचाना पेदाशी नाम सीमा थ्री, जो गीता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान उचाना लेन लेस्काले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। लाहू तौकिल वाकवामी वाकवामी 94 साल की 94 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सीता रघुवर, श्रीमती सीता रघुवर जो तारा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान तौकिल वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थवा मामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डी एट 1 PM। रॉयल रोड लासूजीन लेस्कालिये में, रॉयल रोड लासूजीन लेस्कालिये में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड जनाब हसन जी उजी अली, जनाब हसन जी उजी अली जो हसन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10:30 बजे, इनका जनाजा सुबह 10:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड लासूजीन लेस्काले से उठा कर दफनाने के लिए लेस्काले का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टूडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड पोलॉजे बेलेर वियासेश में, रॉयल रोड पोलॉजे बेलेर वियासेश में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री विनोद मेगन जो कोको नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे इनके भाई श्री लोलो मेगन के मकान रॉयल रोड पोलॉजी बेलेर वियासेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। नंबर 69 राजकुमार स्ट्रीट बेतो काथोबोन में, राजकुमार स्ट्रीट बेतो काथोबोन में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पुष्पावती अपादू, श्रीमती पुष्पावती अपादू पिताशी नाम सनासी जो लक्ष्मी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:15 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1:15 बजे इनके मकान नंबर 69 राजकुमार स्ट्रीट बेतो काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। मोसलमा सोना आले ब्रियों कास्टेल में, मोसलमा सोना आले ब्रियों कास्टेल में 41 साल की 41 ईयर्स ओल्ड श्री लक्ष्मणन रामासामी, श्री लक्ष्मणन रामासामी जो नंदी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके भाई श्री नाजागेन रामासामी के मकान मोसलमा सोना आले ब्रियों कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9। श्रमे बालोंस कारोलिन में, श्रमे बालोंस कारोलिन में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री धर्मानंद सालिका, श्री धर्मानंद सालिका जो पुलो नाम से ज़रा जाने जाते थे।

0: इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकांश में बालौंस का कालीन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 2 PM। नेहरू रो थ्वाबुचिक में 69 साल की 69 years old श्रीमती रूमा बेनीमांधप
1: जो ताताई नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान नेहरू रो थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन वेल थ्वाबुचिक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM।
0: एथनीसिटी लेन कमर्सन स्ट्रीट क्यूबेक में श्री चंद्रदेव अभिलक जो देवा नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती चांदिनी अभिलक के मकान एथनीसिटी लेन कमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। शिवसागर लेन नोथोदाम में 56 साल की 56 years old श्रीमती लक्ष्मी देवी राजा पिताजी नाम तिमल जो फिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे इनके बेटे श्री अक्षय राजा के मकान शिवसागर लेन नोथोदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नोथोदाम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:30 AM। डॉक्टर मनीलाल रोड पेची जुली में 73 साल की 73 years old श्रीमती सावित्री रामनोहर पिताशी नाम शीतल जो सलोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे सुबह 10 बजे मकान डॉक्टर मनीलाल रोड पेची झूली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। नंबर 172 BM पास गए क्यूपिप रोड में 92 साल की 92 years old श्रीमती सुमति दुमा पैदाशी नाम कुंज बिहारी जो शांति नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री श्याम दुमा के मकान नंबर 172 BM पास गए क्यूपिप रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। नंबर 57 मामाद इलाम हुसैन स्ट्रीट सेंट क्वामी 79 साल की 79 years old श्रीमती पुष्पावती बिजान पिताशी नाम दुर्बीस जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी बेटी श्रीमती रेणुका देवी बिजान के मकान नंबर 57 मामान इलाम हुसैन स्ट्रीट सेंट क्वासी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले देपात की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। सोलफेरिनो नंबर एक वाकवा में 63 साल की 63 years old मिसेस बीबी आयसा एडन पैदाशी नाम राजा जो आयसा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के ग्यारह बजे इनके मकान सोलफेरिनो नंबर एक वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 11 AM। लॉट नंबर 55 अवियों रेजिडेंस ट्रियानो में 74 साल की 74 years old श्रीमती कुमारी खुर्गधारी पिताशी नाम चगनलाल जो कुमारी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे

10 बजे लाश पलाव दौते लिए इंसान पूर्वासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूरोपियन चैंपियंस लीग में अंदोनी इराओला का पहला मैच और पहली जीत, सफल एंट्री। लिवरपूल ने 2-1 की जीत हासिल की और अपने नए चैंपियंस लीग कैंपेन की शुरुआत की। लिवरपूल 2 एटलेटिको मैड्रिड 1, पहला गोल एटलेटिको मैड्रिड ने स्कोर किया फर्स्ट हाफ में, लोरेंटे ऑन टारगेट। फर्स्ट हाफ में ही जोबोस्लाई ने इक्वलाइज किया आरोयो के पास पर। सेकंड हाफ में मार्क अलिस्टर का गोल, इसके बाद नए खिलाड़ी बाकोला को इंजुरी के कारण निकालना पड़ा। मैनेजर इराओला ने कहा कि चिंता की बात नहीं, केवल क्रैम्प है, इंजुरी नहीं। जिस दिन मार्क अलिस्टर ने प्रेस वालों को कहा कि उसे दुख है कि अब तक लिवरपूल ने उसके नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं की, उसी दिन उसने अपनी वफादारी दिखाई मैदान में विनिंग गोल स्कोर करके। आर्सेनल की भी जीत हुई 1-0 से नापोली के खिलाफ। सुपर्ब स्ट्राइक मार्टिन ओडेगार्ड का रहा। इस सीजन ओडेगार्ड का चौथा गोल 5 मैचों में। बहुत अनगिनत अच्छे अच्छे मौके मिले आर्सेनल को, 26 शॉट्स पर गोल केवल एक का। डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने बेरहमी से स्लोवान ब्रातिस्लावा को पछाड़ा। फेरान टोरेस का हैट्रिक, डेम्बेले का डबल, फाबियन रुइस ने भी स्कोर किया। पेरिस सेंट जर्मेन 6, स्लोवान ब्रातिस्लावा 1। याया टूरे की टीम को तोड़ मरोड़ डाला पेरिस सेंट जर्मेन ने। बार्सिलोना के यहाँ भी गोलों की बारिश, 5-1 से बार्सा ने फेयेनूर्ड को चैंपियंस लीग में खेलने का मजा चखाया। राफिना का डबल, अदियेमी, यमाल और गैब्रियल जेसस का 1-1 गोल। अन्य मैचों में स्टुटगार्ट 3, वाइकिंग 1, स्पोर्टिंग की जीत 3-1 से गलातासराय पर। सो अब तक इंग्लैंड की 4 टीमें जीत चुकी हैं। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की बारी। बहुत दिनों बाद ओल्ड ट्राफर्ड में चैंपियंस लीग की वापसी हो रही है। सामने है पहली बार चैंपियंस लीग में खेलने वाली टीम सबा उज़्बेकिस्तान से। अन्य मैच फेनेरबाचे एएस रोमा, पेरिस सेंट जर्मेन का मुकाबला शाख्तार दोनेत्स्क से, बायर्न म्यूनिख बोडो ग्लिंट, कोमो आरबी लाइप्ज़िग, स्लाविया प्राग लांस। इंग्लैंड के कराबाओ कप में 9 गोलों वाले मैच में चेल्सी ने 6-3 से लीड्स यूनाइटेड को हराया। लीड्स यूनाइटेड एक समय 2-0 से आगे था, पर जब ज़ावी अलोंसो ने अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान में भेजा तब बाजी चेल्सी के हाथ में आई। पाल्मर का डबल, वेलबेक का डबल, नेटो बाग को भी स्कोर कर पाए। स्कॉटिश प्रीमियर लीग में रेंजर्स 1, सेंट मिरन 0, सेंट जॉनस्टन 0, सेल्टिक 1। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में डर्बी 0, वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन 1, नॉर्विच 2, बर्मिंगहम सिटी 1। चार्ल्टन एथलेटिक और क्वींस पार्क रेंजर्स के बीच मैच ड्रॉ 0-0। सप्ताहांत के दौरान वीकेंड के प्रमुख प्रीमियर लीग फिक्स्चर्स पर एक नजर डालते हैं। चेल्सी, हल सिटी, लिवरपूल, फुलहाम ये 6 बजे शनिवार को, और टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन ये सैटरडे को ही शनिवार को 8:30 बजे, और 11 बजे लेट नाइट किक ऑफ सन्डरलैंड आर्सेनल, ये शनिवार सैटरडे के मैच हैं। और संडे धमाल मैनचेस्टर डर्बी, 7 बजे ओल्ड ट्राफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। टेनिस, US ओपन में 2 मैच पॉइंट बचाकर कोको गोफ सेमीफाइनल में पहुंची। मीरा एंड्रीवा को हराने में कोको गोफ को जमीन आसमान एक करना पड़ा। सेमीफाइनल में उसका सामना वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली एलेना रिबाकीना से होगा। रिबाकीना ने 2-1 से जेंग को हराया। जेसिका पेगुला भी क्वालिफाई हुई एमा नाबारो को हराकर। लड़कों में कचानोव, बेन शेल्टन क्वालिफाई हुए।

0: हिल्टन ने अलकागाज को नाराज किया 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-1 के महत्वपूर्ण मैच में। आज अलेक्जेंडर वेरेव क्वालिफाई हुआ, सो सेमीफाइनल अलेक्जेंडर वेरेव, कारेन कचानोव, फ्रांसिस शाफुए, बेन शेल्टर। क्रिकेट इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 133 पर रफा दफा किया, ऑल आउट किया। फिर इंग्लैंड की टीम 156 रन बनाकर खेल रही है, 4 विकेट खोकर यानी 23 रन की लीड। आज दूसरे दिन का खेल होगा। इधर वीमेंस एशिया कप का पहला सेमीफाइनल आज होगा बांग्लादेश और टीम इंडिया के बीच, दूसरा सेमीफाइनल कल पाकिस्तान और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच। और बताते चले, मॉरिशस में भी आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का फाइनल मैच इस रविवार को, इस संडे को 10 बजे मापू के एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। चैंपियंस लीग में कल लिवरपूल, आर्सेनल की जीत हुई, पेरिस सेंट जर्मेन और बार्सिलोना भी जीत पाए। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की बारी है, देखेंगे क्या होगा। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 7:06 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बेलिया के रहने वाले निवासियों को जिनमें पिची शुमें, क्लेंसी रोड, खुदगयाल सीबी के आसपास, शुमें गाज और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। तो चलिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की तरफ से भी ये विज्ञप्ति सुनिए। लामावे से लेकर कांडोस तक वाक्वा, फिनिक्स, क्यूपिप, फॉरेस्टसाइड, फ्लोरियाल, सैंपिया और मोका के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर 2026 को और शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में पानी की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। पानी की जो सुविधा है ग्राहकों के लिए उपलब्ध की जाएगी ट्रक सिटेन द्वारा। तो चलिए इन असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली पानी की सप्लाई को फिर से चालू कर दी जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल वाटर अथॉरिटी की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
3: ये है रेडियो मॉरिशस।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोताओ, ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे। गुरुवार का दिन है आज, 10 सितंबर 2024। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। वैसे सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ बहुत धन्यवाद। ये सफ़र जो है हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। तो चलिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के नाम

0: गुरुवार का ये दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए श्रोताओं, ज़्यादा देर ना करते हुए इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शुभ विचारों के साथ। तो आइए चिंतन हम सुन सकेंगे डॉक्टर जमन जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: यज्ञ करना, दमन करना, अहिंसा का पालन करना, दान करना तथा स्वाध्याय आदि सभी कर्मों से साधना के द्वारा आत्मा के दर्शन करना ही श्रेष्ठ कर्म है।

0: झलकियां
1: तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चले हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस समय आप सुन रहे हैं सुबह का नज़ाना कार्यक्रम 8 बजे, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक क्विज भी है आपके लिए। 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जायेंगे, समाचारों के उस पार चंद द्वैस गाने आपके नाम। 8:50 पर हमारे धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में, फिर एक भोजपुरी गीत आपके नाम। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे अनुराधा के साथ। 10 बजे समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर एक विशेष कार्यक्रम सनातन धर्म मंदिर परिषद की तरफ से। 11 बजे एक बार फिर आप समाचार सुन सकेंगे, और इसके बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। दिन के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरीशायनी की प्रस्तुति में। 12:30 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी के साथ। मराठी कार्यक्रम के बाद, वैसे तमिल कार्यक्रम जो है आरसी के साथ दिन के 12:30 बजे, और 1:30 बजे आपके लिए मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रीति के साथ। दोपहर के 2 बजे जीन लेकर आएगी मंडारिन में कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 बजे और 2:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम आपकी सेवा में सुमिता के साथ। दोपहर के 3 बजे समाचार पढ़े जाएंगे, और इसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे भक्ति सागर कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा आप सुन सकेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। शाम के 5 बजे सदाबहार गीत आप सुन सकेंगे सुमिता के साथ। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे, और इसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे आप मंडारिन में कार्यक्रम दाविद के साथ सुन पाएंगे। 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम पुवाना के साथ। 7:30 बजे तेलुगु भाषा कार्यक्रम वर्षा की प्रस्तुति में। शीर्ष लेकर आएगी मराठी भाषा में कार्यक्रम 7:50 पर। 8:10 पर भजरे प्रभु का नाम देवीना के साथ मैं फिर शब, ये कार्यक्रम आप उर्दू भाषा में सुन पाएंगे। और रात्रि के 11 बजे आप एक

विशेष कार्यक्रम सुन सकेंगे सुहाना पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद पुराने गाने आप सुन सकेंगे और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में। तो श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां।

24 मिनट हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपके लाए है एक क्विज आइटम। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न हम करने वाले हैं और इस क्विज आइटम में भाग लेने के बाद आपको प्राप्त है 2 एंट्री टिकट जो सर्कस हो रहा है, ज़वाता सर्कस जो हो रहा है बागातेल में, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और ये सर्कस जो है हर गुरुवार को 6 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर शुरू होता है, साथ में शुक्रवार को भी 6 बजे से शुरू होता है ये सर्कस, और शनिवार को 2:30 बजे और रविवार को शाम के 5:30 बजे ये सर्कस जो है होते हैं इन दिनों में। तो अगर आप इस सर्कस में भाग लेना चाहेंगे तो आपको प्राप्त है 2 एंट्री टिकट्स। तो आपके लिए आज का जो सवाल है हम आपसे पूछेंगे, ए अक्षर से शुरू होने वाला कौन सा शब्द जो है उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जो सर्कस में प्रभावशाली शारीरिक करतब दिखाते हैं। सही जवाब आपको देना है 4028085 पे, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वह है 5251-7005। तो चलिए श्रोताओं, क्विज आइटम आप की सेवा में इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। एक बार फिर से हम प्रश्न जो है दोहरा लेते हैं, ए अक्षर से शुरू होने वाला कौन सा शब्द उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जो सर्कस में प्रभावशाली शारीरिक करतब दिखाती है। तो सही जवाब का इंतज़ार हम कर रहे हैं। तो चलिए तब तक आपके नाम जो है एक प्यारा सा गीत हम चलाएँगे।

चलिए श्रोताओं, एक क्विज आइटम इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। काफ़ी जो है हमें जवाब प्राप्त हो रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। वैसे प्रश्न जो है इस प्रकार से है, ए अक्षर से शुरू होने वाला कौन सा शब्द उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जो सर्कस में प्रभावशाली शारीरिक कर्तव्य निभाते हैं। तो चलिए

सही जवाब जो है आप हमें 5251705 में भेज सकते हैं। हमारे साथ दीपा जी हैं कांटोगैस की रहने वाली, उन्होंने जवाब दिया है। तो चलिए कुछ ही घड़ी में हम आपको बताएंगे कि दीपा जी की जवाब जो है सही है या नहीं। फिर हमारे साथ जो है भावना रामदास जी जुड़ी हुई है, आप अंकि मौशाल की रहने वाली है और आपने भी जवाब दिया है व्हाट्सएप के ज़रिए। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। और साथ में है रीता देवी संचित जिन्हें हमें जवाब दिया है व्हाट्सएप के ज़रिए, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। तो चलिए स्टूडियो की घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और हम आपके फ़ोन कॉल का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चंद प्यारे प्यारे गीत इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी आप की सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं।

श्रोताओ, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है। क्विज आइटम आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। ज़वादा सर्कस में भाग लेने के लिए, जो कि बागातल में हो रहा है इन दिनों, हर गुरुवार को, हर शुक्रवार को शाम के 6 बजे से शुरू होती है। साथ में है शनिवार को 2:30 बजे और रविवार को शाम के 5:30 बजे से शुरू होती है। तो इस सर्कस में भाग लेने के लिए आपको प्राप्त है 2 एंट्री टिकट्स। बस आपको हमें सही जवाब देना है 4028085 पे, और हमारा जो व्हाट्सएप मैसेज जो है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आप अपने मैसेजेस जो है भेज सकते हैं। वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251705। हम आपको इशारा कर दें कि बहुत सारे लोग जो है हमें व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, लेकिन नाम सिर्फ सही जवाब जो है भेज रहे हैं और नाम नहीं भेज रहे हैं। तो कृपया आप अपना नाम भी हमें भेजें ताकि हम आपका नाम जो है ले सकें रेडियो के माध्यम से। सवाल इस प्रकार से है, ए अक्षर से शुरू होने वाला कौन सा शब्द उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जो सर्कस में प्रभावशाली शारीरिक करतब दिखाते हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, हमारे एक श्रोता है हमारे साथ जुड़ चुकी है। हेलो।
1: हेलो आना।
0: आदाब, आपका नाम?
1: मैं शहीना बोल रही हूँ मीनू से।
0: हाँ, तो आपका स्वागत करती हूँ शहीना जी। बोलिए, सही जवाब क्या है?
1: अखोबात।
0: अखोबात। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में हम आपको बताएंगे कि जवाब सही है या नहीं। ठीक है, आपको धन्यवाद। हेलो। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका शुभ नाम?
2: इंदिरा।
0: इंदिरा जी।
2: इंदिरा जी,
0: हाँ, आपका सही जवाब क्या है?
2: अक्रोबात।
0: अक्रोबात। तो चलिए, कुछ ही घड़ी में हम आपको बताएंगे कि जवाब सही है या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और आपको शुभ दिन।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार
1: नमस्कार रोशनी जी, मैं लीला बोल रही हूँ पासेरी से। कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: तो चलिए, प्रश्न है, आपने सुना?
1: हाँ मैंने सुना, वो है अक्रवाद।
0: ओके, तो चलिए हमने नोट किया है आपका जो जवाब।
1: अच्छा, धन्यवाद रोशनी जी, शुभ दिन आपको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी शुभ दिन हम कहेंगे। एक और श्रोता से हम मिलेंगे। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
2: नमस्ते
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: मैं आशा।
0: आशा जी कहाँ से बोल रही हैं?
2: हाईलैंड से।
0: हाईलैंड से, मौसम कैसा है वहाँ पे?
2: नहीं, बारिश बारिश
0: बारिश हो रही है। तो चलिए, सुबह सवेरे से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो बोलिए आपने, आपके पास क्या जवाब है?
2: Acrobat and aerialist.
0: तो चलिए, हमने आपका जवाब जो है नोट किया है, तो कुछ ही घड़ी में हम आपको बताएंगे कि जवाब सही है या नहीं। तो चलिए आशा जी, आपको हम कहेंगे शुभ दिन।
2: शुभ दिन।
0: हेलो हेलो
3: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
3: नमस्कार,
0: आपका शुभ नाम?
3: आली
0: जी, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। तो बोलिए भाई जी, सही जवाब क्या है?
3: सही जवाब है अक्रोबात।
0: तो चलिए, हमने नोट किया है आपका जवाब, कुछ ही घड़ी में हम आपको बताएंगे कि जवाब सही है या नहीं।
3: हम इंतजार करेंगे।
0: जरूर। तो चलिए, हम आपको कहेंगे शुभ दिन।
3: शुभ दिन।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमें प्राप्त हुए हैं। सरिता जी है कथोबोन की रहने वाली, आपका जवाब हमने नोट किया है। सरिता जी बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए।

चलिए सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे इस क्विज आइटम में भाग लेने के लिए। वैसे लगभग सभी के सभी लोगों ने सही जवाब दिया है और सही जवाब जो है अकोबात है। तो इनाम जो है हम दे रहे हैं भाई अली जी को। और वैसे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन लकी ड्रॉ के ज़रिए हम ये जो है इनाम भाई अली जी को हम दे रहे हैं। तो चलिए आप हमें वापस कॉल कीजिएगा ताकि हम अपना जो है आपका जो जितने भी डिटेल्स है हम ले सकेंगे ताकि आपको इनाम प्राप्त हो सके। तो दो एंट्री टिकट्स जो है जा रहा है भाई अली जी को। तो चलिए श्रोताओ हमारे साथ निभाने के लिए धन्यवाद। क्विज आइटम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है। सुबह का नज़राना कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

टिकट, और आप जो है बागातल जा सकते हैं, सर्कस में भाग ले सकते हैं। तो चलिए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। सुबह का नजराना कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, चंद पुराने गाने आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं, और अभी इस समय आप किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा नजराना सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है राजा रानी।

तो चलिए श्रोताओं, आज की इस सुहानी सुबह में यादों के उन पन्नों को खोल रहे हैं जहाँ हर धुन के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है और हर गीत में जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास छुपा हुआ है। सुबह का नजराना कार्यक्रम 7:50 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में गीतों का यह खूबसूरत कार्रवाई से हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, आपको पता है कि जीवन का सच्चा आनंद क्या है? कल की चिंता हमें छोड़ना है, आज की खूबसूरती महसूस करना है, यही जीवन का सच्चा आनंद है। और शुभ दिन का अर्थ सिर्फ अच्छा समय नहीं, बल्कि अच्छी सोच और अच्छे कर्मों से दिन को बेहतर बनाना है। 7:55 हुए हैं स्टूडियो की।

घड़ी में कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं और आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद वापस हम मिल रहे हैं चंद द्वैत्स गानों को लेकर। आप सभी को शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घर मिला ले जा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिगन काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की गांजा से संबंधित सुधार की राष्ट्रीय रणनीति के रिपोर्ट सुपुर्द कर लंजा। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर ही होल सलाह मशवरा से मिलल सिफारिश शामिल बाटे। रिपोर्ट तैयार करे खातिर आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्ष लोग से 1800 लेजस्ती सुझाव और राय इकट्ठा करल गल है। मंत्रिमंडल की सौंपल जावे से अगते नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर ही रिपोर्ट की समीक्षा करल जाए। कुणाल नाइक प्रधानमंत्री के नदेक के समक्ष आवे होला चुनौती के बारे में भी जानकारी दिलन। उ बोलन कि प्रधानमंत्री देने से उनकरा इस सब समस्या के समाधान तलाश के पूरा सहयोग मिले के आश्वासन मिलल बाटे। 20 बरिस होल बाटे जब से देश में मेथाडन सब्स्टिट्यूशन थेरापी प्रोग्राम शुरू करल गल रहल। ई बरिस 10 जुलाई ले 8118 जना के ई प्रोग्राम से लाभ होल बा। ओ लोग के देश भर में स्थापित 70 गो डिस्पेंसिंग केंद्र पर ही रोज के दवा के डोज मिलेला। ई इलाज के औसतन सालाना खर्च एगो व्यक्ति खातिर लगभग 16,356 रुपया पड़ेला। आज ई प्रोग्राम राष्ट्रीय हार्म रिडक्शन पॉलिसी के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा है। सागर मामला के लिए कि आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगी। दोनों देश के बीच समझौता के लिए के दूसर का वर्किंग सेशन खातिर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशस अधिकारी लोग के बीच बातचीत चली। बरतानी संसद में काल होल बहस में सागर के मुद्दा एक बार फिर से उठावल गल रहल। कंजर्वेटिव नेता केमी बेडेनोक बोलन की उनकरा समझ में नहीं आवता कि प्रधानमंत्री जेगोगोसिया के लीज पर ही इतना बड़का रकम खर्च करे खातिर तैयार काहे होल हवन जब वो बरतानी रक्षा बजट खातिर फंड देवे से इनकार करत हन। जवाब में बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ई बात पर ही बल दिलन कि यूके जेगोगोसिया में अपन सैन्य अड्डा नहीं छोड़ी और ई बारे में अमेरिका के संगे बतियावल जाता है। एकर संगे ही वो बोलन की कंजर्वेटिव नेता के ई मुद्दा के संबंध में राजनीतिक फायदा उठावे की कोशिश नहीं करे के चाहिए। प्रॉब्लम्स की अदालत गल 26 अक्टूबर के रिश्ते के गो हाइपर मार्केट की सर्वेलेंस कैमरा के फुटेज के सबूत के तौर पर ही स्वीकार करे के बारे में अपन फैसला सुनाए। ये सब तस्वीर पूर्व मंत्री कल्पना कुंजुशा के मुकदमा खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकी, जिकर पर चोरी और चोरी के सामान रखे के आरोप लगावल गल है। ई मामला में काल 3 गो गवाह के बयान निवल गल। हाइपर मार्केट की सिक्योरिटी मैनेजर तेहोज सीआईडी के एगो सर्जेंट आर पुलिस आईटी यूनिट के एगो अधिकारी वो सब लोग बतैलन अदालत के बतैलन कि हाइपर मार्केट के कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर से रिकॉर्डिंग निकाले खातिर कौन कौन कदम उठावल गल है। जबकि दूसर दिन सीनियर काउंसिल आइवान कोलेंदावेलू के नेतृत्व में बचाव पक्ष ई फुटेज और पुलिस आईटी यूनिट देने से तैयार करल गल आईटी रिपोर्ट में पेश करल गल बात के विरोध करलन जा और बचाव पक्ष ई बोलले बाटे की रिपोर्ट वीडियो के असलियत साबित करे खातिर नाकाम रहल। ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना के काल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप पर गिरफ्तार करल गल। ओकर पर आरोप है कि वो जरूरी शुल्क देवे के बिना ही कूपन कोड के इस्तेमाल करके एयर फ्रांस के बुकिंग में बदलाव करलक। जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर ही 34 गो यात्री लोग के बुकिंग 28 बुकिंग करल गल है।

0: रहल एकर में से एक आध को बुकिंग वो अपन परिवार आर अपन खातिर कर ले रहल। ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के होल आर्थिक नुकसान के अनुमान 70,000 यूरो यानी करीब 3.5 मिलियन रुपया ले जस्ती के बतावल जाता। आर दूसर देश की खबर में फिलीपींस में गो नौका परी भड़कल भयानक आग में कम से कम 5 जना की मौत होल बा जबकि 27 अन्य आदमी लोग के कोनो खबर नहीं बाटे। ई पर्यटन नौका से 42 जना के बचावल गल ह। ई रहल भोजपुरी के समाचार। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

पानी की खबर सुना जा। उचाना लेन लेस्कालिये में 73 बरिस के 73 अंके श्रीमती गीता उचाना, श्रीमती गीता उचाना पैदाशी नाम से माथरी जे गीता नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बज के आधा उनकर माटी आज दिन के एक बज के आधा उनकर घरे उचाना लेन लेस्कालिये से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेन में नियो के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रुतों की इल्वाकुआ में 94 बरिस की 94 अंकी श्रीमती सीता रघवर, श्रीमती सीता रघवर जित तारा नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन और करमाटी आज दिन के एक बजे उन करमाटी आज दिन के एक बजे उनकर घरे रुतों की इल्वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थामा मेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड लास उजी ने इसकाली में 78 बरिस की 77 अंकी जनाब हसन जी ओजीगाली, जनाब हसन जी ओजीगाली जे हसन नाम से जैसे जान जात रहलन कर इंतकाल हो गल बा उनकर जनाजा आज फजर के 10 बज के आधा उनकर जनाजा आज फजर के 10 बज के आधा उनकर घरे रोड लासू जी ने इसकाली से उठा के दफनाए खातिर लिस्कालिये के कब्रस्तान ले जा जाए। रोड पोलॉजी बेलिया सेश में 54 बरिस के सकन का थौके श्री विनोद मेघन, श्री विनोद मेघन जे कोको नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा उनकर भाई लोलो मेघन के घरे रॉयल रोड पोलॉजिये बेलेर वीएसएस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुशों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 69 राजकुमार स्वीट बेतो काथोबोन में 80 बरिस के काथवंजों के श्रीमती पुष्पावती अपादू, श्रीमती पुष्पावती अपादू पैदाशी नाम सनासी जे लक्ष्मी नाम से जसी जन जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1:15 बजे उनकर माटी आज दिन के 1:15 बजे उनकर घर। नंबर 69 राजकुमार स्ट्रीट बेतो का तो मोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पाल मा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। मोसलमा सोना ले बुयों कास्तेल में 41 बरिस के 41 अंके श्री लक्ष्मण रामस्वामी, श्री लक्ष्मण रामास्वामी जे नंदी नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर भाई श्री नाजागैन रामास्वामी के घरे मौसलमा सोना ले भैया कास्तेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुया के श्मशान भूमि ले जाल जाए। समय बैलेंस का होलिन में 64 बरिस के 64 के श्री धर्मानंद सालिका, श्री धर्मानंद सालिका जे पुलो नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घर श्रम बालों कावलिन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वो शौके श्मशान भूमि ले जा जाए। नेहरू रोड थ्वाबुचिक में 69 बरिस के 69 अंके कुमारी रूमा बिनी मांडव, कुमारी रूमा बिनी मांडव जे ताताई नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घर नेहरू रोड थ्वाबुचिक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर यूनियन वेल थ्वाबुचिक के श्मशान भूमि ले जाल जाए। इतनी सिटी लेन कमर्सन स्ट्रीट क्योपेप में 71 बरिस के 71 अंके श्री चंद्रदेव बिलक, श्री चंद्रदेव बिलक जे देवा नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी श्रीमती चांदिनी अबिलक के घरे एथनीसिटी लेन कमर्सन स्ट्रीट के वेब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगा के श्मशान भूमि ले जाल जाए।

0: शिवसागर ले नोटरडाम में 56 बरिस के सेकंड सीजन के श्रीमती लक्ष्मी देवी राजा, श्रीमती लक्ष्मी देवी राजा पैदाशी नाम तिमल जेफिया नाम से जसी जान जात रलन वो गुजर गए हवन उनकर माटी आज फजर के 10 बज के आधा उनकर माटी आज फजर के 10 बज के आधा उनकर बेटा शक्षय राजा के घरे शिवसागर ले नोटरडाम से उठा के अंतिम संस्कार खातिर नोटरडाम के श्मशान भूमि ले जाल जाए। डॉक्टर मनीलाल रोड पेची झीली में 73 बरिस के 63 अंके श्रीमती सावित्री रामनोहर, श्रीमती सावित्री रामनोहर पैदाशी नाम शीतल जे सलोनी नाम से जस्ती जान जाता रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर की 10 बजे उनकर माटी आज फजर की 10 बजे उनकर घरे डॉक्टर मनीलाल रोड पेची झीली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 172 बी ए पास गए क्यूपिप रोड में 92 बरिस के 92 अंके श्रीमती सुमती दुमा, श्रीमती सुमती दुमा पैदाशी नाम कुंज बिहारी जे शांति नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हमन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री श्याम दुमा के घरे। नंबर 172 बी ए पास गए क्यूपिप रोड से उठा के अंतिम संस्कार की खातिर बिगा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 57 मामाद द इलाम हुसैन स्ट्रीट सेंट ख्वा में 79 बरिस के 79 अंके श्रीमती पुष्पावती बीजान, श्रीमती पुष्पावती बीजान पैदाशी नाम दुर्बीज जे शांति नाम से जस्सी जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटी श्रीमती रेणुका देवी बीजान के घरे। नंबर 57 मामूद इलाम हुसैन स्ट्रीट सेंट क्रॉस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भूले वाले देपत के श्मशान भूमि ले जा जाए। सोलफेरिनो नंबर 1 वाकवा में 63 बरिस के 63 ओं के बीबी आयशा एडन, बीबी आयशा एडन पैदाशी नाम राजा जे आयशा नाम से जैसे जान जात रहलन उनका इंतकाल हो गल बा। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर घर है। सोलफेरिनो नंबर 1 वाकवा से उठा के दफनाए खातिर फिनिक्स के कब्रस्तान ले जाल जाए। लॉट नंबर 55 अवियों रेजिडेंस ट्रियानो में 74 बरिस की 74 अंके श्रीमती कुमारी खुर्गधारी, श्रीमती कुमारी खुर्गधारी पैदाशी नाम चगनलाल जे कुमारी नाम से जस्सी जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर माटी आज दिन के 10 बजे लाशा पेलोदौंत एलियन सन्स भुवासन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शिबल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबली सब परिवारों के संगे हमने की संवेदना है।
1: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोताओ, 8:20 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और सुबह का नजराना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में तमाम सुनने वालों का स्वागत करते हैं। तो चलिए इस समय से लेकर 8:50 पर, जहां इस समय से लेकर 8:50 तक आपके लाए हैं चंद डुएट्स गाने। और कार्यक्रम की पहली डुएट प्रेम कहानी फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मीठी आवाज़ों में।

चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत जो है, हिट गीत जो है, प्रेम कहानी फिल्म से लिया गया। राजेश खन्ना और शशि कपूर की दोस्ती को बहुत ही पसंद किया गया है इस फिल्म में। 70 के दशक का ये क्लासिक रोमांटिक गीत आज भी लोग बहुत ही प्यार के साथ सुनते हैं। तो चलिए गीतों का ये खूबसूरत सफ़र से हम आगे बढ़ाएंगे, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो गीत है हेमलता और शैलेंद्र सिंह की मीठी आवाज़ों में आप सुन पाएंगे, बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, अखियों के झरोखों से लिया गया।

बहुत ही प्यारा सा गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं और रेडियो मॉरिशस पे अखियों के झरोकों से फिल्म से लिया गया गीत 1978 की मूवी। और हम आपको इशारा कर दें कि हेमलता को इस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म फेयर प्लेबैक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस गाने के लिए। तो चलिए गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत फिल्म सीमा से लिया गया और इस बार किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में ये प्यारा सा डुएट आप सुन पाएंगे।

0: सदुपयोग भी हमें करना होता है। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है। 8:35 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में। चंद्वेत गाने इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं। तो चलिए, गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम जारी रख रहे हैं। और ये अगला गीत जो है, आप इसे ज़रूर पसंद करने वाले हैं। और ये गीत जो है बहुत ही पॉपुलर है। वैसे हर गीत जो है, जो इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं, आप इन्हें बेहद ही पसंद कर रहे हैं। चलिए, आपके फ़ोन कॉल से हमें पता चल रहा है। तो गीतों का ये सुहाना सफ़र जो है हम प्रसारित कर रहे हैं आपके नाम, आप ही के अनुरोध पे। तो एक ऐसा सदाबहार गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो आप सुनना बेहद ही पसंद करने वाले हैं। तो चलिए, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो अगली भेंट में ये प्यारा सा नज़ाना है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए, सदाबहार गीत फिल्म आंधी से लिया गया। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये बताती है कि करियर और रिश्ते में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब एक पार्टनर जो है बहुत आगे निकल जाए। तो एक अगला गीत जो है फिल्म सिलसिला से लिया गया आपके लिए।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझ

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: तो चलिए श्रोताओं, फिल्म सिलसिला से आ गया ये बहुत ही प्यारा सा गीत है। आज भी ये गीत जो है बहुत ही पॉपुलर है और लोगों जो है इस गीत को बेहद ही पसंद करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो चलिए श्रोताओं, 8:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, समय हुआ है अगले कार्यक्रम का, हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में अब आप सुन पाएंगे।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी

0: धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। मॉरिशस गणराज्य दुनिया भर में अपन बहु संस्कृति और बहु जातीयता खातिर प्रसिद्ध है। भले ही ये एगो छोटा देश है, फिर भी यहाँ दुनिया के अलग अलग कोना से विभिन्न मूल के निवासी लोग एगो जीवंत और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर अनले हवन जा। आज ये सब संस्कृति, परंपरा, सामाजिक प्रथा और धर्म मॉरिशन सांस्कृतिक धरोहर के एगो अभिन्न अंग है। एकर बिना मॉरिशस के कोनो पहचान नहीं बा और इमे दोनों मूर्त और अमूर्त विरासत शामिल बा। हमनी के विरासत के संसाधन, हमनी के हेरिटेज रिसोर्स, हमनी के राष्ट्र के गौरव है, ओकर शान है। ढेर कोई आप में से हमेशा पूछे ला जा कि धरोहर के मतलब का है। धरोहर के मतलब है हेरिटेज, फ्रांसे में एक पैट्रिमोन बोलल जला। धरोहर के गिनती में बाप दादा माँ दादी लोग के द्वारा छोड़ल गल वस्तु, इमारत, गहना, बर्तन, रीति रिवाज, प्रथा, संस्कृति, पुराना जोन प्रतिमा बा या फिर कोनो ढांचा, कोनो स्ट्रक्चर या फिर कोई भी पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जिके बोली ला जा, ये सब धरोहर के गिनती में आवेला। धरोहर की भाषा बहुत बड़ा बा, बहुत विस्तार से सकबा एकर परिभाषा देवे। दिलचस्प बात यह कि हमने एगो छोटा टापू देश होते हुए भी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और बढ़ावा के प्राथमिकता देले आल है जा। और धरोहर के बचावे खातिर कानूनी ढांचा भी तैयार करा गए बा हमने के देश में। नेशनल हेरिटेज फंड की स्थापना से आगे जौन की मॉरिशस के धरोहर के सुरक्षा और संचालन के जिम्मेदार संस्था है, एकर से अक्ते मॉन्यूमेंट एक्ट 1944 के तहत मॉरिशस के धरोहर के संचालन करल जात रहल। 1985 में ई एक्ट में सुधार आना गए। राष्ट्रीय धरोहर के सही संचालन के मकसद से 1997 में नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट फंड कानून पारित करल गए और 2003 में नवा नेशनल हेरिटेज एक्ट के घोषणा करल गए। एकर संगे संगे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण खातिर और भी नियम और कानून पारित करा गल, जैसे आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड एक्ट 2001, लुमोन हेरिटेज ट्रस्ट फंड एक्ट 2004, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011, 2019 में आप्रवासीघाट विश्व धरोहर स्थापित के बफर जोन प्लानिंग पॉलिसी गाइडेंस और लुमोन सांस्कृतिक प्राकृतिक इलाका के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2004 और ओकर अर्बन हेरिटेज बफर जोन साल 2019 में। मॉरिशस यूनेस्को के कितने ऐसे कन्वेंशन के सदस्य देश है जेकर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के संचालन और संरक्षण के प्रावधान बा। हमनी के एगो बहुत ही विशाल और समृद्ध लिखित दस्तावेज के कलेक्शन बा हमनी के आर्काइव्स में। हमनी के देश में फ्रेंच प्रशासन के रिकॉर्ड यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल बा। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर के आर्काइव्स भी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ, तो वापस मिलेंगे 10 बजे भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर। चलिए एक भोजपुरी गीत आपके नाम हम करेंगे, तो हम आपको कहेंगे शुभ दिन।

0: स्टूडियो में अदिति उपस्थित हो गई है। नमस्कार अदिति, इनसे समाचार सुनिए।
1: नमस्कार अनुराधा, श्रोताओं को भी नमस्कार। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की सीईओ कुणाल नाइक और चेयरपर्सन नादिया पिरन ने कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गांजे से संबंधित सुधार की

0: राष्ट्रीय रणनीति की रिपोर्ट सुपुर्द की। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय स्तर पर हुए सलाह मशवरों से प्राप्त हुई सिफारिशें शामिल हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए आम जनता और विभिन्न संबंधित पक्षों से 1800 से ज़्यादा सुझाव और राय इकट्ठा की गई। मंत्रिमंडल को सौंपे जाने से पहले नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। कुणाल नायक ने प्रधानमंत्री को नादेक के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इन समस्याओं का समाधान तलाशने में पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। शागस मामले को लेकर आज मॉरिशस और यूके के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस लगेगा। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर दूसरे वर्किंग सेशन के लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधि और मॉरिशस अधिकारियों के बीच बातचीत चली। बरतानी संसद में कल हुई बहसों में शागस का मुद्दा एक बार फिर उठाया गया। बेल एंड रिमांड कोर्ट में कल मडागास्कर के व्यवसायी मामी गवातुमांगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई पूरी हुई। कृषि और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टरों में कार्यरत सोडियट ग्रुप मडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है। इसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैदखाने से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी, जहां उन्हें रखा गया है। मामी गवातुमांगा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि FCC ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो एक इन्वेस्टर हैं, अपराधी नहीं। पॉम्पलोमोसिस की अदालत पिछले 26 अक्टूबर को इश्टेया के एक हाइपरमार्केट के सर्वेलेंस कैमरों के फुटेज के सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ये तस्वीरें पूर्व मंत्री कल्पना कुंजुशा के मुकदमे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, जिन पर चोरी और चोरी का सामान रखने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कल 3 गवाहों के बयान सुने गए। हाइपरमार्केट के सिक्योरिटी मैनेजर तेहूर, CID के एक सर्जेंट और पुलिस IT यूनिट के एक अधिकारी, उन्होंने अदालत को बताया कि हाइपरमार्केट के कंट्रोल रूम में मौजूद सर्व से रिकॉर्डिंग निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। सीनियर काउंसिल आइवान कोलेंदावेलू के नेतृत्व में बचाव पक्ष इस फुटेज और पुलिस IT यूनिट द्वारा तैयार की गई IT रिपोर्ट को पेश किए जाने का विरोध कर रहा है। बचाव पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट वीडियो की असलियत साबित करने में नाकाम रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग कम से कम 5 लोगों की मौत का कारण बनी, जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में कुछ जानकारियां नहीं हैं। इस पर्यटन नौका से 42 लोगों को बचाया जा सका। हादसे के वक्त क्रू सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आज की चर्चा।
1: आप सभी को नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। और आज हमारी टीम में है फैजन जो टेक्निक पर है, उरुसा हमारी प्रोडक्शन सहायिका, और निज़ाम के निर्देशन में ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आज जैसे कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है ये जानने के लिए कि किस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे आज की जो चर्चा एक चर्चा कार्यक्रम जो है वो ऐसे विषय पर है जो खेती, खाद्य उत्पादन, पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों, इन सभी से सीधे जुड़ा है। एग्री फूड सेक्टर इन सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कृषि और खाद्य क्षेत्र में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां संसाधनों का इस्तेमाल केवल एक बार करके उन्हें फेंक न दिया जाए, बल्कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम उपयोग किया जाए, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जाए और कचरे को भी एक उपयोगी संसाधन के मतलब उसके बदल जाए। तो आपको याद होगा कि हमने वैसे पिछले बार एक प्रोग्राम पर्यावरण मंत्रालय से एक पिछला प्रोग्राम में हम लोगों ने सर्कुलर इकोनॉमी पर चर्चा की थी। तो आज ये प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम का दूसरा भाग है। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इस समय ऐसे पर्यावरण मंत्रालय से हमारे साथ हैं श्रीमती सुदेवी सुब्रन जी और फारे यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट श्री संजय शंभू जी। आप दोनों का स्वागत हम करते हैं। नमस्कार हमारे इस प्रोग्राम। और पिछला प्रोग्राम में हमने जान लीजा सर्कुलर इकोनॉमी के महत्व पर कौन सी है। अतः हमने के मॉरिशस देश जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी कि सिड्स में गिनल जाला, इतना सबको जाना, एकर सामना कैसे करी। हमने के आज के ई प्रोग्राम में चर्चा करब जा एग्रीकल्चर से भी सकेला ई भी मदद करी। ततनी हमने के सरल भाषा में बताओ सर्कुलर इकोनॉमी, सरल भाषा में कुछ बताओ कि पिछले जो निको ब्रीफ हमने के श्रोता या दर्शक के बताओ।
2: जैसे नमस्कार श्रोताओं,

0: पहले एगो हमने के एगो प्रोग्राम हो रहा जहाँ हमने जनरल बच्चे ले रही था सर्कुलर इकोनॉमी पर, आज बोला था सर्कुलर इकोनॉमी एग्री फूड सेक्टर पर
1: जी।
0: जैसे जाने लो हमने के रोड मैप हमने जो अप्रूवे हो रहा उसमें एगो सेंक सकते हैं बातें एगो है एग्री फूड एंड एग्री फूड सेक्टर तो इहू में हमने सकब सा सर्कुलरिटी आने कैसे सर्कुलरिटी जैसे बोला तुम्हें हमने बनावप्स लेवप्स बनावप्स फेकअप्स नहीं ओके हमने के चाला घुमा फिरा के सर्वी करे के तो आगे कुलचिया वो में होवे लाते हैं घुमा फिरा के सर्वी करे के तो देख पत जब हमने है कर सर्कुलर इकोनॉमी करब सा लागे कुलचिया में तो हमने के पोल्यूशन रिस पोल्यूशन डिमिनिया हो जाए हमने हमने के हम कच्चा माल जो है ढेर नहीं सेवी करब सकब से सेवी करते रहे और जो है हमने जो हमने के जैसे बोला हमने के सीड्स है हमने के पे गो सीड्स है स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड स्टेट तो वो में सर्कुलर इकोनॉमी एगो शुआ नहीं है वो नेसेसिटी बन गल बातें तो हमने के जब हाउ प्लान हमने के रोडमैप बनल तो एग्रीकल्चर वन ऑफ द सेक्टर रहल उमें तो वो खातिर हमने दली से कुमाउंस पर हमने बनली से सर्कुलर इकोनॉमी पर आज बच्चे आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी इन एग्री फूड सेक्टर
1: तो मोरिस खातिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र एगो नेसेसिटी बन गल जैसे अभी सुब्रन जी बताइलन तो कैसे एक इम्प्लांटेशन मिनिस्टर देने से करल जाला
2: सबसे पहले नमस्ते एक से आगे एगो चीज हम एगो झलक देला ज्यादा तक जाने ला जब हमने सोचब जा कि पोल्यूशन कहाँ हुआ था या कचरा कहाँ पड़ी होता तो हमने के दिमाग में हमने के कौन कौन ऐसा चित्र आवेला ज्यादा तक देख सोच पाता हमने के बुझा लगा ना एगो कारखाना बाते वहाँ से कुछ निकलता फेंकल जाता ऐसा ऐसा दृश्य आवेला दिमाग में लेकिन जैसे सुब्रन जी बोलन हमने के कृषि क्षेत्र में भी ऐसा ऐसा कार्य होला उत्पादन होला जहाँ से हमने के जैसे बोला सा वेस्ट एग्रो वेस्ट या एग्री फूड वेस्ट में हमने है पौधे कहला जा जन सकल जला हमने के चला जन सकला फिकात हुई या वालो गिजे नहीं हुई हुई या सकल जा ओके ट्रांसफॉर्मे करे तो ये सब गन्ना हमने है उतना उतना गन्ना ओकर पर अमल नहीं कहला जा आज ये करती जाता तो सकेला एक आध गो चीज हमने बाहर से नहीं मंगती सर ऐसे उदाहरण के रूप में हमने ओकर में इकोनॉमी जुड़ल बा सर्कुलर इकोनॉमी में तो जब बात कहला जा फर्टिलाइजर के खाद के शुरू में तुम्हें तुम्हें खाद के बोल रहा तो उतना जब फर्टिलाइजर इम्पोर्ट होता तो आज ये कहला हमने के देश में एक बड़ा योजना रहत कैसे सकत ज़्यादा मात्रा में कंपोस्टाज करी या फिर ओकर से जस्ती अब वालों की जासों में बोलते हैं एक एक उदाहरण में बोलते हैं कंपोस्टाज तो एगो चीज होल तो ओके सकब सा अब एनरिच कंपोस्टिंग करे एनरिच कंपोस्ट यानी कि कंपोस्ट तब बात है लेकिन अब ओके ऋषि का देव सा एक आध गो चीज से ज़्यादा मात्रा में सकेला नाइट्रोजन रहे फॉस्फोरस रहे ऐसे चीज रहे तो सकेला हमने कोई ना कोई मात्रा में हो जितना जो जितना फैचरीजा एम्पोते होता
1: उसको कम कर दे
2: कम कर दे अब देखा यही उदाहरण में वैलोरिजेशन कैसे होता तो जन उत्पादन अब कंपोस्ट से होता उतना नेचुरल है ना ऑर्गेनिक तो ज़्यादा तक जन चीज अब एकड़ में से निकली कौन चीज हो उतना केमिकल्स नहीं बाकर में है एक छोटा सा उदाहरण द्वारा बोला था अब जैसे बोला हमने मंत्रालय द्वारा या हमने के संसद द्वारा कौन चीज कहते हैं जा दो चीज में सका हमें के बोले एक तबा पॉलिसी वाइज जैसे अभी हमने के साथी बोलन सकी बोलन यहाँ पर ही कि सर्कुलर इकोनॉमी वे पर एगो एगो रापोर्ट तैयार कर रहा जहाँ पर हमने के जितना इंस्टीट्यूशन या स्टेक होल्डर्स बा खाली खाली मंत्रालय नहीं बस कि मंत्रालय सब चीज़ नहीं सकेला करे
1: बिल्कुल
2: कोई हमू एज एज ए सिटीजन जैसे बोला सा एगो नागरिक की तरह हमरो कोनो रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है तो है एगो चीज़ बा ऐसा ऐसा जैसे रापो बा सर्कुलर इकोनॉमी पर यही तो हुआ लेकिन हमने लगे कृषि मंत्रालय में हमने काम कर लिया जा जैसे कि लासीज रहा लासीज ब्लॉक एग्रीकल्चर 2026 ओकर द्वारा में जितना है सब चैलेंज हमने के लोकल बा कैसे आए कचरा से सकब सा लिपटे कैसे सकब सा वैलोरिजेशन करे है सब हमने लगे आए एगो रापो में आल बा और अभी हाल ही में अभी निकलने बा में एगो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम

0: काम होता, और देखभा था बजट जो 26-27 के हाल ही में अभी निकलल बात है ओकर में देखभा एगो फ्लैगशिप प्रोग्राम बात है ओकर नाम है विजन 25x35 जे के इन्हें नक्शा जैसे कब बोले तब बोला था कैसे सकब सा हमने 25% अपन जो खाए कि हमने के चाहेला 2035 में करे यूजिंग मिनिमल एग्रीकल्चरल इनपुट्स तो यू एगो बड़ा बा लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी एक में आवेला और तेरह पर अब कुछ होता है तो इतना कागज के टुकड़ा के दे बना तो तेरह में कुछ होता तो तेरह में हमने के जितना डिपार्टमेंट बा फागे में देख बा क्रॉप एक्सटेंशन बा लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन बा रिसर्च भी डिपार्टमेंट बा तो सब कोई काम के ला साथ साथ कौन कौन स्ट्रैटेजी से कल अपनाए कैसे से कि हमने के माटी जोन बा मॉरिशस में फट उपजाऊ रही रेजनरेटिव रही उपजाऊ रही ताकि जो पीढ़ी आवा था उसे की वो माटी के प्रयोग करे कैसे सकब सा जोन कैसे घास के जरा होता नहीं सब तब बिना सब कंपोस्टिंग करे के तो इस सब पर ट्रेनिंग वगैरह मिलेला
1: अच्छा।
0: कैसे सकेला कैसे फीमिया बाते तो हमने ज्यादातर जान ला सके फीमिया के लेके खेत में प्रयोग कर नहीं फीमिया कैसे भी सब कंपोस्टिंग करे कैसे सब एनरिच करे सब पेलेटाइज करे किसी ट्रांसफॉर्मे होता वैल्यूजे होता तो हर सब चीजों का में आवेला और ओकर में भाभी फूड वेस्टेज भी आवेला
1: हां
0: कैसे सब एकर में तो हमने के देर फॉर्मेशन भी देला सके ट्रांसफॉर्मे
2: करे यहां से कब आज ते करे हमने के जो प्लेटफार्म है सब हमने के जो गवर्नेंस है हमने के स्टीयरिंग कमिटी है प्लस हमने के सेट प्लेटफार्म बात है जो जो हमने के फोकस एरिया बात है जैसे एग्री फूड है वो हमने के अपेप्रे एगो 20 action policy action grand action ha jen jala implementer kare ke 2023 plateforma ou préside ou elate l'agriculture c'est ça veut dire ego personne ha jen l'agriculture me ba ou préside kare la chair personne ha ar hamni ke sab mom bate stakeholders jaise bolila sa the olog awilan sa apan input de olan sa different action par jaise food waste bolag jaise femie bolag jaise bolag de ki jab bio gas banai ba kaise voluntary agreement kar ba ta hai sab action wa par kam ho ta te ar I progress ho ta parce que implementation commencer au galbate ar yahan par dekhba ta khali gouvernement nahi reh rahe the jab humni ego committee kari la sa lakhi kilcha par ta wahan par private sector reh late wahan par ngo reh la hume arim rahi sab koi rahi ta o log sab contribute kari an sa kaise humni sakab sa hai agri food bagal ke circularity ane
1: The circular economy roadmap or action plan 2023-2033 ke bare mein pichla baar bhi aap bol kar par jitna koi e program suna tha jural baat wo log ke jaise abhi bol khulasa dela ta e jun action mein agri food kaise sakela e action plan mein madad kare अभी जो नबी बोला बैं
2: एक्शन प्लान में जैसे बोली तो उकर में एगो जैसे बोली जिसने एक्शन बाते जिसने एक्शन बाते प्लस उकर क्रॉस कटिंग जो ना हाँ गवर्नेंस उकर सेंसिटाइजेशन उकर प्रोक्यूमेंट उकर कुत्ते लालवा सब बाते तो है जिसने एक्शन वां देख बता हमने इंप्लीमेंट करते हैं कौन है एक्शन जब देख बता एक इंपॉर्टेंट एगो हमने डेवलप कर से एगो स्ट्रेटजी फूड लॉस फूड वेस्ट पर जब हमने फीचर में हमने के फूड
1: ऐसे गैस्पियार
2: जब एक्शन है वो है डेवलप कर जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे हमने अपन न्यूट्रिएंट के अपन खाद के मैनेज कर अब सर जब हमने के माटी वो बिगड़ी नहीं वो रहले रही सकब सब प्लांटे करे तो आज हम रही जो बायो वेस्ट मैनेजमेंट देख पता जब ढेर कोई गाय पोसे लान जाती करें सर तो सकब हो सेविक थी करके बायोगैस बना के लेने ऐसी सेविक करे देख पता हमने इंपोर्ट परमिट पर काम करते हैं सर जिन में हमने सस्टेनेबल सोर्सिंग कर सर इनमें कौन सी है हमने के चाहे जैसे भाई जी बोला कि हमने के चाहे एपो हम जैसे जाने लग कथों में जिस पूसा हमने चीज एपो होते कर लिया सर हमने के एपो फूड में चाहे जिम्मे
1: करके
2: कम करके इसका इससे जब जब

0: स्टैटिस्टिक फूड वेस्ट के बारे में क्या बताए बाकुंची कितना गास्पियाज होता
1: ये देखा हमने लगभग आज वो मात्रा में बोला जा हमने के ओर से तो सकब साहब सकब जा बोले कि लगभग 30% जो कृषि से जुड़ल बा तो गनला प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन जब प्रोजेक्शन होता और उत्पादन तक खेत में या खेत में से पोस्ट हार्वेस्ट निकल गल ला मंडी में से तोहर घर जब जाता वगैरह तो लगभग 30% तक अभी आए हमने बिला दिला सा
0: खाली एग्रीकल्चर में
1: हाँ खाली हाँ हमने जब फूड आए जब एग्री फूड पर बोला था 30% तो जब देखब 30% तो अब हमने जाओ कैसे आज 189,000 टन आज लेगिम पोज करनी सा एक साल में अब तो सोचा होगा मैं कितना कि हमने पीएचबी करता है सा तो जब हमने सिक्योरिटी अलिमेंटे पर बोला जा फूड रेजिलियंस पर बोला जा तो आज हो 30% जनती से हमने बचाए तक कितना गनला सकती सर
0: भाई जी तो खेती हर लोग खातिर अच्छा फसल मिले खातिर कौन नेचुरल पदार्थ चाहे ला सेवी करी के हो जैसे अभी बोले फिर ये सब हम जानी ला
1: देखा एक कोनो एगो चीज कुछ में होए कृषि में होए कुछ में होए कोनो एगो चीज ज्यादा मात्रा में प्रयोग करवा या कम मात्रा में तो ठीक नहीं हो तो संतुलन बिगड़ जाला कैसे कि गनला एगो चीज के खेती बाड़ी करत हो तो अब तू जहाँ तो फसल के समय आवता तो लेकिन उससे पहले जन खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा बा ओके प्रयोग करत हो तो नहीं छा बात क्योंकि जब प्लान सब ओके आप सोबे का दे नहीं होने तो का शेल्फ लाइफ उतना नहीं रही या फिर पेस्टिसाइड्स के प्रयोग कर दिला ओकर से आगे तो ये जान ला सा कि जन जन जन पौधी में पेस्टिसाइड रहला तो ओकर शेल्फ लाइफ लंबा नहीं रहला कंपेयर जे करबा तुलना में लेबा एगो एगो चीज जन में गन बियो पोजे रहल
2: यहाँ पर हम सब आज दे करे देख बत बेलमा बगल पालमा बगल ढेर प्याज रुपेला तो जब डाले लन सा ओकर में ओकर फैचिलीज ऑन ढेर ढेर तो जब ढेर जैसे भाई जी बोलक जब ढेर डल जान सा तो हौली छो जलाते ओ
1: समस्या होला
2: जाके तब लामिया में चल जाला जब लामिया में देख बत पालमा बगल वो बगल देख बात सीग्रॉस जो सीग्रॉस है वो बहुत ढेर हो जलाते तो हम निकल लापलाज जोली नहीं हो लाते तब वही खाते जन भाई जी बोला तो चाहे हम निकल मात्रा जो सकब सा कंपोस्ट से भी गए तो वो बहुत अच्छा बात है फैचिलिजों जिमिनी करके नहीं तो हम निकल है सब जाफेवन देख बात हाउ जो नाइट्रोजन है फॉस्फेट है सब पानी में चल जाला पानी में चल जाए तो हाउ जहाँ पर देख अलगल ब्लूम हो जलाते देख बात पानी में चल जलाते जब पीब तो सब नहीं अच्छा है तो वही खातिर चाहला ओकर मात्रा जान के सेवी करे के
1: हमने के चाहला एकर में हमने के उपदेश कौन सी बा चला माटी के बढ़िया रखे के ना तो कितना कोई अभी देखा प्रोजेक्शन बियो में हो अंसा तो लोग कैसे कहते हो अंसा निमन से फिमिया वगैरह डाल के कहते हो अंसा तो सब कम मात्रा में आज मन हुई थोड़ा फर्टिलाइजर की प्रयोग भी करे सब बच्चा कमती प्रयोग करे मैं ज्यादातर कंपोस्ट या फिमिया के प्रयोग करे
0: और खेतिहर लोग जनाना बनान के रोपाई करे लंजा और जब ई फल तोड़ देवे लंजा तो कैसे सकब जा उकर पत्ता उकर फिब के उपयोग करे
1: ये एगो बड़ा कठिन प्रश्न बात है देखा बाहर में आज देखब जा कैसे भारत में देखब जा वहाँ पर बहुत केला के उत्पादन
0: होला
1: वहाँ पर ही देख बता एगो लैजिस्ट्री बा जो केला संगे जुड़ल बा एगो फिलिये बात है लापोशवा हम ही लगे हबी ले नहीं बात एगो फिलिये ही बा कैसे कि जब वहाँ पर जब केला के ओकर फसल हो गल तो जब ओकर ओकर गौची भी काटा दला ना ओकर पत्ता भी काटा दला तो हई सब लेके फेंकलने जला हई सब जाके अब वहाँ पर ही एक आध गो कारखाना बाते जो अब हई सब के काजे करके ओकर फिब निकाल के ओकर से रस्सी ओकर से
0: ढेर चीज बना
1: रेसिपियाँ हम निकाय ला सा
0: हाँ एको प्लाली सा एको प्लेट देके हुए
1: सारी ये भी ओकर से बनेला तो अब हमने लगे हई सब प्रोजेक्शन कैसे बोला सा जिस पे ऐसे बस काटत बा और हम फिलिया पोचा के कमी बात है
2: है जहाँ पर हम बोले चाहब कि यूनिवर्सिटी बहुत रिसर्च कर ले बातें और हमने जापान गई सर तो देख ली से एगो

0: compagnie ou zanana ke ho jun la hua pata pata wa ou servi karke saki marocain leather banai leather banai ta ou se sak sa bane late ou banano se kam kare juta bani sak bani sab chiz bani banan se saki sari ou sab bana de lan sa ta ho compagnie wa ai abhi novembre mein तब ओकर से देखब सा कैसे हमने ईडीबी बगल से कैसे ओके
1: ट्रेनिंग सा क्या प्रशिक्षण ना उन लोग पहले आगे बताई
0: आके तब सके इंप्लीमेंट करे हो लैंडिस्ट्री वा मोरिस में
2: एक कर में एक कुंची एक कर में हमने के चला सोच विचार करे के कि इसी वजह से पोटेंशियल पोटेंशियल तो अनेक बातें ढेर बातें लेकिन हमने गाना सब चीज़ के गाना इजोलाशों में दिखला सा ना सिलो में दिखला जा तो कैसे कैसे हाये कि सवाज़े लेब जा कि केला से केला की तरह उत्पादन बोला मॉरिशस में कौन चीज़ सकल लाए करे कर वेस्ट से तो एक आठ बच्ची जा वेला तो कहाँ कहाँ प्रोडक्शन आ बा कहाँ कहाँ के सकी एकर एक हमासे करे के संगे ले ढेर करे हाँ और कल पीछे लॉजिस्टिक कहाँ से कहाँ कौन के ऑर्गेनाइजे करे तक किसान अपन से जाए लेके जाए छोड़े या फिर एक कंपनी आ जाए तो वो जाए हमने किसानों के बलि देखा हमें लगे बातें आवला उसे से तो हमने किसान इजोलाशों में नहीं देखे के नहीं तो कैसे अभी गन्ना के खेती में होता हमने हमारे पिताजी अति कतलन गन्ना के खेती कतलन तो रुकावट हो गल सन सकेला 2020 से तनि सुन आगे रोक देनी सा काहे क्योंकि वो कामियो नहीं रहा लोरी नहीं रहा आई गन्ना ले जाए के ता गन्ना के उत्पादन बंद हो गए ता आई सब चाहला संगे दिखे के
1: तो इस चर्चा को थोड़ी देर के लिए हम रोक रहे हैं और श्रोता और दर्शक लोगों से यही मांग करेंगे अगर आपके पास कोई मतलब सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पर और अभी अंजू आपके लिए एक गीत चलाने जा रही है।

0: आज की चर्चा।
1: आज का हमारा विषय है एग्री फूड सेक्टर इन सर्कुलर इकोनॉमी, और पर्यावरण मंत्रालय से श्रीमती सुदेवी सुप्रन है हमारे साथ, और फागे यानी फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट से श्री संजय संभोजी हमने के संगे भाभी स्टूडियो में। तो मान लो एगो ऐसा सिचुएशन आल कि प्रोडक्शन में सरप्लस हो गल, तो फागे महिला लोग के कैसे मदद पहुँचावेला शंभूजी?
2: हमने लगे फागे में, वैसे तो हमने के जैसे बोले शुरू में डिपार्टमेंट और एक बार कैसे क्रॉप एक्सटेंशन में लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन में, तो यहाँ पर ही हमने महिला लोग के एम्पावर करी लचा। लेकिन फागे ही में एक डेडिकेटेड यूनिट बाते, उसका नाम है वुमेन एंड यूथ यूनिट। तो ये डेडिकेटेड कैसे यूथ और वुमेन खातिन, तो ये लोग ज़्यादा तक वैलोरिजेशन में होता, ट्रांसफॉर्मेशन में होता, एग्रो प्रोसेसिंग में होता। तो महिला लोग के एम्पावर के लिए फॉर्मेशन दे बिलंस, ट्रेनिंग दे बिलंस, कैसे सकल जाए लाके किसी से जुड़ा जो उनको मुझे बातें ओके लेके ट्रांसफॉर्म करके वाले आ जाते आने, और कैसे वो लोग के खाली ट्रांसफॉर्म कर एगो चीज़ नहीं है, मैं कैसे ओके लेके अब तू उठबा आज ए कला प्रोड्यूसर से लेके एगो छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर कहते हो जाए एंटरप्रेन्योर, कैसे ओकर मार्केटिंग भी कर लाखों पाए मावा हमने लगे हो। और एगो खाली फागे लगे नहीं, लेकिन हम सबका बोले कि एगो जेंडर मंत्रालय में भी बा नोएक बात है, नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, वो लोग भी महिला लोग के हाई सहायता कर लंच और का मौजे भी लंच कैसे करना अपन एंटरप्राइज के सेकेंसा निमन से ले जाए। लेकिन यहाँ पर ही हमने के हम के एगो कहना एगो अपॉर्चुनिटी दिला एगो चीज़ बोले के एगो उदाहरण देला अदरक पर से हमने हम जहाँ रहिला हम हमारे गांव में कैके मोतालोंग और लिमोयान लेबा मॉरिशस में जन अदरक आवेला माजोगीते यहीं से आवेला सकेला सुशांत जी पूछा 70% यहाँ से आवत हुई। जब देखबा तो घर घर में सकेला महिला लोग हुई, सकेला काम करते हुए सकेला घर पर हुई या सकेला खेत में वो लोग भी हाथ बटावत हुए। लेकिन देखबा यहाँ पर कितना अपॉर्चुनिटी बात है, जितना अदरक पहुँचा हुआ था ज़्यादा तक मंडी में जला, नेशनल होलसेल मार्केट में जला, हाँ ये अदरक के गाँव में बा गाँव के महिला सकत ले सकत ओके ट्रांसफॉर्मे करे सकत ओके पाउडर पाउडर अदरक बनाए जेकर वाले आ जाते हैं तो जस्ती महंगा हो बेचाला। खाली है नहीं हाई तक अंदर अदरक लेके थौसों में कलंजा, जब किसान अदरक के रोपाई करेला तो जहाँ तक एगो चीज वो लोग बोलना चाहे जैजाम सुते
1: ये अलग
2: है ये एगो चीज एगो दूसरा तरीका है कौन चीज होला, जब अदरक के रोपाई होल ई बारिश तक अंदर आठ नौ महीना के बाद आठ महीना के बाद तो फसल हुई ना?

त कुन चिकै लान्छ कि माटीमै छोडिदेबे लान्छ त अब ओकर फसल दुसरा बरिसमे करि जान्छ लेकिन दुसरा बरिस होइत होइत ओ पिछे जमे लगेला पिछे जस्ती बढ़ाबे लगला जस्ती फेम हो जाला वगैरह वगैरह लेकिन जब दूसरा जम सीजोमे जब ओकर फसल करि जान्छ अब कुन चीज होला तब बड़ा बड़ा जजाम बा तो ओकरमे फेम बा निमन बा लापू सब एकदम से दिखब तो

0: tani sun tanu re helau karme tani sekelana sab ni manche machu re he tap tanuan ke la cause ab jab bechelan cha ta ho feman ke dam ni man rela ta jara ta ko tanwale ke phek de welan cha ta ham batali adrak ke valorize kare ke kaise ke transforme kare ke pehla put ni banai ta jan tanwa phikal dela sakala ko se license we banai ai okar me Okay, go mache bate, jan hamni tapne ka taisa, aur pikata, like circular economy mein kaise chala hai.
1: Yahan par hum sakab aajte kare, bole ki hamni ke circular economy roadmap mein bole na samt ke green job jana create kare ke green job create karte hain sir, ta hai mein mahila log ke sakab se leke bahut cheez kari. Dik bat jan agro processing mein bate, jaise bola bhai ji ta training de bolan sir, jab dik bat am सीजन रहे लाते तो आम के लेक्सी के की कौन के तो देख बात ढेर ढेर हो जलाते तो कौन जैसी पे फेंका जला तो मैडम लोग के वो लोग के ट्रेनिंग दे के बोले लासा जा सा अचार बनाओ सा सा ड्राई फ्रूट बनाओ सा और बना के सर्विस अब करे तो मैं हाउ हमने के जो जैसे बोलनी सा ना ढेर फूड लॉस हो जाते तो फूड लॉस जिमनी का डे वापस और हाँ वो बातें जब मैडम लोग जब घरे रह लन सा तो देख बात वो लोग तला कुजीन में रह लन सा छिलका सब रह लाते तो वो लोग से क्या चाहे सब छिलका वन लेके कंपोस्ट बना दे और जो वो लोग लागे कुल चाहे वो मैं वहाँ से तरह कंपोस्टिंग से क्या से करे आवरी एक चीज आवरी एक बात है कि सीवीड्स जैसे बोली ढेर बातें तो कॉपी गाची वो वो मैं हमने के सहायता करे थोन सा तो वो लोग जब कॉपी गाची मानाम लोग के सकब से ट्रेन करे कैसे सीवीड्स के ओके लेके सकब से स्वा कंपोस्टिंग बनाए स्वा एक दूसर क्वालिटी प्रोजी बनाए कॉस्मेटिक जन वाले आजूते बातें और लोग के ट्रेनिंग दे के सकब से
2: लेस के जो हमने के लाकुट में देखी ला सीवीड सिर्फ सीवीड वाला में हमें निकले ला
0: और सकब चाहे के एक दूसर लेवल पर भी ले जाए हाँ जैसे बोला था ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोजी तो खाली ट्रांसफॉर्म ही होता ना एक दूसर लेवल पर सकब से ले जाए कैसे हमने जान लेना चाह कि मॉरिशस में ढेर लोग जाबे चिखा ऐ कितना कोई हमने के मरुशा जैसे में जाबे चिखा तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का तेंसा तो देखा कुछ सारे वाले आज उठे हो जला कि जब कुछ चीज ट्रांसफॉर्म करके बनाओ तो तब ना वो शुगर फ्री आ जाएगा तब सोचता ओके अब मार्केट में जब लाना तो तब अब एक ब्रांडिंग आ होता होगा संगे कि शुगर फ्री तो हमने के जे जाबे चिखा या फिर जाबे से बचाए खातिन तो अनिवार्य फायदा ही फायदा बात में
2: तो हमने के सब बताओ हमने के घर पर जो फ्री फल लेग्यूम सब्जी से भी करी लजा कैसे इस सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस अमल हो सकी बस जैसे हमने के अभी जितना कोई हमने के सुना था देखा था वो लोग घरे में हवन सा तो कैसे वो लोग के काहे कि जब बोली लजा सर्कुलर इकोनॉमी एग्री फूड में कितना हमने शुरुआत में बोल दी बा कितना खाए कि हमने फेंकी लजा और फ्री में भी बहुत और एक खराब बोल ट्रियाज है करेगी जैसे लापो ये सब ओके ट्रिए करेगी तो कौन चीज अकबर बोले हमने कि जितना कोई हमने के सुना था वो लोग के फ्री वन कौन चीज अकेला करे
1: जैसे मौसम बोला भाई जी हमने बहुत फूड वेस्ट ओके फेंकी लासा वो हाँ जैसे हाँ आप 150,000 टन पर लाने फेंकी लासा और हर एक दिन के 400 टन फूड वेस्ट फेंकी लासा तो कैसे फूड वेस्ट तो ढेर ढेर क्वालिटी है ढेर क्वालिटी है सब जब जैसे बोला फ्री वे बातें घर में तो कैसे करवा तो कि ट्रांसफॉर्मे कर दे ट्रांसफॉर्मे सक कर दे तब ओके सब ओके अचार बनाए ओके जाम बनाए दूसरा ट्रांसफॉर्मे करके पहले के ती दादी लोग तो देखा तो ढेर ढेर कई थे चीज बरिस बरिस अपन अचार रख दे वतन सा बिलाएं भी रह पच्चीस में डाल के तो हो
2: इतने बड़े इप्पे सब
1: हाँ इप्पे हाँ और कर तेल निमन से डाल के बहुत दिन ले रख दे वतन सा जय बताओ कर अचार बहुत मजेदार है तो उसे हमने सकब से अति करे आवड़ी कैसे घर में कैसे सकब से करे जब जय बक्की ने हुई था जब जब किने है तो फ्री के ढेर नहीं हम बच्चा अब जब किने जात हुआ था जब किने जब पता जो तोहर चाहे वो किन क्या ना उकिन के आना रख दे अब दूसर को जेब फिर से जेब किने ना अन बता जो हो जो नीचे के बातें ऊपरे कर द जब मैं ओकर एक्सपायरी डेट घरे हुए मैं मजे नहीं आते हो जाए देख पाते ढेर कोई आने ला ढेर ढेर

0: दाल वो चावल अनियन से तो
1: बहुत धर हो जाते ले तो ही नहीं मिले लाई सब सरियाई के
0: सरियाई के हाँ तो सरियाई दे नहीं सरियाई के लेता नहीं मिला तो मान ला तो अपन पैसा फेंकत हुआ तो ओकलो के चाह अथी करे के और कौन सी सब करे अपन स्टोर कर देबा स्टोरेज कर देबा निमन से फ्रिजिडेयर में डाल के सब प्रोसेसिंग करके वो सब करे जैसे जब देखबा तो पोम नामू कहियो कहियो ढेर निकल जलाते और एगो सीजन में रहते तो बहुत महंगा हो जलाते तो सकबाओ के काट के प्रिजर्व करके रख देबा जब जब लिता जब महंगा रही तो सेवी करबा और जब माता हम लोग तो अपन खाए के बना होला ना जब खाए के बनेबा तो के चला नाप के बनाए के नाप के बनेबा तो ढेर घस प्याज नहीं हो खा लेबा फिनी हो जाए तो भाई में और जो छिलका के जो बोल ली जो छिलका के वो अपन पीछे बगल पहले देखा तो पीछे में बनान के गौछ रहल तो बनान में जाकर फेंक दे वतलन से तो बनान जोली जोली निकले तो अब तो उतना प्लस नहीं आता वो कंपोस्टिंग वो सब कर दे तो कंपोस्ट हो जाए
1: जैसे बोला बनान जोली जोली हो जाए तो ऐसे कंपोस्ट हुआ और फेंक के तब ऐसे जोली हो गल पा तब सकेला कंपोस्ट बनाए कि ना अपन वासों में
0: अब तो प्लस नहीं बा वो खाते
1: कई जना बोले प्लस थी लोग के रूफ गार्डनिंग चाहना करे के कोनो कोनो बड़ा प्लास नहीं रहे लगा तो कौन ची आप लोग के मंत्रालय या फिर पारे देने से कौन कौन प्रबंध सके लाओ लोग के दे के
2: एक एक एक असुविधा कोई भी व्यक्ति लगेगा ना बगीचा ने बा जगह ने बा एक बगीचा का देखा थे तो सकी कंटेनर गार्डनिंग करे सकी रूफ गार्डनिंग करे समझ चाहना चाहने के कैसे कौन मात्रा में माटी कंपोस्ट मिला के कंटेनर में डाले के तब ये सब हमने फॉर्मेशन दिला जा बात ये हम लगे ये सब फॉर्मेशन दिला जा और एक चीज़ बा है देश के हमने घर जन के रसोई घर से निकला कंपोस्ट बा लेकिन आजकल देख बा हमने के मार्केट में एक आध गो छोटा मोटा लापागे मिलेला जैसे देख बा घर ही बायोगैस बनाए और तोहर वेस्ट किचन वेस्ट से ओकर से है बायोगैस बनेला हायो एक भी है संभावना बातें और एक चीज हमने के चलना सोचे के बहन जी बोलन किसे बोलन हमने लगे से 400 टन एडिशन है पोजु करने साल रोज हमने के जहाँ तो हमने के लगभग 400,000 घर बा मॉरिशस में आज हर एक घर में सोच ला 400 टन एक आते नहीं सकेला एक एक एक किलो तक निकला तो कम से कम है देश ऑर्गेनिक जैसे बोला सब निकला तो सकेला सकेला घरे जब एक जगह देखा तो अपन नजरिया से तो सोचा था हमें लगे तो खाली इतनी ही निकलता ना लेकिन ओके जगह सोचे कि एगो कैसे बोला सको पात्रियोत की तरह एगो देशभक्त की तरह जब सोचबा तब बाद हमार के लिए 400,000 घर बा कुल मिला के देखा कितना होगा ऑर्गेनिक वेस्ट तो आज हमने सब ऐसे जाके लेके पिकअप से लैंडफिल खातिर तो नहीं छमा ना तो घर ही पर एक कैसे बोला बर्न हैबिट
0: लाहो पर मंत्रालय एक्वापोनिक करके तब लाहौ में थी सब्जी रोपे के अब हवो नहीं रही तो कोई के तब पोवे में सकबा डाल दे ढेर कोई अपन अपन स्वायों कर
1: छोटा
0: जो लेगी फाइन हाँ फाइन है वो उस अक्यान से प्लांटे कर दे तो देख बात ढेर चीज सकब सा घरे करे हमने केवल उते चाहे लाते
1: तो आज आज की चर्चा में एक बात स्पष्ट है कि सर्कुलर इकोनॉमी केवल कचरे को कम करने की सोच नहीं है बल्कि संसाधनों में कुछ समझदारी से इस्तेमाल करने और उसके उनकी पूरी वैल्यू को बनाए रखने की सोच है और कृषि ने निकले वाले अवशेष हो खाद्य से पैदा होने वाले वेस्ट हो पानी या ऊर्जा इस्तेमाल करने के बहुत कुछ भाई शंभू ने हमने के बताया तो ये सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद दो शब्द समाप्त करने के अगर आप जोड़ना अच्छा, चाहेंगे
2: आज आपके रात बोलेंगे तो हम बोलते ही देखा हमने के चला हमने के माटी के सबसे पहला चला उपजाऊ रखे के तो जन ऐथों बा हमने चाह निमन से चुन के ओकर प्रयोग करे के और ऐसा ऐसा ऐथों चुने के जन सकब जा

0: माटी के उजा रखे और हमें के जन घास बाहर चलाने जराए के जन जन फेंका थे सब ओके जैसे छारा रिसिकले करती सा कंपोस्टे करती सा ओकर से माटी के तब उपजाऊ रखती सा और फिर जन चीज हमने पौधे करते हैं सा हम के चला खाली पौधे करके नहीं सोचे कि देखा जा नेचुरल होलसेल मार्केट में डाले चला ये भी सोचे कि हम तो एक हमेशा बारिश भर सकेला पौधे करते हैं कौन अपॉर्चुनिटी और बा एक से एगो लेवल जैसे जाके ओके ट्रांसफॉर्म करे खाने के
1: अच्छा बिल्कुल
2: हम जन बोले जब कल हम बोले नो गो एयर जन बा रिड्यूस रियूज रिसाइकल रिपर्पोज रिमैन्युफैक्चर हम बोले हई कॉन्सेप्ट पहुँचाला आगे फूड में डाले के जब हई डलब सोच हाँ सकब एविटे करे रेफ्यूजे करे सकब कैसे अभी करे हर एगो चीज में तुहर घर में तुहर रिटेल में हर कारो में हई प्रिंसिपल दल पर तेपर हमने सकब से अपन टारगेट जन बोली ना सकम पूसा वेस्ट फूड वेस्ट चिमिने करे तो हमने के चाहला हम अमल
1: करे के श्रीमती सुदेवी सुब्रंजी पर्यावरण मंत्रालय से आई हुई उनको धन्यवाद देते हैं और फागे से श्री संजय शंभू जी इन महत्वपूर्ण सरल भाषा में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के तो हमें पूर्णाश्रय प्रोग्राम से हमारे श्रोता और दर्शकों को ज़रूर लाभ उठाया हुआ होगा एक अगले प्रोग्राम तक हम लोगों को आज्ञा दीजिए साथ में अंजू फैजन उरूसा और निज़ाम के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। गुलशन गोविंद से जुड़ी जांच में एक नई बात सामने आई है। आरोप है कि आजसू के सदस्यों ने उन्हें अपना वकील बदलने के लिए मनाने की कोशिश की है। ये दावा उनके वकील रुबेन मोहंगापिले ने किया। उनके मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते उनके मुवक्किल के फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान पेश आई। वकील का कहना का आरोप है कि गुलशन गोविंद को एक सिम कार्ड वाला फोन दिया गया और उनसे कहा गया कि वे अपनी पत्नी एमपी वेरोनिक लेगोविन को फोन करें और उनसे कोई दूसरा वकील रखने के लिए कहें। खबर के अनुसार 3 और 4 सितंबर को 2 कॉल किए गए थे। वेरोनिक लेगोविन को भी कई कॉल और मैसेज मिलने का आरोप है। वकील मोहंगापिले का कहना है कि उन्होंने उन नंबरों से जुड़े यूजर्स की पहचान करने की कोशिश की है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनका मानना है कि डिजिटल निशान से पता लगाने में मदद मिल सकती है कि वे नंबर कहां से आए थे। वकील का कहना है कि

0: वे बदले की कार्रवाई के डर के बिना गुलशन गोविंद का पक्ष रखना जारी रखेंगे। ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना को कल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप पर गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उसने जरूरी शुल्क दिए बिना कूपन कोड का इस्तेमाल करके एयर फ्रांस की बुकिंग में बदलाव किए। जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर 34 यात्रियों की 28 बुकिंग की गई। इनमें से कुछ बुकिंग उसने अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए की थी। ब्लू कनेक्ट लिमिटेड को हुए आर्थिक नुकसान का अनुमान 70,000 यूरो यानी करीब 3.5 मिलियन रुपए से ज्यादा का है। बताया जाता है कि एयर फ्रांस के इंटरनल ऑडिट के दौरान इन धोखाधड़ियों का पता चला। एफसीसी ने इस मामले में जांच शुरू की है। वाकवा में उसके घर की तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन और एक टैबलेट तथा एक लैपटॉप जब्त किया गया। बेल एंड रिमांड कोर्ट में कल मडागास्कर के व्यवसायी मामी आबातुमांगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई पूरी हुई। कृषि और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टरों में कार्यरत सोडियट ग्रुप मडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है। इसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैदखाने से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी जहां उन्हें रखा गया है। मामी आबातुमांगा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि एफसीसी ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वे एक निवेशक हैं, अपराधी नहीं। उन्होंने बताया कि वे 30 से ज़्यादा सालों से मॉरिशस में व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा मॉरिशस के बैंकों को राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति के तौर पर अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी है। दोनों पक्षों के वकील आज दोपहर अपनी दलीलें पेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 87 अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। इस पर्यटन नौका से 42 लोगों को बचाया जा सका है। हादसे के वक्त क्रू सदस्यों सहित नौका पर 134 लोग सवार थे। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मैडम लोलो रोजबेल में 65 साल की 65 श्रीमती बिस्वंती भूपत, पैदाशी नाम सियरनामा जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान मैडम लोलो रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

10:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है। समय हुआ है भक्ति धारा कार्यक्रम का। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा की तरह चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में और चतुर्थी पर्व को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और आपको पता है कि सबसे पहले जो है हमें भगवान गणेश जी का नाम लेना चाहिए। जो भी कार्य हम करें ये अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ गणेश जी का स्मरण होता है वहाँ मन में एक नई आशा जो है जन्म लेती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रही है।

चलिए श्रोताओ, गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान विष्णु को, और आपको पता है कि विष्णु जो है पालनहार है, हम सब पर कृपा बरसाते हैं। तो चलिए बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ हम आपके लाए हैं ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान भगवान विष्णु जी पर आधारित।

श्रोताओं, जहाँ नारायण का नाम है वहाँ मन में आशा है, जहाँ विश्वास है वहाँ जीवन में प्रकाश है। तो आइए भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। अगले कार्यक्रम की ओर हम बढ़ेंगे। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और इस कार्यक्रम को प्रसारित करने वाले हैं आचार्य सुपाल मिश्रा जी।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। श्रोतागण, गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के दिन हम सब लोग भगवान गणपति का विशेष पूजन करते हैं, और पूजन में हमेशा याद रखना, उस दिन अगर हो सके तो भगवान गणपति के लिए 21 मोदक पत्ते में हल्दी, अबीर, कुमकुम, सिंदूर, दुर्वा भगवान गणपति को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और 21 परिवार को अगर एक एक मोदक दान करते हैं तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रसन्न है, अति प्रिय है। हल्दी, अबीर, कुमकुम चढ़ा करके वही हल्दी जो चढ़ाया हुआ गणपति का है उसको लेकर के घर जा करके उस हल्दी को पानी में डाल करके स्नान करने से सर्व कष्ट निवारण होता है। दुख, दरिद्र, रोग का निवारण वही चढ़ाया हुआ हल्दी को लेकर के स्नान करने से प्राप्त होता है। 12 महीनों में गणेश जी की उपासना। इस कार्यक्रम में विशेष करके मैं भाद्रपद सिर्फ मास का नहीं बल्कि

के 12 महीनों में जो गणेश पूजा का विधान है उस पर आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चैत्र मास में वसुदेव रूपी गणेश की उपासना करके सुवर्ण दक्षिणा देनी चाहिए। किस महीने में कौन सा रूप का पूजन करते हैं और क्या दान करना चाहिए। वैशाख मास में शंकरषण रूपी गणेश जी की उपासना करके शंख दान देना चाहिए। ज्येष्ठ मास में प्रमुद्न रूपी गणेश जी की पूजा करके फल फूल दान करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में गणेश जी की अर्चा सवित्री व्रत के नाम पर की जाती है, जिससे साधक गणेश माता पार्वती जी का लोक प्राप्त कर लेता है। अगर उस मास में हम सब लोग गणपति भगवान का पूजन करते हैं तो पार्वती लोक का सिद्धांत प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में अनिरुद्ध रूपी गणेश जी की अर्चना करके सन्यासियों को तुम्बी पात्र का दान करना चाहिए, अर्थात उस महीने में सन्यासियों का दान करने से मनुष्य को अति उत्तम फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के गणपति की अर्चा करके देव दुर्लभ फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में बहुला गणेश जी के पूजा का विधान है। भाद्रपद मास में सिद्धि विनायक की पूजा का विधान है। आश्विन मास में कपर्दीश गणेश जी की पूजा पुरुषोक्त से करनी चाहिए। कार्तिक मास में करक चतुर्थी व्रत करने का विधान है। मार्गशीर्ष मास में 4 संवत्सर पर्यंत पालनीय व्रत की विधि है। पौष मास में विघ्न विनायक गणेश की पूजा करने का विधान है। माघ मास में शंखष्ट व्रत लेकर के उनकी पूजा करने का विधान है और फाल्गुन मास में डुंडीराज व्रत करने का विधान है। मंगलवार पर चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जो विशेष फलदायक होती है। रविवार के दिन चतुर्थी आए तो विशेष फल प्राप्त का हेतु होती है। ब्रह्मवैत्त पुराण के अनुसार गणेश की तुलसी अर्पण निषेध है, किंतु नारद पुराण में भगवान गणेश के सुरपक स्वरूप एवं व्रजराज में गजवृक्त स्वरूप के लिए तुलसी पत्र अर्पण करने का विधान है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाले शिवलोक को प्राप्त होता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाने पर दोष की शांति के लिए श्रीमद्भागवत का 10 स्कंद का श्लोक जरूर पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से अग्नि पुराण में बहुत सुंदर से वर्णित है। महाराष्ट्र के अष्ट गणपति। महाराष्ट्र में आज भी गणेश उपासना विशेष रूप से प्रचलित है। गणेश जी के व्याख्यात प्राचीन अष्ट गणपति क्षेत्र महाराष्ट्र के ही मराठावाड़ा अंचल में स्थित है। स्थिते गणेशनायकम् गजमुखम् मोरस्वर सिद्ध्यते बालानां मुकुडं च विनायक मूढ़ चंद्रमणि स्थेवरम् लेहिंद्रियाणि गिरिजात्मजाम् सुवर्णं विघ्नेश्वर औषधम् ग्रामे गजनां सिद्ध्यते गणपति कुर्यात् सदा मंगलम्। गज के समान मुख वाले गुणों के नायक श्री गणेश जी हमारा कल्याण करें। मोरे स्वरूप मोर गांव के

मयूरेश्वर के रूप में सिद्धिम सिद्धि तट के सिद्धि विनायक, तीसरा बाललाल पानी के बालेश्वर, चतुर्थ मूढ़ के विनायक, मूढ़ अर्थात महंड के वरदायिनायक, पांचवा स्थेवर के चिंतामणि, स्थेवर अर्थात थेऊर के चिंतामणि के रूप में। इस प्रकार से गणेश भगवान का 8 रूपों का वर्णन है अष्ट गणपति के रूप में। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति।

चलिए श्रोताओं, अभी आप आचार्य सुपाल जी से एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे, और ये कार्यक्रम जो है सनातन धर्म मंदिर परिषद की तरफ से आप सुन रहे थे। तो चलिए, स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में हम प्रसारित करेंगे।

श्रोताओं, आज जो है गुरुवार है। गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और आपको पता है कि भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य बनाए रखना भी एक साधना है। हर परिस्थिति का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन विश्वास और सही कर्म हमें धीरे धीरे सही दिशा तक पहुँचा देती है। तो आइए चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में।

श्रोताओं, भगवान विष्णु का स्मरण मन को यह विश्वास देता है कि जीवन में जब भी संतुलन बिगड़ता है तब धर्म और सत्य की शक्ति अपना मार्ग बनाती है। तो आइए, ये अगला भक्ति गान जो है माँ लक्ष्मी पर आधारित है। और आपको पता है, जब हम भगवान हरि विष्णु जी को पूछते हैं

तो साथ में हम माँ लक्ष्मी को भी पूछते हैं ताकि मेरे घर ताकि हमारे घर में धन धान्य और वैभव की प्राप्ति हमें हो सके।

तो चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है और आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भी हम भगवान जो है साईं बाबा को भी पूजते हैं। तो ये प्यारा सा भक्ति गान जो है हम भगवान साईं बाबा पर आधारित इस कार्यक्रम में प्रसारित कर रही है। और सबका मालिक एक है, इसी बात को लेकर वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें एक साथ मिलकर, साथ में एक साथ मिलकर जो भी कार्य करे मिलजुल कर हमें करना है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपको पता है भगवान विष्णु के अवतारों में से एक भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण जो है प्रेम और कर्म को बल देते हैं। तो चलिए हम अपने कर्म को करते रहे, हमें फल की चिंता नहीं करना है। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें अच्छे कार्य करना है, और फल की चिंता न करते हुए हम ये अगला भक्तिगान जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा भजन हम चला रही है।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं और ये अंतिम जो है सूचना सुनते चले। सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से जारी की गई ये विज्ञप्ति सुनिए। पिछितक्रिया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है गुदख्वायाल के रहने वाले निवासियों को, सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को सपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम साइडा के साथ। तो हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार, शुभ दिन।

0: नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। गुलशन गोविंद से जुड़ी जांच में एक नई बात सामने आई है। आरोप है कि आजसू के सदस्यों ने उसे अपना वकील बदलने के लिए मनाने की कोशिश की है। ये दावा उसके वकील रूबेन मोंगापिले ने किया। उसके मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते उसके वकील के फ़ोन की फोरेंसिक जांच के दौरान हुई। वकील का ये भी आरोप है कि गुलशन गोविंद को एक सिम कार्ड वाला फ़ोन दिया गया और उनसे कहा गया कि वो अपनी पत्नी वेरोनिक लेगोविन को फ़ोन करें और उनसे कोई दूसरा वकील रखने के लिए कहें। खबरों के अनुसार 3 और 4 सितंबर को 2 कॉल किए गए थे। वेरोनिक लेगोविन को भी कई कॉल और मैसेज मिलने के आरोप हैं। वकील मोंगापिले का कहना है कि उन्होंने उन नंबरों से जुड़े यूजर्स की पहचान करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें ना कामयाबी नहीं मिल पाई है। उनका मानना है कि डिजिटल निशान से ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि वो नंबर कहां से आए थे। ट्रैवल एजेंसी ब्लू कनेक्ट लिमिटेड के पूर्व टिकटिंग एजेंट केल्विन सुताना को कल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के आरोप पर गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने ज़रूरी शुल्क दिए बिना कूपन कोड का इस्तेमाल करके एयर फ्रांस की बुकिंग में बदलाव किए। जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच कथित तौर पर 34 यात्रियों की 28 बुकिंग की गई। इनमें से कुछ बुकिंग उसने अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए की। ब्लू कनेक्ट लिमिटेड को हुए आर्थिक नुकसान का अनुमान 70,000 यूरो यानी करीब 3.5 मिलियन रुपये से ज़्यादा का बताया जाता है। बेल एंड रिमांड कोर्ट में कल मडागास्कर के व्यवसायी मामी गबतमांगा की जमानत अर्जी पर गवाहों की सुनवाई पूरी हुई। कृषि और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री समेत कई सेक्टरों में कार्यरत सोडियट ग्रुप मडागास्कर की एक बड़ी होल्डिंग कंपनी है। इसके सीईओ ने मेलरोज हाई सिक्योरिटी कैदखाने से वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी, जहां उन्हें रखा गया है। मामी गबतमांगा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि एफसीसी ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलीपींस में एक नौका पर भड़की भयानक आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। 87 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। इस जहाज से 42 लोगों को बचाया जा सका है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। मैडम लुलु रोजबेल में 65 साल की 65 years old श्रीमती बिस्वंती भूपत पैदाशी नाम सियानामा, जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान मैडम लुलु रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीचानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। न्यू रोड रोशनो में 89 साल के 89 years old श्रीमती परबावती महसिक की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे इनकी बेटी श्रीमती रानी हीरा के मकान न्यू रोड रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लास्काओ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10:30 AM। बुलाकी लेन मिडलैंड्स में 67 साल की 67 years old श्रीमती चंद्रिका सेलिन पैदाइशी नाम नेपाल, जो गीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे इनकी माँ श्रीमती सविता नेपाल के मकान बुलाकी लेन मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 11 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

जब तक अल्लाह हमारे साथ है, हम कभी अकेले नहीं हो सकते। जो अल्लाह के करीब होते हैं, वो कभी अकेले हो ही नहीं सकते, वो हमेशा उनके साथ होता है। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम नातो सलाम, इसके अलावा आपके पैगाम 5251700 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तिलावत करो, क्योंकि कुरान की वजह से रहमत नाजिल होती है। तो आइए आगाज़ करते हैं तिलावते कुरान पाक से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अर्रूम की तिलावत बमय उर्दू तर्जुमा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में। पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे यानी अल्लाह की मदद से। वो जिसे चाहता है मदद देता है और वही तो गालिब है बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।

ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं।

क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की? सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। वो इनसे जोर और कुव्वत में कहीं ज्यादा थे और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे। तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुठलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे।

अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जिस दिन कयामत बरपा होगी, गुनाहगार ना उम्मीद हो जाएंगे और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी ना होगा और वो अपने शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। और जिस दिन कयामत बरपा होगी, उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे।

तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुठलाया वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे।

तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो अल्लाह की तस्बीह करो यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है, और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे।

और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिंस की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं।

और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं।

और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं।

और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं।

और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है, फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे, और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं, और तमाम उसके फरमाबरदार हैं, और वही तो है जो खलकत को पहली दफा पैदा करता है फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है, और आसमानों और जमीन में उसकी शान निहायत बुलंद है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है।

वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक हैं, और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो, और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो। इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, मगर जो जालिम हैं वो बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कौन हिदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं।

0: सो तुम एक तरफ के होकर दीन इलाही पर सीधा रुख किए चलते रहो और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगैयुर तबद्दुल नहीं हो सकता, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनों, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। ज़मीनों आसमान की तख्लीक, इंसानों की ज़बानों और रंगों का इख्तिलाफ़, रात का सुकून, दिन की जद्दोजहद और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत व रहमत, ये सब हमें अपने रब की अज़मत और हिकमत का एहसास दिलाते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने, उस पर गौर करने और अपनी ज़िंदगी को उसकी तालीमात के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। हर सिमत तेरा करम दिखाई देता है। ये ज़मीन जिसने हमें अपनी आगोश में संभाला, ये आसमान जिसे तूने सितारों से सजा डाला, ये सूरज की रोशनी, ये चाँद की ठंडी चांदनी, हर किरण में मौला तेरी कुदरत की रोशनी, ये चरिंद जो ज़मीन पर तेरी हमद के गीत सुनाएं, ये परिंद जो फिजाओं में तेरे नाम के नगमे गाएं, ये बहते हुए दरिया समंदर की रवानी, ये बारिश की बूंदें, ये चश्मों का मीठा पानी, ये अनाज, ये फल, ये रिस्क की फरावानी, हर लुक्मे में पोशीदा है तेरी मेहरबानी, ये सांसों का चलना, ये दिल का धड़कते रहना, ये आँखों का देखना, ये लबों का कुछ कहना, और इंसान को तूने अक्लो शऊर से नवाजा, मोहब्बत का दिल दिया, रिश्तों से जहां सजाया। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरा शुक्र कैसे अदा करें, तेरी नेमतें गिनने बैठें तो शुमार कैसे करें। बस इतनी दुआ है रब्बे करीम, दिल को हमेशा अपना शुक्रगुजार बना दे, जुबान को अपने जिक्र से आबाद रख, और अपनी हर नेमत को अपनी रज़ा के रास्ते में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस नेमत पर जिसे हम जानते हैं, और हर उस नेमत पर भी जिसका हमें एहसास तक नहीं।

हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफ़ी कल्बी गैरुल्ला। जी हाँ, मेरा रब ही मेरे लिए काफ़ी है, मेरे दिल में अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को अपना सहारा बना लेता है तो परेशानियों में भी उम्मीद बाकी रहती है, अंधेरों में भी रोशनी दिखाई देती है और मुश्किल रास्तों में भी दिल यही कहता है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया के सहारे आर्जी हैं, वक्ती हैं, मगर अल्लाह ताला का सहारा हमेशा हमेशा रहने वाला है। वो हमारी खामोश दुआओं को भी जानता है, आंखों से बहने वाले आंसुओं को भी देखता है और दिल में छुपी हर फरियाद से वाकिफ़ है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें अपना जिक्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे और ज़िंदगी के हर हाल में तुझ पर कामिल भरोसा रखने की तौफीक दे। आमीन। मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:38 हो चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है, सितंबर की 10 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं।

मौजूद सामीन, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं चंद ऐलानात की तरफ। ताहिर याकूब नक्शबंदी, जी हाँ, मोहतरम ताहिर याकूब नक्शबंदी इन जगहों पर चंद महाफिल का एहतमाम कर रहे हैं। जुमेरात 10 सितंबर, आज जुमेरात 10 सितंबर मस्जिद करतबा गश्मों में, जुमा 11 सितंबर जुम्मे की नमाज़ के वक्त मस्जिद रौनकुल इस्लाम सुन्नी गोंबे में, इसके अलावा सनीचर 12 सितंबर दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह हॉल ब्रीज़े वेजिया में, इसके अलावा

जी हाँ, लेडीज़ महफिल-ए-नात एसोसिएशन क्यूपिप और लेडीज़ एसोसिएशन की जानिब से चंद महफिल-ए-नात का अहतमाम किया जा रहा है। मशहूर व मारूफ सनाख़्वान मुस्तफ़ा इशरत तस्नीम की सरपरस्ती में, जो कि कराची पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं, सनीचर 12 सितंबर लिटिल देवील म्यूनसिपैलिटी ऑफ क्यूपिप में दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर, इतवार 13 सितंबर चौकुल और चाय रेस्टोरेंट जो कि है तांग सुपर मार्केट बोबासे में, वहाँ पर दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर। इसके अलावा मंगल 15 सितंबर आफ्ताब इस्लाम हॉल सैपिया में सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक, और मंगल 15 सितंबर नूर मदीना हॉल नोवेल फ्रांस में दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर, और जुमेरात 17 सितंबर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हॉल फिनिक्स में दिन के 1:30 बजे। इसके अलावा सनीचर 19 सितंबर सुन्नी सेंटर हॉल कास्टेल में दिन के 1:30 बजे। और आपको बताते चलें कि कल जुम्मा 11 सितंबर, जी हाँ कल जुम्मा 11 सितंबर रेडियो मॉरिशस के ज़रिए दिन के 11 बजे, जी हाँ शम्मे फरोज़ा प्रोग्राम में मशहूर व मारूफ नातवां इशरत तस्लीम स्टूडियो में हमारा साथ देंगी, सुनना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं चंद और ऐलानात की तरफ। जुमेरात 10 सितंबर बाद नमाज इशा बागे इरम मस्जिद प्लेंदे पपाई में मक्कल मुकरमा सोसाइटी की जानिब से खूबसूरत किरत की महफिल सजाई जाएगी कारी इकरामुल्लाह मोहसिन की सरपरस्ती में, और जुमेरात 10 सितंबर रात के 9 बजे अकबरी मस्जिद प्लेंदे पपाई में, जी हां मोहतरम कारी इकरामुल्लाह मोहसिन की सरपरस्ती में।

मौज़े सामेईन, इस कलाम की फरमाइश हमसे की थी रोज़ीदा ने। जी हाँ बहने, रोज़ीदा यास्मीन राज़िया कीनू के लिए बहने रोज़ीदा, यास्मीन, रुखसाना, शाहीन, भाई रज़ा, इम्तियाज़ अपनी प्यारी बहन राज़िया कीनू के लिए दुआगू हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और दुनिया व आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। इसके अलावा हाफिज़ गिबिया जो कि क्यूपिप की रहने वाली हैं, उन्होंने भी

एक कलाम की फरमाइश की थी और वाकवा से मुस्लिम चिबाई भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं और उन्होंने एक मनकबत की फरमाइश की है। इसके अलावा दागुचिया से अमीरा, दादी हबीबा जूलिया, बेटियां नाजीला, आमीना, नाजिमा, वायदा, बेटे मुस्लिम और इम्तियाज़, बहुएं यास्मीन और रुखसाना, पोते पोतियाँ जरीन, ज़यान, नेहान, ऐज़ान की तरफ से बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक नानी को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा शबनम, शबनीस, फुप्पू रुखसाना, दादी मरहुमा रहीमा, नूरबख्स साबिरून, नूरबख्स मरहूम सत्तार, नूरबख्स अबू सुकन, सफ़ीक खुदादीन, हस्साम खुदादीन के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूमिन की खबरों में ठंड तक अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा ये तमाम मरीज़ों के लिए भी इन दुआएं शिफा की गुजारिश कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं चंद और पैगामात की तरफ। बंधु और कुरमाली फैमिलीज़ त्रियोले से उन तमाम मरहूमीन के लिए दुआगो हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी दुआ मांगने वाला नहीं है। ग्लैंड पॉक से फौजाना सुमैया के लिए दुआगो हैं। जी हाँ, सुमैया के लिए ढेर सारी दुआएं भेज रही हैं। सुमन, उनके वालिद और भाई भी दुआएं भेज रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा सैपुल से रेहाना हुसैन बक्स भी अपनी मरहुमा बहन बीबी फजीला हुसैन बक्स, जिनका 40वां है, उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहुमा की मगफिरत फरमाए। और न्यू ग्रूव से फातिमा भी अपना सलाम पेश कर रही हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं। फिनाज सोमाली दागुचिया से दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं। अपनी सास सुहेला सोमाली के लिए अल्लाह पाक उनकी सास को सेहत जमील अता फरमाए।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: आपकी पसंद. गुरुवार 10 सितंबर 2:45 हो चुके हैं. आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं. मैं हूँ सुमी और यहाँ पर आप सबका पसंदीदा आपकी पसंद प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए. नमस्कार. और चलिए अभी से लेकर 4 बजे तक इस प्रोग्राम में हम आपके साथ साथ रहेंगे और बेशक आपके फ़ोन कॉल्स, आपके डेडिकेशंस सब हम शामिल करेंगे. 4028085 है नंबर हमारा, साथ ही 5251700005 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं. और किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, कोई ख़ास मौका है, जो भी मौका हो, अगर उनके लिए कोई गाना आप जो है फरमाइश करना चाहते हैं तो बेशक इस प्रोग्राम में आप जुड़ जाइए.

0: अरे है 4028085 नंबर हमारा। साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700055 पर। और यहाँ पर इस समय रफीक दौलत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लनमाइयों से। गाना जाएगा उनकी बीवी नूरजहाँ के नाम और सभी दौलत परिवारों के लिए। यहाँ पर ये गाना आपकी फरमाइश पर यहाँ पर चल पड़ा। और आपको बता दें कि इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। और समाचारों के उस पार आपकी पसंद यह प्रोग्राम जारी रहेगा, तो आप हमारा साथ यूं ही देते रहिए 4 बजे तक इस प्रोग्राम में।
1: आपकी पसंद

0: आपकी पसंद।
1: चले बड़े ही प्यार से हमारे बहुत सारे सुनने वाले हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जा

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। कश्तियों को दी जा रही सेवाओं को आसान बनाने के लिए मुश्किल पोर्ट अथॉरिटी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज कर रही है। मैरीटाइम सिंगल विंडो के विकास से आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कई बंदरगाही सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रणाली से बंदरगाह समुद्री ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संचालित करेगा। गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना या इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुडो में मोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की। नए उपकरणों को प्रदान करते हुए यह ऐलान किया गया। भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं। ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब हो। इस साल मॉरीशस में वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेंगे। अपनी कार्यावधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कोऑपरेटिव रोड लाफलोहा में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड श्री किशवरदत्त दुर्बीजा, श्री केशवरदत्त दुर्बीजा जो चुनुन क्वाफिया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे के बेटे राज दुर्बीजा के घर कोऑपरेटिव रोड लाफलोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड पिछे काफ्रे में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मिंत्रावती सिबा पैदाइशी नाम सुन्यासी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रॉयल रोड पिछे काफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
4: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीईबी पिचिरिव्या यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। पिचिरिव्या के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, पिचिरिव्या के रॉयल रोड और आसपास के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर शुक्रवार 11 सितंबर को, यानी कि कल शुक्रवार 11 सितंबर को दोपहर के तीन से शाम के साढ़े पाँच बजे के बीच यहां पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: आपकी पसंद। 3:05 होने को है आपकी पसंद। इस प्रोग्राम में समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमी और 4 बजे तक आपकी पसंद इस प्रोग्राम में हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर फरमाइशों का सिलसिला आगे ले जाते हैं। विश्वानी दुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गाना इनकी ओर से जाता है इनकी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, सहेलियाँ है, नीला, प्रतिभा, साथ में

शोभा है, गीता गजाधर है और सभी दुमन परिवारों के नाम ये गाना चलने को है। और इस समय मादाल ब्याह से अनीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाएगा करुणा, अमृता, कविता के नाम सभी दोस्तों के लिए जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, आप भी किसी से मिलना चाहते हैं और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिए किसी गाने की फरमाइश कर दीजिए। गाना सुनकर उनको भी आपकी याद आ ही जाएगी, है ना। गाने हैं ही इतने प्यारे के क्या कहे। कोई ना कोई गाना किसी न किसी याद से तो ज़रूर जुड़ा है, जैसे कि जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं, कयामत से कयामत तक फिल्म से लिया गया, उदित नारायण और अलका जी की आवाज़ों में। इब्राहिम जी ने पोटलू से इस गाने की फरमाइश की है, कहते हैं ये गाना हमारी पूरी टीम के लिए और हमारे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम जी, और ये गाना खासकर आपके लिए भी।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: आपकी पसंद।
3: चलिए, भगवान गणेश के स्वागत में सभी भक्त लगे हुए हैं, जोरों शोरों से उनके स्वागत की, उनके आगमन की जो है तैयारियां हो रही है। घर आंगन की सफाई सजावट सब हो रही है। सभी भक्त बस सब जो है इंतज़ार कर रहे कि कब भगवान हमारे घर आंगन आएंगे और हमारे घर आंगन को खुशियों से भर देंगे। और भगवान गणेश तो है ही, सभी विघ्नों को दूर करते हैं, तो बप्पा सबका कल्याण करें। यहाँ पर जो है गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं कमला दीनू की ओर से, जो मोताबा से हमारे साथ

जुड़ी हुई है और गाना जाता है उनकी सहेलियों के नाम, सीता है, साथ में अंश है, आर्ची है, सभी दीनू परिवार, सभी रामधनी परिवारों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए भी जो इस समय जो है यहाँ पर आपकी ओर से गाना, हमारी पूरी टीम के लिए भी सुदेवी जी वाकवा से साथ दे रही है। गाना जाता है यहाँ पर उनकी दीदी लालिता के लिए, सभी कुशल परिवार के लिए, दीदी सुनीता है, शोभा है, देवीना है, लालोरा से पूरा परिवार है, माला, जयश्री, अंबिका, जलू परिवार, बिका परिवार, रामरतन परिवार, रामगुलाम परिवार और रघुवर परिवारों के नाम भी इस गाने को हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए ये गाना सभी भगवान गणेश के भक्तों के नाम।

आपकी पसंद। जी हाँ, तुमसे बढ़कर कौन, इनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, ये जो सभी विघ्नों को दूर करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। और चलिए अब बारी है अगले तराने की। अगला जो गाना है यहाँ पर जाता है सभी बंधु परिवार के नाम जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरियाली और रास्ता फिल्म का ये जो गाना है इन्होंने मांगा है यहाँ पर अपने पूरे परिवार के लिए, और बंधु परिवार जो है हमेशा हमारा साथ देते हैं, और इसी गाने को हम यहाँ पर करेंगे इनके लिए भी। ज्योति जी के नाम जो शाटर बनारस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गाना जाता है आशनी, रेखा, सुरेखा और सभी मधव परिवारों के लिए।

जी हाँ, बड़ा ही खूबसूरत सा तराना, हरियाली और रास्ता इस फिल्म से लिया गया, अभी आप सुन रहे थे। और चलिए अब बारी है इस अगले तराने की, और इस अगले गाने के साथ नेफ्यू ऋषभ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और नेफ्यू ऋषभ जो है 5 साल के हो रहे हैं, बेस्ट विशेज उनकी नानी माँ कुमारी, भाई शुभम, मौसी है आशा, मामा है आरती, पापा है राज, सभी जानू परिवार की ओर से, सभी किसनामा परिवार की ओर से। और यही गाना आशा जी की ओर से उनके सभी टीचर्स के नाम, सभी दोस्तों के लिए। और यहाँ पर चलिए, आपने आर्मी फिल्म का गाना जो है इसकी फरमाइश की है, तो आपकी फरमाइश पर ये गाना चल पड़ा।

0: की पसंद।
1: और चलिए फरमाइशी गीतों में अब जोड़ते हैं के गाने की फरमाइश की सुनहरे दिन। ये फिल्म इसका जो गाना है हमें नहीं मिल रहा है। इंद्रानी जी, अगर आप हमें दोबारा कॉल करके कोई और गीत की फरमाइश करना चाहें तो बेशक 4028085 पर आप हमें कॉल कर ही सकते हैं। अभी के लिए जो अगला तराना चलने वाला है इसे हम आपके लिए करते हैं। उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। साधना जी रिवेदिक क्रियोल से हमारा साथ दे रही है और ये तराना जाता है इनके पति देवानंद के लिए। साथ में नीतीश है, कुशल है, करण है, बेटिया है अनुषा, मानशा दामाद है, सतीश बहू है, कवीना संहिता, नाती पोते है जिया है, तेजल है, गौरव क्रियान, सबसे छोटा है लड्डू गोपाल। और यहाँ पर यही गाना सभी साथ में है। तास्विक सभी जीवन परिवारों के लिए भी जो रिवे देख रेओल, मतलब कि जीवन परिवार रिवे देख रेओल, मौदालबिया, यूनियन पार्क, लारोजा और दुबई के सभी जीवन परिवारों के नाम ये तराना यहाँ पर हम करेंगे। और बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पर सुबी जी हमारा साथ दे रही है, कह रही कि नमस्ते, एक गाना हो जाए इनके पति के नाम सावन आपके। ओके, चलिए आपने ये गाना मांगा है, हम देखेंगे अगर इस गाने को मौका मिला तो ज़रूर चलाएंगे। सुबी जी शुक्रिया साथ देने के लिए।

जी हाँ, एक प्यार का नगमा है और चलिए ज़िंदगी भी प्यार के नगमे से कुछ कम नहीं है। कहीं ना कहीं प्यार है तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ है, और प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। और बड़े ही प्यार से इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आदाब, और आदाब ये किसकी ओर से आया है? ओके, सैपियर से मोहम्मद शफीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदाब आपको भी। मोहम्मद शफीक जी कैसे हैं?

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, साथी मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। किसी का साथ न छोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। बेशक अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा है जिसे आप अपना कह सकते हैं, जो आपके लिए हमेशा साथ होते हैं, आपके समझते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत से ऐसे लोग मिलते हैं। तो चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं इस आखिरी गीत की ओर। यस, आखिरी गाने के साथ आज की जो हमारी मुलाकात है, मतलब कि अभी के लिए आपकी पसंद में समाप्त हो रही है, लेकिन आगे जारी रहेगी। तो चलिए, यहाँ पर अगला गाना जाता है, यहाँ पर किनके नाम, इतना लंबा मैसेज है, सिर्फ नाम ही नहीं दिख रहा। राइट, गाना जाएगा यहाँ पर संबंध फिल्म का तराना है। ओके, आपकी दीदी मान के लिए, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये गाने की फरमाइश आई है दीदी मान के लिए। चलिए, गाना चलता है दीदी मान के लिए और उन सभी के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। लक्ष्मी जी भी बड़े प्यार से जुड़ी रही, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। लेकिन समय कमी के कारण आज बहुत सारे रिक्वेस्ट जो है वो अधूरे रह गए हैं, क्योंकि आज इतने सारे फ़ोन कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस। जाते जाते मानिता जी, ये गाना आपके लिए भी, और माहिन जी, ये गाना आपके लिए भी। इसी के साथ आपके पसंद के प्रोग्राम तो समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात आगे भी चलने वाली है 6 बजे तक। इस गाने के तुरंत बाद शुरुआत होगी भक्ति सागर इस कार्यक्रम की, तो साथ देते रहिए, हमारा धन्यवाद।

0: गुरुवार 10 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, आप सबका हृदय से स्वागत हम करते हैं। और अभी से लेकर सांझ के 5 बजे तक भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम चलेगा भक्ति सागर। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। श्रोता, आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी से, और भगवान गणेश का जो पावन पर्व है जो हम मनाने वाले हैं अगले सप्ताह, गणेश चतुर्थी का, जिसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर कोई सम्मिलित होता है और भगवान गणेश के स्वागत में हर कोई लगा हुआ है। भगवान गणेश की अपार कृपा आप पर सदा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

श्रोता भक्ति सागर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। भगवान गणेश जो सभी विघ्नों को दूर करते हैं, उनके नाम से हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज तो गुरुवार का दिन है, तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा श्री हरि जी का ध्यान करते हैं।

श्री विश्वामित्र से अनुमति पाकर विदेहराज जनक विवाह का प्रस्ताव एवं निमंत्रण सहित अपने मंत्रियों को द्रुतगामी वाहनों में महाराज दशरथ के पास अयोध्या भेजते हैं। मिथिला से आए हुए दूतों से मिलकर और राजा जनक का संदेश पाकर वयोवृद्ध परंतु महापराक्रमी महाराज दशरथ अपने गुरुओं, आचार्यों, उपाध्यायों, ऋत्विजों, पुरोहितों और मंत्रियों से विचार विनिमय करने बैठते हैं और सर्वसम्मति से श्रीराम और वीर्यशुल्का सीता का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। 3 रातों और 4 दिनों तक यात्रा करने के बाद जब वे जनकपुरी पहुंचते हैं तब उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जाता है और विवाह की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी जाती हैं। इधर राजा जनक के छोटे भाई सांकाश्य के राजा कुशध्वज राजा जनक द्वारा भेजा गया संदेश पाकर तत्काल मिथिला पहुंचते हैं। श्रोताओं, रामायण महाकाव्य की महान कथा को आगे बढ़ाते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वक्ता सर्वेषु कत्येषु वसिष्ठो भगवान ऋषि विश्वामित्राभ्यनुजातः सह सर्वैर महर्षिभिः। रामायण महाकाव्य का श्लोक कहता है कि महाराज दशरथ और विदेहराज जनक अपने कुलगुरु, आचार्य, पुरोहित और परिवार के सदस्य एक दूसरे के कुल और परिजनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से साथ बैठते हैं। महाराज दशरथ जनक जी से विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे महाराज, हमारी ओर से महर्षि वशिष्ठ जी हमारे वंश का परिचय देंगे। यह बात कौन नहीं जानता है कि महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। सभी शुभ कार्यों में वे ही हमारे कुल की ओर से बोलते हैं। यदि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और अन्य उपस्थित ऋषियों को कोई आपत्ति न हो तो आज भी हमारी वंश परंपरा का वर्णन हमारे कुल गुरु वशिष्ठ ही करेंगे। श्रोताओं, महाराज दशरथ अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को इक्ष्वाकु वंश का देवता कहकर संबोधित करते हैं। देवता शब्द का अर्थ समझाते हुए निरुक्तकार कहते हैं कि जो देता है वही देवता है और देवता कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। जो स्वयं द्युतिमान है, शक्ति संपन्न है और जो अपनी ज्ञान शक्ति को अपने संपर्क में आने वालों को प्रदान करता है वही देवता होता है। देवता दिव्य गुणों वाला, शक्तिशाली, विराट चरित्र वाला होता है। देवता की प्रवृत्ति देने की होती है, बांटने की होती है। वह दाता होता है, इसीलिए वह आदरणीय और पूज्य होता है। शास्त्र कहता है कि देवता के पास दिवत्व होता है। देवता गुण, कर्म और स्वभाव से श्रेष्ठ होता है। मंत्र कहता है द्वयम् वा इदन्न तृतीयमस्ति सत्यम चैवानृतम च सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्याः। मंत्र का ऋषि कह रहा है कि 2 लक्षणों के कारण मनुष्यों के 2 नाम होते हैं। 1 प्रकार का मनुष्य देवता कहलाता है और दूसरा मानव कहलाता है। कैसे मनुष्य को देवता कहा जाता है? श्रोताओं, ऋषि कहता है जो सत्य के पक्ष में रहता है, सत्य को स्वीकार करने की शक्ति रखता है,

सत्य कर्म करता है, ऐसे उच्च गुणों वाला मनुष्य देवता कहलाता है। परंतु जो झूठ के साथ खड़ा रहता है, झूठ को मानता है और झूठे कर्मों को करता और बढ़ावा देता है, वह मानव कहलाता है। श्रोताओं, देवता बनना मानव जीवन का उद्देश्य होता है। देवत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य होता है। इस विषय में मंत्र कहता है कि विद्वान सो ही देवता है, मतलब कि जो सत्य को धारण करता है वही देवता है। महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रियों के लिए पूज्य थे, आदरणीय थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में अग्रसर होकर अयोध्या के राजा प्रशस्ति पाते थे। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न शासक सदा ही ज्ञान वृद्धों और पूर्वजों की सेवा को अपना धर्म मानते थे। ऋग्वेद का मंत्रांश कहता है कि त्वं वृद्ध इंद्र पूर्व्यो भोरवरी वस्यन। मंत्रांश वृद्धों की और पूर्वजों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहता है कि हे मानव, वृद्धों को संसार का अधिक अनुभव है, इसीलिए जो वृद्धों के अनुभवों का लाभ उठाता है वह ठोकरें खाने से बच जाता है। ऋग्वेद यह भी कहता है कि देवानाम सख्यम उपसेदिमा वयम, मतलब कि सत्य को धारण करने वाले देवता के साथ मित्रता करके हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। देवता के आचार व्यवहार का निरीक्षण करने से मनुष्य ऊंचा उठता है, उन्नति करता है, क्योंकि देवता की संगति औषधि के समान होती है। शास्त्र कहता है कि चंदन और चंद्रमा से भले ही हमें शीतलता मिलती है, परंतु जो शीतलता देवताओं के संग में रहकर प्राप्त होती है वह अपूर्व होती है, अप्रतिम होती है। इसीलिए वेद भगवान हमें देवताओं से मित्रता करने का परामर्श देते हैं। और श्रोताओं, महाराज दशरथ धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुरुष थे। उन्हें अनुभव वृद्धों, ज्ञान वृद्धों और वयो वृद्धों की सेवा करनी आती थी। इसीलिए जब उनसे उनके कुल का परिचय पूछा जाता है तब वे महर्षि वशिष्ठ को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वशिष्ठ जी मेरे कुल के देवता हैं। रामायण में आया हुआ श्लोक कहता है कि वाक्यम वाक्यविदाम श्रेष्ठ हो, अर्थात स्वयं महाराज दशरथ वाक कुशल थे। उनकी वाणी में भाव अभिव्यक्त करने की अद्वितीय शक्ति थी। परंतु वशिष्ठ जी एक तो कुलगुरु थे और ऋषियों में श्रेष्ठ थे। वेद कहता है ऋषि सयो मनुरहितः, यानि कि ऋषि वह है जो समस्त प्राणियों का हित करता है, कल्याण करता है। मंत्र दृष्टा तो वह होता ही है, तत्व दृष्टा भी होता है। मंत्र और तत्व दोनों की सही सही पहचान करने के बाद ऋषि समस्त संसार की भलाई करता है। महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु कुल के हितैषी थे, शुभ चिंतक थे, भला चाहने वाले थे। श्रोता भाई बहनों, महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु कुल की गरिमामय गाथा और उसके महापराक्रमी शासकों का कितना सफलतापूर्वक वर्णन करेंगे यह हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

जी हाँ, सभी के दुखों को हरने के लिए भगवान गणेश आ ही रहे हैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर जो है वे सबका कल्याण करते हैं। ईश्वर जो है यदि किसी दुख के परिस्थिति में हमें डालते हैं तो उस परिस्थिति का सामना करने का साहस जो होता है, शक्ति जो होती है, वो भी प्रदान करते हैं। ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। बस हमें इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि वे सदैव हमारे साथ है। कभी कभार हो जाता है ना कि अचानक से कोई सहायता आ जाती है, कोई मदद मिल जाती है, कोई साथ दे जाता है, जहाँ पर हमें लगता है कि कोई हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। ऐसी परिस्थिति में भी अचानक से जब किसी का साथ मिल जाता है, कोई सहायता, कोई मदद आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर ही तो है जो हमारा साथ दे रहे हैं।

रहे हैं। ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा रहे। ईश्वर सदैव आपका कल्याण करे और आप हमेशा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए इस अंतिम आरती के साथ हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इसके तुरंत बाद शुरुआत होगी सदाबहार गीतों की।

और श्रोताओ, इसी के साथ भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। आप सभी ने इतने प्रेम से आज भी हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस अंतिम आरती के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन कर

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
3: तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमी और यहाँ पर आपका साथ हम दे रहे हैं और यहाँ से शुरुआत होती है सदाबहार गीतों की। यकीनन गाने तराने ऐसे हैं कि हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं और गानों के बिना, संगीत के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए अभी से लेकर लगभग 6 बजे तक जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप के साथ साथ हम रहने वाले हैं, आपका मनोरंजन हम करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे और सदाबहार गीतों में आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो है बहुत अच्छे से बीता होगा और अभी से ये जो शाम है ये इन खूबसूरत गानों के साथ और भी अच्छे से बीते ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो चलिए शराबी फिल्म के इस गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इंतहा हो गई इंतज़ार की।

एक्चुअली अभी तो रात को काफ़ी समय है, अभी शाम का ये वक्त है, आप हमारे साथ यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। और अभी के लिए अगली आवाज़ें हैं सलमा आगा और मनर उदास जी की, मीत मेरे मन के फिल्म का ये गीत आप सबके नाम।

और चलिए यहाँ पर सदाबहार गीतों में एक ऐसा गाना यहाँ पर चल पड़ा है, अखियों के झरोखे इस फिल्म से लिया गया। और इस फिल्म का ये गाना हमारे रेडियो पर इतना पॉपुलर है कि हम क्या कहें। आए दिन जब भी हम फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा इस गाने की फरमाइश कोई ना कोई हमेशा करता है। तो हेमलता जी की आवाज़ में ये गाना उन सभी के लिए जिनका भी ये गाना बहुत ही पसंदीदा है।

और चलिए यहाँ पर शोभा जी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गानों को पसंद कर रही है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे मैसेज के लिए जो हमें यहाँ मिला। और यहाँ पर इस समय कमला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी आपके मैसेज के लिए भी। सुबी जी भी हमारा साथ दे रही है, कह रही कि नाइस सिलेक्शन। विश्वानी दुमन जी भी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर साथ में मौदालबे से अनीता जी कह रही कि गाने मुझे भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आप लोगों का साथ अच्छा लग रहा है।

0: चलिए हम तो किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन आपके मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं कि कहना पड़ रहा है। शिमला जी बेलरोज से साथ दे रही है, गानों को एंजॉय कर रही है, साथ में यहाँ पे लक्ष्मी जी लिख रही है कि मैं भी हूँ आपके साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। और कटरबोन से यहाँ पर सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, धन्यवाद सरिता जी। ऐसे ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप साथ दे रही है इसके लिए धन्यवाद। और सदाबहार गीतों का ये जो प्रोग्राम है, इस आखिरी गाने के साथ खत्म होने को चला। लगभग 5:47 पर आप सुन पाएंगे नू थ्रावाई नू लावेनिया, इसे जहां पर जॉब से रिलेटेड जानकारियां आपको दी जाएगी, और इसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार। तो चलिए अभी के लिए हमारे जाने का समय हो चला, इतने प्यार भरा साथ आज भी मिला इसके लिए धन्यवाद। शुभ संध्या आप सभी को हमारी ओर से।
1: हाँ, आधी रात को।
2: कहाँ?

નું થવાઈ નું લાવીને તો હર ખાતિર મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ સાથ મેં એમબીસી કે મિરલ જુલેલ સહયોગ સે પેશ કરલ જાત બા સેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ ન્યુ નોક્સ કોન્ટ્રાક્ટિંગ લિમિટેડ જો ને સેન વેન્સન દે પર્લ પાઈ મે હ કો જે થા ટિક વેલ્ડર જે એનસી લેવલ 3 કર લે બા 3 વર્ષ કે એક્સપિરિયન્સ બા એપ્લિકેશન ખાતિર કોલ કરિયો 5446 9506 પર રિસિપિચે કે આખરી તારીખ 11 સપ્ટેમ્બર 2026 જેમ ઇનોવેશન લિમિટેડ જો લા બ્રાસરી કે ઓપિપ મે હ કો જે થા એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રિકેટ जिनका एक बार स्किल एक्सपीरियंस बा कारपेंटर जिनका एक बार स्किल एक्सपीरियंस बा ड्राइवर जिनका एक बार स्किल एक्सपीरियंस बा और मैनुअल कार के ड्राइविंग लाइसेंस भी बा एप्लीकेशन का दिन फोन करिए 5246 9506 पर या ईमेल भी करिए अपन सी वी के साथ जेमिनी इनोवेशन लिमिटेड एट जीमेल डॉट कॉम पर यानी GEMINOVATIONLTD याद रखिए @gmail.com अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2026 सेक्टर ब्यूटी पार्लर एस के सी एफ हेयर प्रोडक्ट लिमिटेड जोन कॉलोनी स्ट्रीट मेबर्ग में है खोजतवंजा बॉबर जिनका डिप्लोमा मा इन बॉबर एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 5826 9604 पर या अपन सी वी विदा करिए ऑन vidur-sharma@live.com अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 13 सितंबर 2026 सेक्टर क्लीनिंग सर्विसेज ब्रिलियंट क्लीनिंग सर्विस लिमिटेड जोन करपू लेन रोजबेल में है खोजतवंजा क्लीनर जिसे पेयली पहाड़ लेबा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 5446 9506 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026 सेक्टर रिटेल वुलवर्फ मॉरिशस लिमिटेड जोन द क्यूबिकल लॉट नंबर 1 रॉयल रोड फिनिक्स में है खोजतवंजा शॉप असिस्टेंट एट कास्कावेल आउटलेट जे एस सी ले पहाड़ लेबा एप्लीकेशन खातिर अपन ई मेल विदा करिए HR@wulwerf.co.za पर और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026 सेक्टर एग्रीकल्चर वेजी क्रिस्टल कंपनी लिमिटेड जन मंडप लेन मोताबा में है खोजतवंजा फील्ड क्रॉप वर्क ग्रेड 2 जिकर एक बार स्किल एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 5246 9066 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 सेक्टर होलसेल उनानिम लिमिटेड जो न प्लॉट 7 इंडस्ट्रियल जोन कोमाउदेल में है खोजतवंजा सेल्स एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जिनका 12 महीना के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर अपन ईमेल विदा करिए अपन सीवी के साथ ऑन अकाउंट्स टू एट UNANYME.MU पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026

कलकत्त होल सेल टेनफा कंपनी लिमिटेड जो बोगेनविल रॉयल रोड के अपिप में है खोजत वंजा ड्राइवर फॉर हैवी व्हीकल ग्रेड वन जिकर तीन बरिस के लिए बा प्लस वैलिड गुड्स व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहना रहे के आपने काशो खातिर अपन ईमेल अपन सीवी विदा करिए admin@tenfa.mu पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026। सेक्टर मैकेनिक गैराज योगेश लिमिटेड जो यूनियन रोड पीछे काफरे में है खोजत वंजा ऑटोमोबाइल पेंटर जिनकर चार बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए वैचवित वैनसैक।

yani ki 88 2 55 46 ya 57 80 75 08 par आरजी भेजे की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 सेक्टर रेस्टोरेशन फूड विजन लिमिटेड जुन चेक इन हॉल एस एस इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लेजॉन्स में है खोजा तवंजा वेटर जे एच एस सी या बी एस सी कर लेबा अप्लीकाशो खातिर अपन सी वी मेल द्वारा विदा करिए हेड ऑफिस एट फूड विजन डॉट एम यू पर या कॉल करिए 637-9-8-9-8 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 सेक्टर मोबाइल रिपेयर्स Ian's Phone Tech Limited, Jun Song Gule Mebag Meha, Khojatwanja Mobile Phone Technician Grade 2, JSC Leparleba, 6 Mahina Ke Experience Ba, Aur 7 Mein Technical Qualifications Ba in Mobile Repair. Application Khatin Phone Kariya, 57-02-70-24 Par, Arzi Bheji Ke Aakhri Tarikh 20 September 2026. Sector Logistics, SLD Stone Limited, Jun Budan Street Upper Vale Meha, Khojatwanja Driver Grade 1, Aur Aapke पास जाना एक वैलिड हैवी मोटर व्हीकल 10 टन की ड्राइविंग लाइसेंस रहे के और 3 साल के एक्सपीरियंस भी एप्लीकेशन खातिर अप्लाई करिए ऑन मॉरिशस जॉब्स अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2026 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग मेटालाइट कंपनी लिमिटेड जोन लॉट 11 रोजबेल बिजनेस पार्क ग्रोबियो न्यू ग्रोव में है खोजा थवंजा हेल्पर वेल्डर टिग एंड मेक दोनों के लिए आपके चाहना एनसी लेवल 3 और दूबर स्केल एक्सपीरियंस टर्नर खातिन चाहला एन सी लेवल 3 दूबर स्किल एक्सपीरियंस ड्रग्समैन खातिन चाहला डिप्लोमा दूबर स्किल एक्सपीरियंस स्टोर कीपर एच एस सी या एस सी अगर आप पढ़ ले लेकिन दूबर स्किल एक्सपीरियंस स्टोर मैनेजर खातिन चाहला डिप्लोमा प्लस 5 बर स्किल एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 58-02-30-48 पर या 57-50-94-63 पर अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 सेक्टर लॉन्ड्री सर्विसेज ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड जनरल रोड काशी पोर्ट लुइस में खोजतवंजा प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक सुपरवाइजर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट गुड्स व्हीकल ड्राइवर या हेल्पर वैलिड गुड्स व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहला और 1 बरिस के एक्सपीरियंस भी साथ में चाहला ऑपरेटर चिकन 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिन अपन ईमेल विदा करिए सीवी के साथ humancapital@dcs.mu पर या कॉल करिए 207-2000 पर या कभी भी आप लोग सकबजा जाए ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड रॉयल रोड काशी पोर्ट लुइस सेक्टर बेकरी नाइस एंड टेस्टी पेस्ट्रीज लिमिटेड जुन सावन रोड नोवेल फ्रांस में है खोजा थवंजा हेल्पर या पैकर एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए 58-02-30-48 या 57-50-94-63 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 सेक्टर इंश्योरेंस फेनिक्स इंश्योरेंस मॉरिशस लिमिटेड जनरल रोड को मॉडल में है खोजा थवंजा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जे एस सी ले पहड़ लेबा एप्लीकेशन खातिन अपन सी वी विदा करिए ऑन cr@phoenix.com ins.mu या कॉल करिए 233-7044 पर या कभी भी आप लोग फिनिक्स इंश्योरेंस अकबजा जाए और पता है रॉयल रोड कोमा दिल अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 सेक्टर रिटेल मेड एक्टिव लिमिटेड जोन कैंस रिजर्व स्ट्रीट ले सालिन पोर्ट लुइस में हो खोजता फार्मासी टेक्नीशियन जेकर डिप्लोमा बा इन फार्मासी और 1 बरी स्किल एक्सपीरियंस बा वेलनेस एंड ब्यूटी एडवाइजर जे एच एस सी ले पहड़ लेबा और एक्सपीरियंस बा इन सेल्स एंड कॉस्मेटिक फार्मासी अटेंडेंट जे एच एस सी ले पहड़ लेबा एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी बा एप्लीकेशन खातिर अपन सी वी विदा करिए hr@medactive.mu पर या तो फिर सकबजा आप वेबसाइट पर जाए medactive.mu पर और वहाँ पर सकबा अपन एप्लीकेशन करें अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 सेक्टर रिटेल ऑन द रॉक एजुकेशन लिमिटेड जो 6 Aldrin स्ट्रीट रोजभुइन में है खोजा थवंजा केयर गिवर फीमेल अर्ली चाइल्डहुड कोर्स के साथ अगर आप लोग सकबजा अप्लाई करें तो सकबा कॉल करें 57-58-93 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 हेल्थ एक्टिव IBL लिमिटेड जोन कैंस रिजर्व स्ट्रीट ले सालिन पोर्ट लुइस में खोजता वेयर हाउस असिस्टेंट तुहरा चाहना एस सी या कोनो भी इक्विवालों तुहर पर आज क्वालिफिकेशन बा डिलीवरी राइडर जे एस सी ले पहड़ ले बा या कोनी भी इक्विवालों क्वालिफिकेशन बा साथ में वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस चाहना रहे के डिलीवरी असिस्टेंट या हेल्पर तुहरा चाहना एस सी या कोई भी इक्विवालों क्वालिफिकेशन प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चाहना चाहे के प्राइवेट कार या फोकलिफ्ट या कोई भी तुहर पास ड्राइविंग लाइसेंस बा मर्चेंडाइजर तुहरा चाहना एक्सपीरियंस इन रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग साथ में कस्टमर फोकस चाहना रहे कि प्रोएक्टिव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर और तुहर पास चाहला मोटरसाइकिल के
एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रहे कि आपने काशो खातिर ईमेल विदा करिया hr@healthactive.mu पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026।

Sector Astatal, Special Education Needs Authority, Jun Cyber Tower 2, B Floor, Iben Meha. The San Authority, Junba, U Consultant Khujata, Speech Therapist Ki, or Ekar Khatin Ego Assessment. सकेला होई एडमिशन वैवेंसित खातीन और जुन असेसमेंट एक्सरसाइज बा ये ओपन रही 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक एंड एक स्पेशल एजुकेशन नीड्स रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स में सकेला होई मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सुबह के 9 बजे से ढंग के 2:30 बजे तक और ये जो ड्यूरेशन है ये 3 दिन पर रही पर वर्क और यहा एस सी एन आर डी सीज जोन नंबर 1 प्लान दी पपाई राइजिंग रोड प्लान दी पपाई नंबर है डीसीसी स्वसन कैन सेकंड वन जोन 2 और गजादुर फ्लैक एस एन आर डी सी रॉयल रोड फ्लैक 420-0668 मेगा एस ई एन आर डी सी कॉलोनल मेगा बोबासें 467-290 पर मुका के एस ई एन आर डी सी बुआशेरी रोड मुका नंबर है 434-0820 जोन 3 खातिन फैने एस ई एन आर डी सी रॉयल रोड फैने मेबर्ग नंबर है 634-4470 रिवे दे जोंगी एस ई एन आर डी सी लाबाराक स्ट्रीट रिवे दे जोंगी नंबर है 626-8859 जोन 4 खातिन है आलिब्रियन मुका एस ई एन आर डी सी Alibiyan Castel 693260 or John selected consultant reloke ego monthly allowance they will jai 66,000 K or plus refund of traveling by car or aap log ke ego period par rakhal jai prata terms par जन कौची दालो एंतरेसे बा अपन हिसाब से सकबा जा जाके एप्लीकेशन करे और लोग तोहरा चाहला एगो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करे के और तोहर करिकुलम विटाए अपन सभी कॉपीज ऑफ क्वालिफिकेशन एगो लेटर के साथ तोहरा चाहला विदा करे के बाय लेटेस्ट 23 सितंबर 2026 और अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 23 सितंबर 2026 तो चले देखे ला जा वैकेंसीज इन द पब्लिक सेक्टर यहाँ पर जन पब्लिक सर्विस कमीशन बा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजता कम्युनिटी फिजिशियन और एक खातिन आप लोग सक बजा जाए https://psc.gov.mu.org/ पर अर्जी बिजी की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026 प्राइवेट हाउस होल्ड में वैकेंसी रखल बा हाउस होल्ड एम्प्लॉय खातिन बदवाजू और मेबर्ग खातिन एप्लीकेशन खातिन सक बजा कॉल करे मेबर्ग EIC 6 N 95 18 पर या 630-0401 पर हाँ वैकेंसी बा हाउस मेड खातिन लोअर वेल पर आप सक बजा कॉल करें गुडलैंड्स के EIC 282-5917 या 282-5918 पर और हाउस मेड के वैकेंसी रिविया जुरां पर और एजेंट खातिन सक बजा एप्लीकेशन करें कॉल करिए रिविया जुरां पर के EIC 412-6925 पर और ई रहल नू थवाई नू लावेनिया जो तोहर कार्य मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गए

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार आदाब, शाम के ठीक 6 बजे हैं। खुशामदीद इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। रेडियोलॉजी और कैंसर के मिनी इन्वेसिव इंटरवेंशन के सिलसिले में प्रोफेसर एडवर्ड लम शाउलिंग का हवाला दुनियावी सतह पर लिया जाता है। वो मोशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में अपनी सहायता देने के लिए तैयार। आज दोपहर बाद मोशन मूल के इस डॉक्टर ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से की मुलाकात। विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। पहली बार के लिए मॉरीशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि मंडल मॉरीशस आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दाहिन तांग ने विदेश मंत्री से भेंट की।

0: गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह कुद्दो में मोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग। गणेश उत्सव का माहौल देश में महसूस किया जाने लगा है। वाक्वामी गणपति के भक्त मिट्टी से बप्पा की मूर्तियां बना रहे हैं। विसर्जन विधि के दौरान भक्त उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की इच्छा व्यक्त करेंगे। और फिलीपींस में एक कश्ती में आग, 5 लोगों की मौत, 86 लोग जख्मी। नमस्कार, आदाब। रेडियोलॉजी और कैंसर के मिनी इन्वेसिव इंटरवेंशन के सिलसिले में प्रोफेसर एडवर्ड लाम शांगलिन का हवाला दुनियावी सतह पर लिया जाता है। आज दोपहर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलुई में। मोशन मूल का ये डॉक्टर लंदन के इंपीरियल कॉलेज में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि वो मोशन डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। इसके अलावा वो अपने मोशन दौरे के दौरान कैंसर से पीड़ित मरीजों की सर्जरी भी करेंगे। विरासतों की हिफाजत करना ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। फ्रांस की मदद से 3 ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये बता दें कि फ्रांस 1 मिलियन यूरो देगा। पहली बार के लिए मॉरिशस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इदारे के महानिदेशक दाहेन तांग ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। मॉरिशस ने कई परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग की मांग की है।
1: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक दाहेन तांग ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी से संबंधित मजबूतीकरण पर एक कार्य सत्र में भाग लिया। इसका मकसद रहा नवाचार, रचनाओं और कलात्मक रचनाओं को सुरक्षित रखने वाले इन अधिकारों को आर्थिक जरिया बनाना और रचनाकारों के लिए आय का स्रोत बनाना। दाहेन तांग ने कहा, हमारे विचार से मॉरिशस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर मजबूत नींव है। मॉरिशस के लिए अगले अध्याय के अंतर्गत ये देखना है कि मॉरिशस किस तरह पदार्थ या सेवा बन सकता है। नौकरी पैदा करना, निवेश आकर्षित करना, ठेकेदारों का समर्थन करना, ये भी कि किस तरह फाइनेंसिंग प्राप्त करने के लिए हिस्सेदार बन सकता है। बैंक गारंटी को लेकर इस कोशिश को ज्यादा आगे जाने के लिए मॉरिशस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समर्थन की मांग की है, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से स्थानीय पदार्थों का मूल्य बढ़ाना। रम, शक्कर और रोड्रिक्स के नींबू पहले से ही इस लेवल से फायदा उठा रहे हैं। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, इससे इन पदार्थों के लिए पहचान मिलती है। जब मंडी में ये सामान बेचे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब पदार्थों को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। निर्यात किए गए पदार्थ हैं, स्थानीय स्तर पर जो सामान तैयार किए जाते हैं, इन पदार्थों को रजिस्टर करने की संभावना है GI इंडेक्स के अंतर्गत। इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े कमर्शलाइजेशन और फाइनेंसिंग पर भी बातचीत चली। इन परियोजनाओं को अमल में लाने की दिशा में मदद पहुंचाने के वास्ते मॉरिशस में एक विशेषज्ञ भेजे जाने वाले हैं, जो कानूनी ढांचे की तैयारी और वाहनों के कलपुर्जों तथा दवाइयों के लिए पैरेलल आयात को अमल में लाने की दिशा में कार्य करने में सहायता पहुंचाएंगे।
0: मलागासी उद्योगपति मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग पर बहसें आज बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने खत्म हो गई हैं। मैजिस्ट्रेट इल्फाज फारूक नाचिया 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगे। प्रतिरक्षा ने 300 से जायद दिनों तक अपने मुवक्किल के कैद में रखे जाने पर एतराज जताया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि मामी गवातुमांग के फरार होने का खतरा है। गवाहों के साथ बात करने और सबूतों में हेरा फेरी करने का भी खतरा है। अक्टूबर 2025 में मामी गवातुमांग को गिरफ्तार किया गया था और मेलगोज की अदालत में तब से वे कैदी हैं। इस साल मॉरिशस में वर्ल्ड तमिल्स इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कल 11 से 13 सितंबर तक पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में ठेकेदार, अर्थशास्त्री और मुख्तलिफ मुल्कों से आए पेशेवर वैश्विक अर्थनीति और अंतर्राष्ट्रीय तिजारत की चुनौतियों पर बात करेंगे। यासिन दीन मोहम्मद की रिपोर्ट पर यह विवरण।

0: तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई देशों से आए करीब 150 प्रतिनिधि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सांपत कहते हैं,
1: दिस कॉन्फ्रेंस मेनली टू डिस्कस अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन।
0: ये सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा का अवसर देता है, साथ ही मॉरिशस और तमिलनाडु के बीच निवेश और विकास के अवसरों पर भी खास तौर पर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य, मेडिकल टूरिज्म, वित्त और प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है। नेटवर्किंग सत्रों के जरिए नए साझेदारों से जुड़ने और कारोबार के नए अवसर पैदा करने का भी मौका मिल रहा है। इस सम्मेलन में तमिल समुदाय से जुड़े कारोबारी, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। कार्यक्रम में व्यापार में वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है, खासकर भारत, मॉरिशस और अफ्रीका के बीच व्यापार को लेकर। साथ ही कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है।
2: गैर कानूनी तरीके से कचरा फेंकना यानी इलीगल डंपिंग करने की हरकत के सिलसिले में पर्यावरण मंत्रालय ने आज सुबह को दो मेमोरी फैसिलिटीज में एक राष्ट्रीय चेतना अभियान की लॉन्चिंग की। नए उपकरणों को प्रदान करते हुए यह ऐलान किया गया। भारतीय सरकार के सहयोग से 6 स्कैवेंजिंग लॉरियां दी गई हैं। ये चेतना अभियान इलाकाई प्रशासनों की मदद से चलाया जाएगा ताकि जनता के ज्यादा करीब जाया जा सके। गणेश उत्सव का माहौल देश में महसूस किया जाने लगा है। वाकुआ में गणपति के भक्त मिट्टी से बप्पा की मूर्तियां बना रहे हैं। विसर्जन विधि के दौरान भक्त उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, अपने सभी दुख दर्द और जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थनाएं करेंगे। हर कारीगर के लिए बप्पा की मूर्ति बनाना एक कला और परम्परा के अलावा भक्ति का जरिया है।
3: रंगों से पहले मिट्टी आकार लेती है। कृष्ण राव अप्पा की उंगलियों के बीच मिट्टी दबती हैं, संवरती हैं और फिर उसके हर छोटी बारीकी पर काम होता है। धीरे धीरे उभरती लकीरें और घुमाव भगवान गणेश की आकृति में जैसे प्राण भर देती हैं। कई दशकों से वे चेहरे और आभूषणों को उसी लगन से आकार दे रहे हैं। यहाँ कुछ मिलीमीटर का अंतर भी मूर्ति के पूरे भाव को बदल सकता है।
4: Ça l'héritage qui nous transmet de génération en génération. Et moi, mon quatrième génération qui peut continuer à faire Ganpati. Et la préparation de Ganesh Chaturthi a commencé à partir de Nag Panchami. C'est là, après Nag Panchami, qui nous a cessé la terre. Et bien sûr, on a cessé ça la terre là, Bédicap. Et bien sûr, on a une préparation de ça la terre là. Quand nous prenons les nouvelles, nous faisons un petit trempé. Et puis ça, pour 4-5 jours, et puis ça nous bien nettoyer la terre là, tirer tout ce man l'herbe et rose tout ça là, et nous graser la terre là et pour capable faire ça manière pour nous rendre mouti.
3: ये कला समय के साथ थमी नहीं है, नए रूप जन्म लेते हैं और उन्हें गढ़ने की तकनीक भी निखरती गई है। इस वर्ष उनकी कार्यशाला में दो खास रूप सामने आए हैं। वीरा गणेश भगवान गणेश के वीर स्वरूप को दर्शाती है, जबकि तरुण गणेश उनके युवा रूप की झलक है। इन दोनों कृतियों में कला एक नया रूप लेती है, लेकिन आस्था से उनका नाता वैसा ही बना रहता है।
4: Nous avons beaucoup de modèles, quand nous regardons internet, nous avons différents modèles. Pour un seul motif, demande beaucoup de dévotion et beaucoup d'émotion. C'est un sacrifice qu'il fait. À partir que nous commençons à se gambader, c'est le sacrifice qui commence.
3: सड़क के दूसरी ओर उनके चचेरे भाई राजभाऊ अपनी अलग कलात्मक राह पर चलती हैं। वे भी कई तरह की मूर्तियां बनाते हैं और हर मूर्ति का अपना भाव, अपना स्वभाव और अपनी पहचान होती है। लेकिन ये नई सोच केवल मूर्तियों के रूप तक सीमित नहीं। दोनों कार्यशालाओं में मूर्तियां पूरी तरह मिट्टी से बनाई जाती हैं। पर्यावरण के अनुकूल ये मूर्तियां विसर्जन के बाद पानी में सहज रूप से घुल जाती हैं।
5: Jamais une mourti va vous faire. Quand on voit la terre, les plus bons pour inventer l'époque, les vous font pour lui-même, mais tandis que le talent, pour l'environnement, il va bon. Mais ça n'a pas plus bon.
3: दो कार्यशालाएं कला की दो अलग पहचान, घरों और पूजा स्थलों तक पहुंचने से पहले हर मूर्ति में कई घंटों की मेहनत और धैर्य समाया होता है। उसकी

0: हर रेखा में रह जाती है कारीगर के हाथ की छाप, उसकी अपनी शैली और उसके मन का भाव।
1: कल रात इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोर्ट लुई में नेशनल कुरान रेसिटेशन मुकाबले का ग्रैंड फिनाले लगेगा। मुल्क के दीगर इलाकों से 175 नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें 9 फाइनल्स तक पहुंचे। जीतने वालों को उमरा अदा करने का पैकेज मिलेगा। मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी और एमबीसी के तावुन से कल के ग्रैंड फिनाले में पाकिस्तान के कारी डॉक्टर इकरमुल्ला मोहसिन बतौर खास मेहमान शिरकत फरमाएंगे। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कारी भी हैं, आज आप एमबीसी के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। उनकी खुशगुन आवाज़ में एक ख़ास कशिश है और अरबी अल्फाज की अदायगी में ऐसी मिठास है कि दिल बेइख्तियार मुतवज्जो हो जाता है। कुरानी आयतों पर उनकी महारत यकीनन काबिल-ए-दाद है। आप एक माहिर तिब यानी मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ पाकिस्तान की एक मोहतरम शख्सियत हैं। हमारे दरमियान साहिब इज़्ज़त खुश अलहान कारी डॉक्टर कारी इकरामुल्ला मोहसिन साहब तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम और आदाब आपको, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, थैंक यू वेरी मच।
1: कारी साहब, आप नेशनल कुरान कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले के लिए खास मेहमान के तौर पर मुशर्रफ आए हैं। आप हमें बताएं कि कुरान की तिलावत के लिए कौन कौन सा पहलू अहम है, मद्देनजर रखना चाहिए जब तिलावत करनी हो।
2: बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला जो पहलू है वो ये है कि हमें खुलूस से दिल के साथ, खुलूस से नीयत के साथ जो है वो कुरान मजीद जो है वो पढ़ना चाहिए। और फिर सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो तजवीद है, यानी कि आपका पूरा फोकस जो है वो तजवीद के ऊपर होना चाहिए। यानी कि तजवीद जो है, आप जो समझें कि तजवीद का मतलब ये है कि कुरान के जो हरूफ हैं उनकी सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वो उसको तजवीद कहा जाता है। उसके फिर मखारिज हैं, फिर उसकी सिफात हैं, तो कुरान को सही अदायगी के साथ पढ़ना जो है ये बुनियादी चीज़ है। और उसके साथ फिर जो है वो मकामात हैं कि आपने किस लहन के अंदर, किस सुर के अंदर, किस लहजे के अंदर कुरान मजीद को जो है वो अपने पढ़ना है। तो यकीनन ये आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपने ये मकामात सीखे होंगे, आपको ये लहजात के बारे में पता होगा। और फिर तीसरी जो अहम चीज़ है वो वक्फ़ और इयादा है कि जब आप कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं तो आपने कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे वक्फ़ करना है, और फिर कहाँ से आपने उसको लौटाना है, आपने उसका इयादा कहाँ से करना है। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। फिर आवाज़ की खूबसूरती ही, आवाज़ का तरन्नुम, ये एक इजाफी चीज़ है। अगर किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी आवाज़ में तरन्नुम ज़्यादा है, तो यकीनन जब वो पढ़ेगा तो उसकी एक अपनी चाशनी और खूबसूरती होगी।
1: 1400 से ज़्यादा सालों से कुरान पढ़ी जाती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जानते हैं कि, लेकिन आज के दौर में कितना ज़रूरी है कि कुरान पढ़ने के साथ साथ कलाम पाक को समझना चाहिए।
2: बड़ी खूबसूरत आपने बात की। कुरान का जो है वो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, इससे कबल बल्कि इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا। यकीन कुरान जो है वो मंबा रुश्त हिदायत है और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए निजात का एक बेहतरीन ज़रिया है। जिस वक्त तक हम कुरान को सही पढ़ के, सही समझ के उस पर अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक कुरान हमारे लिए निजात का ज़रिया नहीं बन सकता।
1: बेशक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि समझना बहुत ज़रूरी है, और आप ट्रेनिंग भी देते हैं कुरान पर। कुरान शरीफ जो है वो इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है और हमारे रसूल पर नाजिल फरमाई गई थी। आप हमें बताइए कि आप एक आलिम हैं, एक स्कॉलर हैं, और आपके नज़रिए से कुरान पाक का जो सबसे बड़ा दरस है वो क्या है।
2: बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। वाहतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि कुरान की जो रस्सी है, we have to catch the rope of the Allah, but and the rope of the Allah is the Quran. पूरी इंसानियत के लिए जो है इसमें दरस है, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं, बल्कि क़्यामत तक के आने वाले के लिए जितने भी लोग होंगे, जितने भी जो है वो अफराद होंगे, उन सब के लिए जो है इसमें खूबसूरत दरस है। और लेकिन वो बड़ी बात सबसे यही है कि जिस वक्त हम कुरान को समझेंगे नहीं तो ये हमारे लिए दरस बन नहीं सकता। जब हम तक, जिस वक्त तक इस पर अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक ये हमारे लिए निजात का ज़रिया नहीं बन सकता।
1: कारी साहब, अगर आपको हमारी नई नस्ल के लिए कलाम पाक के हवाले से आपको एक पैगाम देना हो तो आप क्या कहेंगे?
2: नई नस्ल के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान की तालीमात को आम करें। और आज बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमने कुरान की तालीमात को पसे पुश डाल दी है, और कुरान को जब हम आम करते हैं, जब हम कुरान को

0: उसको पढ़ना सीखते हैं, तो यकीनन इसके साथ हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका भी हमें हल नज़र आता है और हम एक पक्के और सच्चे मुसलमान बनते हैं। हमारा अल्लाह ताला के साथ हमारा एक क़ुर्बत का एक जो बेहतरीन ज़रिया है वो भी कुरान मजीद की रीडिंग है और कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा होना है, और उस वक्त तक हम मोमिन नहीं कहला सकते। देखें, कुरान एक अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब है, उसका मोहब्बत भरी निगाह से देखना भी सवाब है, उसको छूना भी सवाब है। तो यकीनन कुरान ही वो वाहिद किताब है जो हमारे लिए जो है उम्मत पूरी के लिए जो है वो निजात का बेहतरीन जरिया और सबब
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बनता
1: आप बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर क़ारी इकरमुल्लाह मोहसिन साहब। आप मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से MBC के तआवुन से तिलावत कुरान के कौमी मुकाबले के ग्रैंड फिनाले में बतौर ख़ास मेहमान मुर्शद तशरीफ़ लाए हैं। ये कॉम्पिटिशन कर रात इस्लामी सकाफती सेंटर ICC पोर्टबी में किया जाएगा और कुल 9 फाइनलिस्ट हैं। हम आपको बता रहे थे विरासतों की हिफाजत करना, ये एक कार्यशाला का आज मुद्दा रहा। मार्च 2027 में नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। फ्रांस की मदद से 3 ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। फ्रांस 1 मिलियन यूरो देगा। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: हमारी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए आयोजित कार्यशाला में अलग अलग तरह के कैमरों के जरिए इन पलों को रिकॉर्ड किया गया। अधिकारी बीते समय की इन निशानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती हैं और इसी उद्देश्य से नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बिल को मार्च 2027 तक संसद में पेश किया जाएगा। मॉरिशस की इस पहल में मदद के लिए अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मॉरिशस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ एक समझौता तय हुआ था। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है।
3: दो
2: सालों के लिए हम 2 मिलियन यूरो की धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। इस राशि का एक हिस्सा विशेषज्ञता, अनुभवों का आदान प्रदान तथा धरोहरों का संवर्धन करने के लिए प्रयोग किया गया है। कार्यशाला में कई मंत्रियों, नागरिक समाज संस्थानों और पुलिस के प्रतिनिधि शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से आए इन प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव साझा किए ताकि हमारी सामूहिक समिति से जुड़ी इन धरोहरों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। इन सुझावों को एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाएगा जिसमें विरासत प्रबंधन के विशेषज्ञ वैसौनिग्री भी शामिल हैं। जब धरोहरों के संरक्षण की बात करते हैं तो हम इलाके के प्रबंधन और विरासत के साथ उसके संबंध की भी बात करते हैं। इसमें विरासत को तोड़े जाने या उससे नुकसान पहुंचाने वालों से बचाव भी शामिल है। इसलिए इस परियोजना के लिए सभी संस्थाओं और मंत्रालयों को साथ लाना जरूरी है। मंत्री महेंद्र गोंदिया कहती हैं, इस विधेयक की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे कई धरोहर हैं जिनका संरक्षण करना जरूरी है और इसके लिए बहुत खर्च होते हैं, पर इस सहयोग के माध्यम से वर्तमान कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस सहयोग की शुरुआत के लिए 3 ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई है। इनमें सरसिव सागर रामगुलाम बोटानिकल गार्डन, पुरानी सुप्रीम कोर्ट और मेबर म्यूजियम शामिल है। विरासत से जुड़े इस प्रोजेक्ट में फ्रांसीसी साझेदारों का सहयोग अगस्त 2027 तक जारी रहेगा।
1: विदेश में फिलीपींस के पालावान राज्य में कश्ती में आग लगी। कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 87 लोग जख्मी हुए। तटरक्षकों के मुताबिक 82 लोगों को बचाया गया जिनमें 38 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबरान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर नवंबर के चुनावों में रिपब्लिकन्स की जीत हुई तो हर अमेरिकी नागरिक को $5,000 मिलेंगे। अपनी कार्यवधि के मध्य में पार्टी के पहले जुटाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया है। और अब करते हैं मौसम की बात। मॉरिशस में कल सुबह 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। मस्करेंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से काफी ठंड महसूस की जा रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे, रह रहकर पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में बारिश होगी और ऊंचे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। कल दिन

के दौरान घने बादल होंगे और ऊंचे इलाकों में रह रहकर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से हवाई ढलानों पर सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। समुद्र में लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली, इसी वजह से समुद्र की हालत खराब रहेगी। सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ उतर सकती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:10 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:03 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

Avenu Gosami Mogami 85 साल के 85 years old श्री कृष्णदत्त सिबरन, श्री कृष्णदत्त सिबरन जो बाबा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और रॉयल कॉलेज क्यूपिक में पढ़ाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 12:30 बजे इनके घर अवेन्यू गोसामी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 रॉयल रोड खोंबे में 68 साल की 68 years old श्रीमती साकिला सोवाम्बेया, श्रीमती साकिला सोवाम्बेया पैदाइशी नाम लक्ष्मण जो सकीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल शाम 4 बजे इनके पति रमेश सोवाम्बेया के घर रॉयल रोड खोंबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिमा वैपिये खोंबे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM कोऑपरेटिव रोड लाफ्लोरा में 91 साल के 91 years old श्री केशवरदत्त दुर्बीजा, श्री केशवरदत्त दुर्बीजा जो चुनुन क्वाफिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 11 बजे के बेटे राज दुर्बीजा के घर कोऑपरेटिव रोड लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM रॉयल रोड पिथियराफ्रे में 89 साल के 89 years old श्रीमती मिंत्रावती सिबा, श्रीमती मिंत्रावती सिबा पैदाइशी नाम सोनियासी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रॉयल रोड पिथियराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM मामजल जान गुडलैंड्स में 85 साल की 85 years old श्रीमती यशुमती लकू पैदाइशी नाम रामेश्वर जो दादी भानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह 10 बजे इनके बेटे संजीव लकू के घर मामजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM जावियर रोड कास्काविल में 36 साल के 36 years old श्री केविन सोहराई जो कुनाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दोपहर के दो बजे इनके पिता मनोज सोहराई के घर जावियर रोड कास्काविल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बसोंश की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM बुलाकी लेन मिडलैंड्स में 67 साल की 67 years old श्रीमती चंद्रिका सेलिन पैदाइशी नाम नेपाल जो गीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 11 बजे इनकी माँ साबिता नेपाल के घर बुलाकी लेन मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM न्यू रोड रोशनवा में 89 साल की 89 years old श्रीमती परबावती महेश जो जिब्लो सो मादाम के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनकी बेटी रानी हीरा के घर न्यू रोड रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

0: 102.2 लास्का की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

在我的心急如焚，怕就怕缘分尽了我。

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लिए
2: ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। सादर प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का स्वागत करते हैं आध्यात्मिक तथा भक्तिमय कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में। मैं हूँ दीवीना तथा आज इस पावन रात्रि में आइए कुछ पल अपने मन को शांत करें, चिंताओं को प्रभु के चरणों में रखें तथा भक्ति के रंग में रंग जाएं। चलिए आज हम स्मरण करेंगे उस देव का जो विघ्न हरता है, जो बुद्धि तथा विवेक के दाता है, जो हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं, हमारे प्यारे श्री गणेश जी।

श्रोताओ, शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के स्मरण से की जाती है, क्योंकि गणेश जी हमें केवल सफलता का आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि, धैर्य तथा विवेक भी देते हैं। उनका बड़ा सिर हमें सिखाता है बड़ा सोचो, उनके बड़े कान कहते हैं अच्छी बातें ध्यान से सुनो, उनकी छोटी आँखें सिखाती हैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तथा उनकी सूंड हमें सिखाती है परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखो। कितनी सुंदर सीख है हमारे गणपति बप्पा के स्वरूप में।

जहाँ श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम में। वैसे जहाँ विश्वास होता है वहाँ रास्ते अपने आप बनने लगते हैं तथा जहाँ गणेश जी का आशीर्वाद होता है वहाँ विघ्न भी अवसर बन जाते हैं। तो आज अपने मन से बस इतना कहिए, हे गणपति बप्पा, मेरे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करो, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश भरो, मेरे कदमों को सही दिशा दो तथा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना।

हे गणपति, हमारे घर में सुख शांति देना, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रख, बच्चों को ज्ञान तथा संस्कार देना, बड़ों को स्वस्थ तथा प्रसन्न रखना, और जो भी श्रोता दुखी हैं, उनके जीवन के सभी विघ्न दूर कर लेना। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।

जी हाँ श्रोताओ, आज की इस भक्तिमय रात्रि में श्री गणेश जी का स्मरण करते रहिए। हमें एक बात स्मरण रखना चाहिए, शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, यदि पहला कदम प्रभु के नाम से उठे तो मंजिल तक पहुँचने का विश्वास बना रहता है। तो हर सुबह गणेश जी का नाम लेते रहिए, हर शुभ कार्य से पहले उन्हें स्मरण कीजिए तथा अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। हम लेते हैं अभी आपसे अनुमति, मुस्कुराते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए तथा अपने मन में भक्ति का दीप जलाए रखिए। ओम गंग गणपतये नमः, गणपति बप्पा मोरिया, शुभ रात।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में हम आप तमाम सामीन का खुलूस व मोहब्बत के साथ खैर मकदम करते हैं। दिल से दुआ है हमारी कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफियत से रहें। सामीन कराम, आइए महफिल शब का आगाज़ इस खूबसूरत कलाम से करते हैं।

अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना एक मुसलमान की अहम जिम्मेदारी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि खाना, पानी और सेहत सब अल्लाह ताला की नियमतें हैं। जो शख्स नियमतों पर शुक्र अदा करता है उसके दिल में आजजी और नियमतों की कद्र पैदा होती है।

हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन को अच्छी तरह साफ करने और उंगलियों को चाटने की तरगीब दी। खाने के हर हिस्से में अल्लाह ताला की बरकत हो सकती है, इसलिए खाने को बिला वजह ज़ाया नहीं करना चाहिए। बर्तन में बहुत सा खाना छोड़ देना या सिर्फ थोड़ा सा बचा कर फेंक देना नियमत की कद्र के ख़िलाफ़ है। खाने के बाद बर्तन को साफ़ करना और जितना खाना लिया हो उसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना अच्छी इस्लामी आदत है। सामिन मुहतरम, हम महफिल शब प्रोग्राम के आखिर तक पहुँच चुके हैं। आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं, और इसी के साथ हम इजाज़त तलब करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station,

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया. एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ.
2: मैं तुम्हारे हर मतलब का मतलब समझता हूँ सोनिया. तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस राज पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा, लेकिन आज पर्दा उठ गया, हकीकत सामने आ गई. तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है कि प्रताप सिंह जैसे लोग भी खरीद सकते हैं.
3: नहीं विजय, तो
2: मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसा चेहरा छुपा हुआ है जिसका ईमान धर्म सिर्फ पैसा है.
4: ऐसे न जाऊंगा, मस्ती लुटाऊंगा.
1: शनिवार 12 सितंबर को एनबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दिल तेरा आशिक. 90s के दौर की ये हसीन मूवी 1993 की ये फिल्म सलमान खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माई गई दिल तेरा आशिक.

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात है 10 सितंबर 2026 की रात और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि बीफे। 9:05 होल बा सुना था रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और हम किरण आप सबको के स्वागत करत है। हमार प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कर। आज के इजन रात बा बहुत बरसाती बा, बहुत ठंडा हवा चलता और ऐसन में अगर आपके निकले के नहीं हुई घर से तो बिना भेद के कहूँ नहीं जा, घर पर रह, जे बहुत ही ज़रूरी हुई, बहुत नेसेसिया रही तब सब निकले और नहीं तो अपन सुरक्षा खातिर, औरों के सुरक्षा खातिर और अपन खुद के स्वास्थ्य खातिर आप हमने संगे जुड़ल रह, घर पर ही रह। पहला गीत आप सब कोई के नाम पानी बरसेला।

जैसे दिखत है जा आज का सब कोई गणेश वंदना में मगन हवा जा और गणेश चतुर्थी ढेर दूर नहीं बा आवत से मन मनावब जा आप सब कोई के जे गणेश व्रत रखत हवा जा गणेश वंदना में लगल हवा जा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना और ई गणेश वंदना गीत बिस्वानी दीपा के आवाज़ में ई ख़ास तौर पर शीला जी के फरमाइश पर आप अपन सब लड़का लोग के नाम ई गीत करत हवा श्लोक कबीर यौवन सोनम और आपके सब नाती पोता सब बेटा बेटी के नाम दामाद के नाम जे लोग पर हमेशा गणेश जी के कृपा बनल रही और ई बखत जितना कोई हमने के सुना था वजह मंदिर से वापस आवा था वजह या फिर घर के ही पूजा से उठा था वजह आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना।

9:15 होल बा और आज के प्रोग्राम के श्री गणेश होगल बा। भोजपुरी तर का प्रोग्राम चला था अभी से रात के 11 बजे तक। आप सब कोई साथ देवत हो जा, आप सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे शुरू में बोल ली, आज बहुत ठंडा रात बा, पानी होला रात बा, ऐसन में आप की चाहिए अपन रेडियो के करीब रह के जे खाना खा ले हुई बा, त अब आराम करे के समय चला बा। खाना के बाद आराम और नींद, ई दोनों के बीच एगो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उ एगो ऐसन गतिविधि में शामिल हो जाए के या तो बैठ के टीवी देखा, या फिर रेडियो सुना, या फिर एगो किताब पढ़ा, आपके जोन खाना बा उ भी पच जाए और साथ में आपके नींद भी आवे के शुरू हो जाए। और ऐसन में आपके चाहिए ऐसन ऐसन ख्याल, ऐसन ऐसन विचार करे के जेकर से आपके मन शांत रही। दिन भर के थकान के बाद ई बखत आपके चाहिए सब कुछ भुला के अब एगो नवा दिन के शुरुआत खातिर नवा संकल्प, नवा कल्पना करे के। और बोलल जाला संकल्प से सिद्धि होवेला, तो जोन सोच के सुते जेबा वैसे ही आपके अगला दिन रही, वैसे ही आपके तकदीर बन ले जाए। तो चला अगला गीत, पिती पिती छोकरी जनाना तुरे जाला। ये एगो ऐसन गीत है जेकर में छोटा छोटा कहानी बा, छोटा छोटा बात बा, और बहुत ही मधुर आवाज़ में, बहुत ही अच्छा लय में सुदेश बोईजू ये गीत गैले हवन आप सब कोई के नाम ये अगला गीत।

भोजपुरी तड़का किरण संगे। अभी आप सुना था अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का, और आज बीफे के दिन हो गल। देखते देखते 10 तारीख सितंबर महीना के जन्माष्टमी गुजर गल, अब गणेश चतुर्थी आवता, ओकर बाद पितर पक चलाए और फिर दिवाली चलाए। बहुत तेज़ी के साथ समय चले जाता, और देखते देखते ये जोन बरिस बा वो गुजर जाए, नवा बरिस भी चढ़ जाए। और ऐसन में चाहला हर एगो जोन पल बा ओके जी भर जिए के, और जोन दुख के पल रही ओके चाहे जितना हाली होई ओके भुला जाए के, बुलल जला दुख के पल बरिसन जैसन बुझाला, और जोन खुशी के पल रहला वो हाली हाली बीत जला। तो आपके चाहे जितना जहाँ तक हो सकी जोन दुख के पल बा ओकर से अपन ध्यान हाली से हटा लेवे के, और दुख सुख का देखबा ता जोन हमनी के आस पड़ोस में जोन चीज बीता था, हमने के सामने, हमने के पीछे, हमने के बगल में, ओकर से हमने के कौन प्रतिक्रिया आवेला, कैसे हमने ओकर से निपटिला सा, यही है सुख और दुख। त जोन भी कठिनाई जोन भी चुनौती आपके सामने आई तो वो कही चाहे बहुत हिम्मत से ओकर से निपटे के, ओकर से काम लेवे के, कहे कि बोल जला कि कुछ भी जीवन में हमेशा खातिर नहीं है, दुख के पल भी कट जाला, सुख के पल भी कट जाला। तो यही सबसे अच्छा बात बा कि दुख के जोन पल बा वो भी कट जाला, और आपके चाहिए हमेशा ऐसन ऐसन मौका ढूंढे के, ऐसन पल ढूंढे के जहाँ पर सकबा ये सब

बात भुला के थोड़ा आशावादी बने, थोड़ा खुशी के बात सोचे। तो उही बखत है, ये 2 घंटा जो चलेला भोजपुरी तड़का में हमने के देश के ही गावल गीत, हमने के भाषा में गावल गीत, हमने के कलाकार लोग द्वारा गावल गीत, और ऐसन ऐसन मौका पर जोन हमने रोज जीला सा अपन जीवन में। अगला गीत थोड़ा जीले, ये गीत बंधु राजा के आवाज़ में ये गीत सुने चाहत हवन ते अगोश के शांति जी, और आप अपन पूरा मराठी परिवार के नाम जे लोग दागुचिया से हवन सा, और अपन भगीना ओम के नाम अप दागुचिया से जे हवन, और ख़ास तौर पर आप अपन भाई बलराम के नाम ये गीत करत हवा। बलराम जे पुलिस अफसर हवन और ये प्रोग्राम सुनते रहेलन, और आपसे शिकायत भी करेलन कि खाली आप अपन भगीना खातिर गीत मांगेला। तो चला आज आपके भाई बलराम के नाम भी ये अगला गीत शांति जी के ओर से जे त्यागुश से हवन।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

0: अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा।
1: कौन फुलवा कौन फुलवा फुलेला तहरंगना, ये गीत के फरमाइश कर ले हवन विजय बेनी प्रसाद जी। और आप ये गीत अपन खास दोस्त गणेश जगनारायण के नाम करत हवा, जे शामुनी से हवन, और अपन दोस्त शास्त्री बुनमाली के नाम, और पूरा जन बेनी प्रसाद परिवार बा, आपके धर्मपत्नी, आपके बेटी और सब परिवार के नाम। सुना नुयान के आवाज में चला ये गीत सुनी जा।
0: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: पाव किलो का भेजा भी अजीब चीज है, ठीक हो तब भी तकलीफ देता है और अगर ना ठीक हो तब तो और भी तकलीफ देता है।
5: लड़की जिसकी आंखें ये कहती हैं।
3: रविवार 13 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म चैंपियन 2000 की ये मूवी सनी देओल और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई चैंपियन।

ई धुन से के परिचित नहीं बा, ई ला म्यूजिक सुनते ही जान जाए बा कि अब ब्रह्मा जी के आवाज गुंजे होला बा। जुबेदा लोतू लेके जाए ई गीत सुने चाहत हवन पितों से अमृता गणेश, और ई गीत आप खास तौर पर अपन बेटा के ओर से विशान के ओर से मांगत हवा, और विशान ई गीत अपन धर्मपत्नी मीनाक्षी, अपन बेटी सोनिया और परी के नाम भी करत हवन।

जुबिदा लुतु लेके जाए अब ई गीत के बाद अगला जन गीत चली उ मीरा मोहन के आवाज में चटनिया और ई गीत सुने चाहत हवन वाकुआ से विश्वानी दोमन जी और आप ई गीत अपन बहिन इंदिरा शारदा और सहेली नीला प्रतिभा शोभा और गीता खातिर मांग करत हवा और जितना कोई ई भकत हमनी के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम ई अगला गीत मीरा मोहन के आवाज़ में

रात के 10 बजे में 2 मिनट कमती बा और आप सुनत हवा अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। अगला जो गीत चली ई गीत के फरमाइश आलबा फिल्म के मतलब गीत के जो शीर्षक है वह अयोध्या के राज सिया मांगे अयोध्या के राज। ई एगो जन्मदिन के अवसर पर अभी हम चलावे जात है और जन्मदिन बा आज कैथोबोन के प्रेमिला जी के बेटी विद्या के जन्मदिन और विद्या जी के उनकर माता जी के ओर से ढेरों बधाई साथ में उनकर पति प्रवेश और ओकुले से सब परिवार के ओर से

और उनका जुड़वा बेटा बा लव और कुश। लव और कुश अपन माँ के जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन जा। और विद्या के तीन गो मौसी उनकर भाई रोशन के ओर से जे रोजबेल हवन, और देव नारायण परिवार के ओर से, फिर बिसेसर परिवार के ओर से यश युग यानव के ओर से, परिवार में ढेर कोई हवन जा तब पूरा परिवार के ओर से विद्या जी के जन्मदिन के ढेरों शुभकामना।

0: एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद शमा को लेने आया है परवाना।
2: तुझे आज तक एक मामूली चोर समझता था, लेकिन तू तो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानता ही ये क्या है? बम है, बम।
1: आग में कूद पड़ूं, इरादों में असर रखता हूँ, नाम है परवाना।
3: ना शहर में हुआ।
0: रविवार 13 सितंबर को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म परवाना 2003 की मूवी अजय देवगन और अमीषा पटेल पर फिल्माई गई परवाना।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: रात के 10:10 होल बा ऐसा जन शिफ्ट बा हमके बहुत अच्छा लगेला। जब तालमेल अच्छा से बैठेला तब बुझाला ये जन ब्रह्मांड बा ओकर हर एगो कर्ण अलाइन हो जाता, हर एगो कर्ण एगो सीधा रेखा में चला हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक चलता। हमी के यही उम्मीद बा कि आपके जीवन में भी सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चली, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके लड़का के जीवन में, आपके माँ बाप के जीवन में। और अगला गीत सैंपिया से, लविनिया सैंपिया से अफेज के नाम। अफेज आप सुने चाहता हुआ आज के गमठ को और किशोर के मियाँ की आवाज़ में ये गीत आप सबके नाम करत हुआ जे ई बखत हमने के सुनत हवन जा। तो अफेज जी खास आपके नाम ई अगला गीत।

आज के गमठ को लाले लाल बा एक बाद अगला जन गीत चली ऊ पूर्णिमा फोकिरा के आवाज में और ये गीत सुने चाहत हवन से जमील फॉरेस्ट साइड से शांता सुकारी जी जे बोलत हवन उनकर यहाँ बहुत ठंडा कर था और जितना दुलिया बा सब उठ गल बा कहे कि जब ठंडा करे रहता जितना दर्द है वो और तेज हो जाना तो हमने आशा कर थे जाकि जो अगला गीत चली ये सुन के आपके दर्द कमती हो जाए। शांता जी आप अपन पूरा परिवार के नाम ये गीत करत हवा अपन बेटा अपन पतो और अपन नाती पोता और साथ में ये गीत मोहताबा के कमला दीनू के ओर से भी आप ये गीत अपन नातिन आरोही के नाम करत हवा। आप भी बोलत हवा कि मोहताबा में भी बहुत ठंडा हवा पानी कर ले बा और आप अपन नातिन खातिर ये अगला गीत चलावे चलावत हवा। तो जितना कोई अभी हमने के सुनत हवा जा या तो आपके अभी नींद आवत हुई या फिर आपके इंतज़ार बा कब एगो अगला गीत चली जो जस्ती अच्छा रही तो ये अगला गीत आप सब कोई के नाम

पूर्णिमा फुकिरा के आवाज में गीत के बाद जो अगला गीत चले होला बा वह संतोष महादेव के आवाज में पियर पियर ऊँठी ई गीत सुने चाहता वन घोंगोप से श्यामा रघुनंदन जी और साथ में ई गीत वाकवा के सुदेवी जी भी सुने चाहता वन अपन दीदी ललिता सुनीता शोभा देवीना के नाम और मालेगा के सब राम रतन परिवार के नाम।

बड़की मसाला पिसेला ई गीत क्रिश हृदय के आवाज में सुने चाहत हवन फ्लिक ऑफ लक से अनीता जी और आप ई गीत जितना कोई ई बखत हमने के सुनत हव जा सब कोई के नाम करत हवा और आपके सब दोस्त आपके सब परिवार खातिर भी

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.
4: रात के 10:41 होल बा, 11 बजे में 20 मिनट से कमती समय बा और 11 बजे तक ये आपके प्रोग्राम चली आपके ही पसंद के गीत। अगला गीत जिसे सुना था वह सुलकावाल नीरज गुप्त मधु की आवाज़ में और एक बाद मोर जानिको को कृष रिदोय की आवाज़ में, फिर गीत गवाय के गीत बिजमावती सांपत की आवाज़ में और आखिरी गीत रही लंगड़ो राधन राम सहा की आवाज़ में।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: प्यारे प्यारे श्रोताओं, नीतोषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए इसे घंटे के सुरीले सफर यानी कि सुनहरे पल में स्वागत है आपका।

आज हम बात करेंगे श्रोताओं नितिन मुकेश जी, हाँ द ग्रेट मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश के बारे में। नाम सुनते ही एक ऐसी आवाज याद आती है जिसमें मिठास भी है, सादगी भी है और एक गहरी इमोशनल वॉर्म्थ भी। महान गायक मुकेश जी के बेटे होने के बावजूद नितिन मुकेश ने अपनी पहचान सिर्फ अपने पिता के विरासत के सहारे नहीं बनाई, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी आवाज और अपने खास अंदाजे गायकी से हिंदी फिल्म संगीत में एक अलग मकाम हासिल किया।

नितिन मुकेश का जन्म 27 जून 1950 को हुआ था। बचपन से ही उनका माहौल संगीत से जुड़ा रहा। उनके पिता मुकेश जी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। ऐसे माहौल में पलने के कारण नितिन जी को बहुत ही कम उम्र से ही सुर ताल संगीत की गहरी समझ मिल गई। लेकिन एक मशहूर गायक का बेटा होना अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं होती। अपनी आवाज़ को पहचान देना और अपने लिए एक अलग जगह बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा।

उन्होंने बहुत छोटी उम्र में प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी आवाज में अपने पिता मुकेश जी की कुछ झलक जरूर महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे नितिन मुकेश ने अपना खुद का सिंगिंग स्टाइल डेवलप किया। उनकी आवाज में एक सॉफ्ट टेक्सचर, साफ प्रोनाउंसिएशन और जज्बात को सीधे दिल तक पहुंचाने की खूबी रही। वो जब रोमांटिक गाने गाते तो आवाज में नरमी और मोहब्बत का एहसास होता। दर्द भरे गीतों में एक जेन्युइन उदासी महसूस होती और भक्ति या इंस्पिरेशनल कंपोजिशंस में आवाज एक अलग ही रूहानी रंग ले लेती।

नितिन मुकेश के करियर में 1980s और 1990s का दौर खास तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने कई मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और हिंदी सिनेमा के कई यादगार गीतों को अपनी आवाज दी। उनकी आवाज को खास तौर पर ऐसे गानों में बहुत पसंद किया गया जहां मेलेडी और इमोशन दोनों की जरूरत थी। उनके बहुत सारे मशहूर गीत रहे, लेकिन नितिन मुकेश की पहचान सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेस, डिवोशनल म्यूजिक और स्टेज शोज के जरिए भी अपने सुरों का सफर जारी रखा। उनकी सिंगिंग स्टाइल की सबसे खास बात है उनका इमोशनल एक्सप्रेशन। वो गाने को सिर्फ सुरों में नहीं भावों में भी पेश करते हैं। उनकी आवाज में एक नेचुरल सॉफ्टनेस है जो रोमांटिक मेलोडीज को खूबसूरत बनाती है। साथ ही उनकी डिक्शन यानी अल्फाज को साफ और समझने लायक तरीके से पेश करने की कला भी उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है।

वैसे नितिन मुकेश की आवाज को सुनते वक्त अक्सर महसूस होता है कि वो गाने के अल्फाज को समझकर गा रहे हैं। उनकी गायकी में अननेसेसरी वोकल शोमैनशिप कम और इमोशन ज्यादा नजर आता है। इसी वजह से उनके कई गाने सीधे सुनने वाले के दिल से कनेक्ट करते हैं। उनके करियर का एक बहुत खास पहलू उनका अपने पिता मुकेश के प्रति गहरा सम्मान भी है। नितिन मुकेश ने मुकेश जी के गीतों को दुनिया भर के स्टेजेस पर गाकर उनकी म्यूजिकल लिगेसी को जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने इंडिविजुअल करियर को भी बनाए रखा और ये साबित किया कि विरासत मिल सकती है लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है।

अपने करियर के दौरान उनको कई अवार्ड्स और ऑनर्स से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, नितिन मुकेश को अपने म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन के लिए कई सम्मान और रिकॉग्निशंस भी मिले। उनका करियर सिर्फ अवार्ड्स की संख्या से नहीं बल्कि उनके लंबे सफर, लाइव परफॉर्मेंसेस और हिंदी फिल्म म्यूजिक के प्रति उनकी डेडिकेशन से भी पहचाना जाता है। उन्हें मुकेश जी की म्यूजिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने और हिंदी संगीत की परंपरा को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए भी सम्मान मिला है। नितिन मुकेश के करियर को देखा जाए तो ये एक ऐसे सिंगर की कहानी है जिन्होंने एक महान गायक के घर में जन्म लिया लेकिन अपनी आवाज से अपनी जगह बनाई। उनके लिए मुकेश जी का नाम एक इंस्पिरेशन भी था और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। उन्होंने अपने पिता की गायकी को इमिटेट करने के बजाय उस विरासत को सम्मान दिया और अपने अंदाज में संगीत की दुनिया में अपना सफर तय किया।

आज जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक के गोल्डन और लेटर एराज के सिंगर को याद करते हैं तो नितिन मुकेश का नाम एक खास एहसास के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज हमें याद दिलाती है कि प्लेबैक सिंगिंग सिर्फ सुरों का खेल नहीं, ये इमोशंस, एक्सप्रेशंस और स्टोरी टेलिंग का भी नाम है। नितिन जी का सफर हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है, विरासत हमें एक पहचान दे सकती है लेकिन उस पहचान को अपनी मेहनत से मजबूत बनाना पड़ता है। और नितिन मुकेश ने अपनी आवाज, अपने सुर और अपने डेडिकेशन से हिंदी संगीत के सफर में अपना एक यादगार पन्ना जरूर लिखा है। तो आज अगर आप नितिन मुकेश जी का कोई गीत सुने तो सिर्फ मेलोडी को मत सुनिए, उनकी आवाज में छिपी जज्बात को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे दिल में उतर जाती है। नितिन मुकेश की आवाज भी उन्हीं सुरीली आवाजों में से एक है। प्रणाम, शुभ रात्रि।